एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 सितंबर सन 2026 सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। डॉक्टर शर्मा अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के संसद सदस्य हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की यह सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री बेटेल चेन्नई भी जाएंगे और IIT मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर NEET PG की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में

0: वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सवेरे के 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदनवार।

चिंतन महर्षि वे महर्षि वेदव्यास का कथन है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् एव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थ है, मीठे या प्रिय वचन बोलने से सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, इसलिए मनुष्य को सदैव मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी या बोलने में क्या दरिद्रता, क्या किफायत करना। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 303। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुनिएगा। श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना भाग 6। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7:00 भूले बिसरे गीत 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम, 9:30 पर आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राकेश रोशन पर। सुनिएगा सुबह 9:30 और रात 9:30 पर। सुबह 10:00 पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, इसके अंतर्गत सुनेगा गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। 11:00 विविधा के अंतर्गत केंद्रित होगा ये कार्यक्रम मुकरी आदेश श्रीवास्तव और भूपेन हजारिका पर। 12:00 यादों की महफिल, 1:00 सुरीला सफर, 2:00 त्रिवेणी। पर 2:30 पर सदाबहार नगमे प्रोग्राम, 3:00 मनचाहे गीत, 3:30 पर नाट्य तरंग। 3:30 पर नाट्य तरंग में सुनिए आंख की किरकिरी भाग 2, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण, रूपांतरकार और निर्देशक हैं नंदलाल शर्मा। शाम 4:00 पिटारा में उजाले उनकी यादों के, नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्र से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। 5:00 छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। फौजी साथियों का कार्यक्रम विशेष जयमाला होगा शाम 7:00 से। महावीर चक्र से सम्मानित नायक दिगेंद्र कुमार की शौर्य गाथा सुनिएगा सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत, प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले।

7:45 पर साज और आवाज। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए प्रहसन मलाई वाला दही, मूल कन्नड़ लेखक एम गोविंद, निर्देशन पुरुषोत्तम दारव्हेकर का। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राकेश रोशन पर। 10:00 छाएगी 10:30 पर ढलती जाए रात, 11:00 सुने विविधा। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 303।

लंका में श्री राम के वानरदीज सेनानियों ने उत्पात मचा दिया है। मंदोदरी की अपने पति रावण से प्रार्थना है कि वो विषय भोग छोड़कर उन प्रभु की शरण में चला जाए, कौशलाधीश की दया उसे प्राप्त हो जाएगी।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, आज आपने सुना भाग 303।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की छठवीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना इस श्रृंखला में आज की कड़ी में डॉक्टर शकुंतला भरणे जी से हम पूछते हैं कि किराना घराने की आज किस विशेषता की बात होने वाली है, ये जो गायकी है इसका निरालापन किस अंदाज में आप आज बताने वाली हैं?
2: इस किराना घराने की जो खासियत है
1: जी,
2: ये
1: जी।
2: सब उनके जो गुण है इंटरकनेक्टेड है। आज हम सोचेंगे मिंड का सुंदर प्रयोग इस घराने में कैसे
1: मिंड किया। का प्रयोग, वाह वाह।
2: मिंड आप जानते हैं, एक स्वर से दूसरे पर स्वर पर जाते हुए उसका जो बीच में विदाउट एनी गैप
1: जी

0: ऐसा जो
1: एक सुर से दूसरे सुर पर जाते हुए बिना रुके जो ये निरंतरता बनी रहती
0: है, निरंतरता उसकी जो मेलोडी जो है
1: उसे मिंड कहते हैं।
0: वाह, इस घराने की गायकी में एक स्वर से दूसरे स्वर तक बिना टूटे अत्यंत सहज और मधुर ढंग से पहुंचने की एक शैली को विशेष महत्व दिया जाता है। स्वरों का कोमल और प्रवाहपूर्ण मेल ये भी इसकी खासियत है। मीन के माध्यम से स्वर आपस में इस प्रकार जुड़ते हैं कि गायन में निरंतरता और मधुरता बनी रहती है। यही किराना घराने की गायकी को अत्यंत और आकर्षक बनाता है। राग का भाव अधिक प्रभावी बनता है। मीन के प्रयोग से राग के सूक्ष्म भाव और स्वर सौंदर्य स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। श्रुति का सुंदर प्रदर्शन भी हम कर सकते हैं मीन के द्वारा। स्वरों के बीच जो स्थित सूक्ष्म श्रुतियों का भी प्रभावी प्रयोग हमारे घराने में किया जाता है। इसमें गायकी में नजाकतता और एक परिष्कार आता है। विलंबित लय में मींड का विशेष प्रभाव जो होता है कि किराना घराने में विलंबित लय होने के कारण कलाकार को मींड का विस्तार पूर्वक प्रयोग करने का अवसर मिलता है, इसलिए वो बहुत ही नजाकतदार लगती है। इससे प्रत्येक स्वर का सौंदर्य पूर्ण रूप से उभर कर सामने आ जाता है। सुंदर मींड प्रस्तुत करने के लिए स्वर पर गहरा एकदम डीप ऐसा नियंत्रण, श्वास का संतुलन और नियमित रियाज तो हमें यहाँ आवश्यक है। इसलिए मींड इस घराने की उच्च कोटि की स्वर साधना का प्रमाण मानी जाती है।
1: जी,
0: मेरे गुरु जी विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल मींड गायकी तो उनकी खासियत थी।
1: अच्छा,
0: जिन रागों में मींड है वही राग वो गाती थी ज्यादा। शुद्ध कल्याण, बागेश्री, दरबारी कानड़ा, रागेश्री, ऐसे राग आज हम उन्हीं का गाया हुआ थोड़ा सा बागेश्री सुनेंगे। उनकी आवाज पहले बहुत पतली थी
1: जी।
0: और वो सब गाती थी, भावगीत गाती थी।

0: गजल गाती थी, ठुमरी गाती थी।
1: अच्छा
0: उसके बाद टॉन्सिल्स हो गए।
1: जी जी
0: हाँ, और टॉन्सिल्स की वजह से उसका जो ट्रीटमेंट हुआ वो बोल नहीं पाती थी।
1: ओ
0: बाद में उनकी जो आवाज हो गई वो एकदम थोड़ी पुरुषी
1: अच्छा
0: आवाज हो गई,
1: खरज
0: वजन
1: वाली।
0: खरज
1: अच्छा,
0: वाली
1: अच्छा,
0: आवाज,
1: अच्छा।
0: और वो गाना जो उनका हो गया वो और भी अच्छा हो गया, लोगों
1: अच्छा
0: को पसंद हुआ। और क्लासिकल ही उनका ज्यादा लोगों को पसंद हो गया, और उसने सोचा कि अभी तो लाइट गाने में मतलब नहीं है,
1: अच्छा
0: इसीलिए वो क्लासिकल ही गाती थी।

0: बागेश्वरी राग में बहुत सारे गाने हैं
1: जी,
0: बहुत ही प्यारा राग है, लेकिन गंगूबाई जी बागेश्वरी में पंचम नहीं लगाती थी, बाकी सब लोग पंचम लगाते, और पंचम का जो सुरीलापन और ये जो नजाकत है, ये पंचम बिना लगाए भी उनकी जो गायकी है वो बहुत ही अच्छा दिखता था उन्हें।
1: तो ये किस तरह का प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है कि आरो आरों के जो स्वर है किसी राग के चलन में

0: उसमें से कोई एक स्वर न लगाए बिना भी वो उसको राग का जो है प्रस्तुतिकरण हो सकता है।
1: पंचम का महत्व बागेश्वरी में नहीं है वैसा भी।
0: अच्छा,
1: पंचम का महत्व मा पधा मा गा सा रे सा ऐसा होता है
0: जी।
1: और ये राग का सौंदर्य बढ़ाता है इसीलिए लेते हैं, लेकिन पंचम का इतना इम्पोर्टेंस मध्यम लगा के ही वो बागेश्वरी ज्यादा गाते हैं।
0: अच्छा,
1: और वो बोलती थी पंचम का कुछ काम ही नहीं, इसीलिए मैं पंचम नहीं लेती और ये जगह नहीं लेती थी वो। ऐसा है।
0: तो क्यों ना इस राग पर आधारित एक गीत सुन लिया जाए।
1: बहुत ही गाने हैं, लेकिन मेरा बहुत ही प्यारा गाना है वो अनारकली फिल्म का, जाग दर्द इश्क जाग।
0: बहुत सुंदर गीत है।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की छठवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सवेरे के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार अलवर।

कार्यक्रम नमस्कार अलवर सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम इस कार्यक्रम में करते हैं स्वागत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एक ऐसा कार्यक्रम जो सीधे जुड़ा है हमारी रसोई, हमारे स्वास्थ्य और हमारे परिवार से। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा विषय है खाद्य पदार्थों में मिलावट से रहे सजग। श्रोताओं, भोजन हमारे जीवन का आधार है। हम भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं खाते, बल्कि शरीर को ऊर्जा देने, स्वास्थ्य रखने और रोगों से बचाने के लिए खाते हैं। लेकिन जब इसी भोजन में किसी भी प्रकार का घटिया या अनावश्यक या हानिकारक चीज मिला दी जाए, तो वही भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बन सकता है। इसी को हम कह सकते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट। कहते हैं ना कि थाली में जो भोजन आए शुद्ध हो, तभी तन स्वस्थ बनाए। मिलावट से रहना है हमें सजग, स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अब दूध हो, मसाले हो या मिठाई, हर चीज में रखे समझदारी भाई। सस्ता देखकर ना करे विश्वास, स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं कुछ खास। शुद्ध भोजन, स्वच्छ विचार, यही बने जीवन का आधार। मिलावट को करें हम इनकार, स्वस्थ रहे अपना परिवार। जी हाँ श्रोताओं, सवाल उठता है कि मिलावट आखिर है क्या? जब किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता या शुद्धता कम करने के लिए उसमें कोई घटिया, अनावश्यक या अनुचित पदार्थ मिला दिया जाता है, तो उसे खाद्य मिलावट कहा जाता है। कई बार मिलावट जानबूझकर की जाती है ताकि किसी वस्तु की मात्रा बढ़ाई जा सके या उसका रूप, स्वरूप, रंग या स्वाद आकर्षक बनाया जा सके। जैसे कि दूध में पानी का मिलाना, मसालों में घटिया पदार्थ मिलाना, मिठाइयों और खाद्य पदार्थों में अनधिकृत रंगों का प्रयोग करना, ऐसे ही कुछ उदाहरण है। हर मिलावट दिखाई दे यह जरूरी नहीं। यही कारण है कि हमें सजग उपभोक्ता बनना बहुत जरूरी है, और त्योहारों के समय यही मिलावट और भी बढ़ जाती है। यहीं पर हमें सावधानी की जरूरत है। हमारे देश में त्योहारों का बहुत ही महत्व है, जैसे कि आप सभी जानते भी हैं। और त्योहार आते ही घर में मिठाइयां, नमकीन, दूध, मावा, घी और तरह तरह के पकवान आने लगते हैं। लेकिन त्योहारों के समय हमें विशेष सावधानियां बरतनी ही चाहिए। बाजार में कोई मिठाई बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई दे, तो केवल उसकी सुंदरता देखकर उसे अच्छा ना माने। याद रखिए, रंग जितना आकर्षक होगा, जरूरी नहीं कि भोजन उतना ही स्वादिष्ट हो और सुरक्षित हो। इसलिए मिठाई खरीदते समय विश्वसनीय दुकान या का ही चयन करें, और पैक किए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन, लेबल, पैकिंग, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और अन्य आवश्यक जानकारी अवश्य देख लें।

जग। श्रोताओं, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे जरूरी है पैकिंग को देखना। पैक किया हुआ खाद्य पदार्थ खरीदते समय देखें कि पैकेट ठीक से बंद है या नहीं। पैकेट फटा हुआ, खुला हुआ या संदिग्ध लगे तो उसे ना खरीदें। उसके बाद उसकी तारीख जरूर देखें कि खाद्य पदार्थ की निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि देखना हमारी आदत बननी बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है यदि कोई खाद्य पदार्थ सामान्य कीमत से बहुत कम कीमत में मिल रहा है तो सावधान रहिए, क्योंकि सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता। इसके बाद ध्यान रखिए साफ सफाई का। जहां से हम भोजन खरीद रहे हैं वहां साफ सफाई कैसी है, यह भी महत्वपूर्ण बात है। और इसके साथ ही खुली चीजों से सावधानी रखें, जैसे कि खुले मसाले, मिठाइयां, तेल, अनाज या अन्य खाद्य पदार्थ खरीदते समय विशेष सावधानी रखें कि जहां संभव हो विश्वसनीय और मानक युक्त पैक किए हुए उत्पाद ही खरीदें। मसालों में भी सावधानी रखें कि हमारे भोजन का स्वाद मसालों के बिना अधूरा लगता है, लेकिन हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, गरम मसाला ये सभी हमारे रसोई का हिस्सा है, लेकिन मसालों की गुणवत्ता पर ध्यान देना भी जरूरी है। यदि खुले में ये मसाले बिक रहे हैं तो इन्हें ना खरीदें। इसलिए कोशिश यही करें कि मसाले विश्वसनीय स्रोत से ही खरीदें और पैकेट पर दी गई जानकारी अवश्य पढ़ें। श्रोताओं, स्वाद के साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है। दूध खरीदते समय हमें सजग रहना चाहिए जरूर, क्योंकि दूध हमारे परिवार के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, विशेषकर बच्चों के लिए। इसलिए दूध की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। दूध हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से ही लें, और यदि पैक किया हुआ दूध आप खरीदते हैं तो पैकेट की स्थिति और उस पर दी गई जानकारी को अवश्य देखें। बच्चों को भी सिखाएं कि आप जब भी कोई चीज खरीदें, कोई दूध ऐसा पैकेट वाला खरीदें तो उसकी तारीख जरूर देख लें। श्रोताओं, खाद्य सुरक्षा केवल बड़ों की जिम्मेदारी नहीं, हमें अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए। और हर चमकदार पैकेट अच्छी चीज नहीं होती, बच्चों को खाद्य पदार्थ खरीदते समय यह भी हमें सिखाना चाहिए। उन्हें समझाएं कि किसी भी चीज को केवल विज्ञापन देखकर खरीदने के बजाय उसकी जानकारी अवश्य देख लें, क्योंकि एक जागरूक बच्चा ही आगे चलकर जागरूक नागरिक और जिम्मेदार उपभोक्ता बनता है। इसीलिए मिलावट को कहे ना, स्वास्थ्य को कहे हाँ। शुद्ध भोजन हमारा अधिकार, मिलावट कप पर करे प्रहार। सजग उपभोक्ता बने, स्वस्थ जीवन चुने, और खाने में शुद्धता होगी तभी तो जीवन खुशहाल होगा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार अलवर और आज का हमारा विषय है खाद्य पदार्थों में मिलावट से रहें सजग। श्रोताओं, मिलावट से क्यों बचना जरूरी है? जरूरी है, हमारा शरीर वही ग्रहण करता है जो हम खाते पीते हैं। यदि भोजन की गुणवत्ता खराब होगी तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर जरूर पड़ेगा। और यदि भोजन ही खराब है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, क्या होगा हमारे शरीर का, जरा सोचिए। इसलिए हमें केवल स्वाद और कीमत पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि उसकी गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इन तीनों से समझौता नहीं होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी यही है कि उपभोक्ता के रूप में हमें खाद्य पदार्थ सोच समझकर खरीदने चाहिए, पैकेट और लेबल की जानकारी पढ़नी चाहिए, संदिग्ध या खराब गुणवत्ता वाली चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, खाद्य पदार्थों को उचित तरीके से संग्रहित करना चाहिए, क्योंकि जरूरी है दोस्तों कि हम उन सभी अपने खाद्य पदार्थों को सही रूप से रखें ताकि उनको हम जब प्रयोग करें तो हमारे स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव न हो। और श्रोताओं, इसके साथ ही साथ दुकानदार से बिल लेना भी बहुत जरूरी है। किसी गंभीर संदेह या समस्या की स्थिति में संबंधित खाद्य सुरक्षा विभाग में आप शिकायत भी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिलावट करने वालों को बढ़ावा हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब हम संदिग्ध वस्तु खरीदना बंद करेंगे तो बाजार में भी गुणवत्ता को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। आपके लिए एक छोटी सी मैं बात कहूंगी कि ना रंग देखकर मोहित होना, ना कीमत देखकर खुश होना, खाने की जब बात आए सजग होकर कदम बढ़ाना। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ परिवार, यही हमारा सच्चा श्रृंगार। मिलावट से रहेंगे दूर तभी जीवन होगा हमारा भरपूर। श्रोताओं, जरूरी है कि हमें सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी, ये जीवन हमें बहुत ही हमारे लिए अमूल्य है, बहुत मुश्किलों से हमें मिला है, तो क्यों ना इसको सही ढंग से, सही तरीके से जिया जाए।

0: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को एक संदेश देना चाहूंगी कि जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो एक छोटा सा संकल्प जरूर लीजिए। वो क्या है कि मैं खाद्य पदार्थ खरीदते समय सावधानी रखूंगा, मैं पैकिंग और आवश्यक जरूरी कोई भी चीज पहले जांचूंगा, मैं संदिग्ध खाद्य पदार्थों से बचूंगा और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी खाद्य मिलावट के प्रति जागरूक करूंगा, क्योंकि बदलाव हमेशा किसी एक व्यक्ति से शुरू होता है। तो श्रोताओं, आज की हमारी चर्चा का सार यही है कि भोजन केवल स्वाद नहीं है, भोजन हमारे स्वास्थ्य की नींव है। इसलिए अगली बार जब आप बाजार जाएं तो और कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदें तो सिर्फ यह ना सोचें कि यह कितना सस्ता है, बल्कि यह भी सोचें कि यह कितना सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण है। और दोस्तों, साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि जब किसी वस्तु को खरीदते समय आपको कोई उसके साथ कोई चीज मुफ्त में दी जा रही हो तो भी आप जरूर सोचिए कि एक के साथ दूसरी वस्तु मुफ्त मिल रही है तो क्या इसकी गुणवत्ता सही रहेगी। तो श्रोताओं, याद रखिए, सजगता अपनाएं, मिलावट मिटाएं, स्वस्थ भारत बनाएं। और अंत में मैं ये दो पंक्तियां कहूंगी कि शुद्ध अन्न, शुद्ध विचार, स्वस्थ रहे हर परिवार। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी जागरूक रखें। अब दीजिए इजाजत कार्यक्रम नमस्कार अलवर से। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है FM 103.1 MHz पर। सवेरे के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में गाई फिल्म मोहब्बती का ये गीत।

0: ये गीत आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म कुछ कुछ होता है से।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
4: ओह लवली, वेल डन।
5: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
4: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
6: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
4: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
6: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
4: आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
2: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
6: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
7: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य

0: कुछ एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
2: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और 1 गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हेजीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से IIT मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू AI एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, ओपन AI और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर AI की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुख

0: नुक्ता दी है, पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा एआई, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं, चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, एआई को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आई ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला टी20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के 8:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

अभी आप सुन रहे थे नुसरत फतेह अली खान की गाई गजलें कार्यक्रम सुगम संगीत में। यह आकाशवाणी अलवर का सरीस का चैनल है FM 103.1 MHz पर। सवेरे के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका।

0: आप सभी सुनने वालों को शिव कुमार का नमस्कार। स्वास्थ्य पत्रिका के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मानव शरीर के सबसे जटिल, सबसे महत्वपूर्ण हिस्से मस्तिष्क की सेहत के बारे में। दिमाग से जुड़े रोग न सिर्फ शरीर को बल्कि व्यक्ति की सोच, व्यवहार और रोजमर्रा की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क बीमारियों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर पुरुषोत्तम पोसवाल, जो कि ESIC मेडिकल कॉलेज अलवर में सुपर स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं। पुरुषोत्तम जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्ते सभी श्रोताओं को।
0: जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मस्तिष्क यानी कि ब्रेन संबंधी कौन कौन से ऐसे मुख्य रोग हैं जो कि आमतौर पर देखने को मिलते हैं।
1: मस्तिष्क संबंधी बीमारियां, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है ब्रेन स्ट्रोक, जिसको हम आम भाषा में लकवा आना और पैरालिसिस ये बोलते हैं। उसके अलावा कॉमन बीमारियाँ हैं जैसे कि सर दर्द, जो आजकल कॉमन है बहुत, हर माइग्रेन सिम्टम्स, कमर में दर्द, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, और कुछ जटिल बीमारियां जैसे कि पार्किंसंस, भूलने की बीमारियां, अल्जाइमर्स और कुछ कंपन रोग, ये बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन है।
0: तो शुरुआत करते हैं हम माइग्रेन और सिरदर्द की बात आपने की, तो आमतौर पर जो सिरदर्द होता है और जो माइग्रेन होता है, इसमें अंतर क्या है मुख्य रूप में?
1: हाँ, तो माइग्रेन बहुत कॉमन बीमारी है और ये यूजुअली जो हमारी यंग पॉपुलेशन है उनके अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें क्या होता है, सर के दर्द आधे सर में ज़्यादा हिस्सा होता है और तेज तीव्रता वाला दर्द होता है। नॉर्मल जो सर दर्द है वो उतना तेज नहीं होगा जितना माइग्रेन का सर में दर्द तेज होगा। साथ में उनको तेज रोशनी, आवाज़ से बहुत चिड़न होती है और उससे वो दर्द बढ़ जाता है। उल्टी आने का मन कर सकता है और दर्द इतना तेज रह सकता है कि वो पूरे पूरे दिन भी उनको दर्द रह सकता है।
0: जब किसी व्यक्ति को सिरदर्द होता है तो वो उसमें अंतर नहीं कर पाता कि ये माइग्रेन है या सामान्य सिरदर्द है। तो सामान्य जो सिरदर्द होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, उसमें कैसा प्रतीत होता है?
1: हाँ, तो इन्हीं को ही हम कुछ रेड फ्लैग साइन बोलते हैं न्यूरोलॉजी में। मतलब अगर किसी भी पेशेंट को सर में दर्द के साथ उल्टियाँ भी आ रही हैं, देखने में दिक्कत आ रही है, आँखों के आगे कोई काला पर्दा सा आ रहा है और साथ में ऐसा सिम्टम जैसे कि हाथों में कोई झंझनाहट आ रही है, सूनापन आ रहा है, तेज रोशनी और आवाज़ असहनीय हो रही है, तो ये रेड फ्लैग साइन है। अगर ये सिम्टम्स किसी को आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यह सरदर्द सामान्य नहीं है और इसको आगे इवेल्युएट करने की ज़रूरत है।
0: कुछ व्यक्तियों में आमतौर पर ये देखा जाता है कि हर दूसरे तीसरे दिन उनके सिरदर्द हो जाता है, तो वो क्या माइग्रेन होता है या वो सामान्य सरदर्द माना जाता है?
1: तो सामान्य सरदर्द कुछ दिन के लिए रहेगा और नॉर्मल कुछ दवाइयों से ठीक हो सकता है, लेकिन माइग्रेन वाले सर में दर्द परसिस्टेंट रहते हैं,

0: मतलब ये लंबे समय तक चलते हैं, 3 3 6 6 महीने तक इस तरह के सर में दर्द चलते हैं। तो अभी हमने पहले कुछ सिम्टम्स बताए, उनके साथ अगर किसी को तेज सर में दर्द हो रहा है तो हमें माइग्रेन की तरफ यह इशारा करता है, या फिर कोई दूसरे सर दर्द जैसे कि ब्रेन के अंदर कुछ पानी भर जाना जिसको हम IIH भी बोलते हैं, और ब्रेन में इन्फेक्शन होना या फिर कोई गांठ होना ट्यूमर की, उन सब चीज़ों को हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा।
1: हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा होता क्यों है कि जब माइग्रेन की हम बात करते हैं तो जैसा आपने बताया कि एक तरफ होता है, या तो दाईं तरफ होगा या बाईं तरफ होगा, दोनों तरफ नहीं होता, इसकी वजह क्या है एक तरफ होने की?
0: तो अगर हम जाने इसकी, हम पैथोफिजियोलॉजी में जाएं, तो ब्रेन के अंदर कुछ CGRP वाले रिसेप्टर्स होते हैं, वो हमारे ब्रेन की नसों वेसल्स के अंदर कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं, तो उसके कारण ब्रेन के आधे हिस्से में जिस वेसल्स के अंदर ये रिलीज हुए हैं उनके कारण पल्सेटाइल हेडेक होता है, जो यूजुअली हेमिक्रेनियल होता है, मतलब आधे हिस्से में हो रहा है, लेकिन कभी कभी होलोक्रेनियल मतलब पूरे हिस्से में भी हो सकता है।
1: तो इनके क्या अटैक आते हैं, या एक रेगुलर एक प्रैक्टिस है कि ये हमेशा आते ही रहेंगे?
0: हाँ, तो माइग्रेन को हमें ऐसे समझना है कि इसके बीच बीच में एक्यूट माइग्रेन अटैक आते हैं, प्लस साथ में कुछ हेडेक रहते हैं जो पेशेंट को दिन में 1 महीने में 15 से ज़्यादा एपिसोड्स भी आ सकते हैं। तो इसके एक्यूट अटैक भी होते हैं, प्लस कंसिस्टेंट परसिस्टेंट हेडेक भी रह सकते हैं।
1: अब जिनको माइग्रेन होता है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको आप क्या सलाह देंगे कि उनको कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: तो इसके लिए हमें जो बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो हमें सही इलाज, पहले तो हमें बीमारी का डायग्नोसिस करना है कि सच में ही माइग्रेन है या फिर कोई और दूसरी बीमारी तो नहीं है। माइग्रेन हमने जब देख लिया है तो उसमें इसकी दो तरह की दवाइयाँ हैं, एक तो जो एक्यूट सर में दर्द जब हो रहा है, तेज सर दर्द हो रहा है तब काम करेगी, और दूसरी दवाइयाँ जिनको हम प्रोफाइलेक्टिक दवाइयाँ भी कहते हैं, वो 3 से 6 महीने चलती हैं। इन दवाइयों का मेन रोल है कि इस तरह के अटैक आपको आगे फ्यूचर में उनका फ्रीक्वेंसी और उनकी तीव्रता दोनों को कम करेगा। यूजुअली लोग इस चीज में करते हैं कि वो जैसे तब सर दर्द हुआ नॉर्मल सर में दर्द समझ के दवाइयाँ खा लेते हैं, पेन किलर खा लेते हैं बस, फिर ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर नहीं लेते, तो इसमें प्रोफाइलेक्टिक दवाइयों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
1: माइग्रेन की जांच कैसे की जाती है?
0: माइग्रेन क्लिनिकल डायग्नोसिस है मोस्टली, हमें पेशेंट के सारे सिम्टम्स देखकर और उनका इन्वेस्टिगेशंस करके हम जांच करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में यूजुअली जो हम ब्रेन का इमेजिंग जिसमें MRI बोलते हैं वो कराते हैं, इसको हम अदर दूसरे कॉजेस को ढूंढने के लिए करते हैं, जैसे कि अगर कोई ब्रेन में कोई ट्यूमर बन रहा है, या फिर कोई IIH वाले बीमारी तो नहीं है, कोई हाइड्रोकेफेलस तो नहीं बन रहा, ब्रेन में पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा, उन सब चीज़ों को रूल आउट करने के लिए हम इमेजिंग कराते हैं।
1: व्यक्ति का जो जीवन है आजकल तनावपूर्ण काफी हो गया है, तो उसका और माइग्रेन का क्या आपस में कोई संबंध है?
0: हाँ, तो इसी का ही एक दूसरा है जिसको हम टेंशन टाइप हेडेक भी बोलते हैं। तो माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक दोनों में थोड़ा अंतर है। टेंशन टाइप हेडेक यूजुअली सर के पीछे वाले हिस्से में ज़्यादा होता है, ऑसिपिटल एरिया के अंदर होता है, और यूजुअली ये less than 4 hours का होता है, जबकि माइग्रेन वाले अटैक 4 से 72 घंटे तक भी चल सकते हैं।
1: अब हम बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में।
0: हाँ जी,
1: तो ये क्या है और इसमें किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं?
0: तो ब्रेन स्ट्रोक एक इमरजेंसी है, सबसे पहले तो हमें यह समझना है, और ब्रेन जो है एक समय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसमें एक गोल्डन रूल कहते हैं हम, मतलब 4.5 घंटे के अंदर अगर किसी को कुछ लकवा आता है, लकवे के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि चेहरे पर टेढ़ापन आना, ठीक है, जबान लड़खड़ा जाना, हाथ पैरों में कोई कमजोरी, सूनापन, ये सिम्टम्स सब लकवे के हैं। किसी को भी अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो जल्द ही जल्द हो सके तो 4.5 घंटे के अंदर आप न्यूरोलॉजिस्ट तक पहुंचे, क्योंकि ऐसा करने पे हम एक थ्रोम्बोलिसिस वाली दवाई होती है जो हम दे सकते हैं। तो ये दवाई का काम होता है कि वो ब्रेन में जो वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग हुई है उसको रिमूव करता है।
1: अच्छा, लकवा तो शरीर के किसी भी अंग में कई बार आ जाता है, चेहरे पे आ जाता है, हाथ में भी आ जाता है, पैर में भी आ जाता है, तो उसका मस्तिष्क के क्या संबंध है?
0: हाँ, तो मस्तिष्क के कौन से विभाग के अंदर लकवा आया है उसी के अकॉर्डिंग मरीज को सिम्टम्स आते हैं, तो यह सब डिपेंड करता है कि कौन सी वेसल नस ब्लॉक हुई है उसके अकॉर्डिंग।
1: डॉक्टर साहब, किसी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां उसके लिए बरती जानी चाहिए?
0: हाँ, तो अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है तो यह समझना है कि एक बार लकवा आया है तो वापस भी इंसान को लकवा आ सकता है, तो हमें यह सबसे पहले तो यह देखना है कि उसको लकवा फर्स्ट टाइम आया क्यों,

0: कारण को पता करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे इलाज करना होगा। इसमें कुछ दवाइयाँ देते हैं जिनको हम आम भाषा में खून पतला करना वाली दवाई भी बोलते हैं, जैसे एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल। तो यह दवाई चलती हैं जिससे हम इस तरह के लकवे को आगे आने से बचा सकते हैं। ट्रीटमेंट में आगे यह भी देखना है कि लकवे का कारण अगर हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत है, जिसमें हार्ट में कोई क्लॉट पड़ा है या फिर हार्ट में वॉल्व में कुछ खराबी है जिसके कारण लकवा आया है, तो इन मरीजों के अंदर हम एंटीकॉगुलेंट नामक दवाइयाँ चलाते हैं जिससे मरीज को फिर से इस तरह के लकवे ना आए। साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे कि उनको कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करनी है जिससे हाथ पैरों में अकड़न को हम रोक सकें। और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको लकवा आने के बाद दौरे की शिकायत भी रह सकती है, तो ऐसे मरीजों में हमें दौरे वाली दवाइयाँ शुरू करनी पड़ेंगी।
1: जी डॉक्टर साहब, बातचीत हमारी चलती रहेगी, इसी बीच गीत संगीत की बात की जाए तो आपको किस तरह के गाने पसंद है?
0: मैं भी थोड़ा सा पुराने गीतों को पसंद करता हूँ
1: जी।
0: तो एक गीत है, मधुबन खुशबू देता है
1: जी,
0: तो हम चाहते हैं हमारे श्रोताओं को हम यह सुना दें।
1: बहुत ही सकारात्मक गीत है, बहुत अच्छी पसंद है आपकी, सुनते हैं ये गीत।

0: गीत के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम पोसवाल से और हम डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। तो लकवे की जब बात आपने कही, तो लकवा जब व्यक्ति को आ जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो ठीक हो जाता है तुरंत ही, और कई बार वो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है या ठीक नहीं भी होता है, तो क्या वजह आप मानते हैं इसकी?
1: यह सब भी डिपेंड करता है कि मरीज का कितना ब्रेन का हिस्से में लकवा आया है और ब्रेन का कितना हिस्सा डैमेज हुआ है। तो कभी कभी किसी को छोटे लकवे आते हैं जिनको माइनर स्ट्रोक और TIA भी बोलते हैं। TIA है एक ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक, मतलब नस में हल्का सा ब्लॉकेज हुआ और थोड़े ही समय में वो ब्लॉकेज खुल गया। तो विद इन 24 घंटे के अंदर मरीज को कुछ सिम्टम्स आते हैं जिनमें हाथ में सूनापन या फिर हाथ में कमजोरी आ सकती है और वह 24 घंटे के अंदर ही ठीक हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम TIA, ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक। और किसी किसी इंसान के अंदर नस में ब्लॉकेज, वेसल्स में ब्लॉकेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि ब्रेन का बड़ा हिस्सा डैमेज हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जिनको TIA हो रहा है या फिर माइनर स्ट्रोक हो रहा है वो इंसान जल्दी ठीक हो जाएगा, वहीं बड़ा मेजर स्ट्रोक वाले मरीज को ठीक होने में काफी समय लग सकता है।
0: ये डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि ब्रेन जब डैमेज हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है।
1: हाँ जी।
0: तो ब्रेन डैमेज होने के कारण क्या है, क्योंकि व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, ना उसका कोई एक्सीडेंट हुआ, ना कोई बात उसके साथ हुई।
1: हाँ जी।
0: फिर ये ब्रेन डैमेज होने के कारण क्या होते हैं?
1: हाँ, तो अभी हम इसी की ही बात करते हैं, कॉज क्या है, इटियोलॉजी क्या है स्ट्रोक के आने का। तो सबसे पहले इटियोलॉजी है हमारा जीवन शैली के साथ, मतलब

0: स्मोकिंग अगर इंसान कर रहा है ज़्यादा, अल्कोहल अगर ज़्यादा ले रहे हैं, तो यह दोनों भी एक रिस्क फैक्टर हैं ब्रेन के अंदर वेसल्स में क्लॉट जमने का। फिर ओबेसिटी, जिससे हाई कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, यह सब रिस्क फैक्टर्स हैं। इनके अलावा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे हमने पहले भी बात करी है, अगर किसी को हार्ट में क्लॉट जम गया, हार्ट के वॉल्स खराब हो गए, हार्ट में कोई छेद है, तो वहां से भी एम्बोलस जो होते हैं ब्रेन में स्ट्रोक कर सकते। और कुछ कुछ लोगों के अंदर अनुवांशिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जेनेटिक जिनको हम प्रॉब्लम्स बोलते हैं, जिनके अंदर क्लॉट जमने की क्षमता नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा होती है। और लास्ट के अंदर अगर किसी को अंडरलाइंग कोई कैंसर की बीमारी है, तो उन मरीजों के अंदर भी लकवा आ सकता है।
1: जी, अब हम ब्रेन संबंधी एक और रोग की बात करने वाले हैं, और वो है मिर्गी, जिसको हम कहते हैं फिट्स आना कहते हैं।
0: हाँ जी,
1: आमतौर पर हम कहें कि मिर्गी है, किस तरह का रोग है, इसमें क्या कुछ होता है व्यक्ति के साथ?
0: तो मिर्गी काफ़ी कॉमन है और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों में भ्रांतियाँ भी हैं। तो मिर्गी में एक छोटे नवजात शिशु से लेके बूढ़े इंसान तक मिर्गी, और या फिर जिसको हम दौरा भी बोलते हैं, आ सकता है। इसके बहुत सारे कारण हैं दौरे आने के, जिसमें कुछ कारण होते हैं कि जैसे ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर की गांठ है, या फिर स्ट्रोक के बाद मिर्गी आ सकती, ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया उसके कारण मिर्गी आ सकती, ब्रेन के अंदर अगर प्रेशर बढ़ रहे हैं आपके तो उसके कारण मिर्गी आ सकती है। तो यह कुछ कारण है जिनके कारण पेशेंट्स को मिर्गी के झटके आ सकते हैं।
1: व्यक्ति को जब मिर्गी के झटके आते हैं, तो उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कि उसमें क्या दिखाई देने लगता है कि हम ये समझ जाएं कि इस व्यक्ति में मिर्गी के दौरे आ रहे हैं?
0: हाँ, तो इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे, तो मिर्गी दो तरीके से हो सकती है। एक, मिर्गी के अंदर मरीज अपना होश खो बैठता है, जिसको हम फोकल एपिलेप्सी विद इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। दूसरी है कि एक तरफ झटका आया, लेकिन मरीज का अपना होश निरंतर बना हुआ है। तो अगर किसी इंसान को अचानक से हाथ पैरों में अकड़न आना, मुंह से झाग निकलना, जीभ का कट जाना, लैट्रिन पेशाब निकल जाना, और मरीज अपना होश खो बैठता है, तो यह सब मिर्गी के लक्षण हो सकते हैं।
1: आयु वर्ग का कोई संबंध है इसे? बच्चों को भी आते हैं, बड़ों को भी आते हैं, या कुछ खास ऐसे आयु वर्ग हैं जिनको ये ज्यादा आते हैं?
0: मिर्गी जो है बड़े लोग और छोटे बच्चों दोनों में आ सकता है, पर इनके जो कारण हैं वो बड़े लोगों में और बच्चों में अलग अलग हैं। जैसे बच्चों के अंदर जो बहुत काफ़ी कॉमन है,

0: को भी आते हैं, बड़ों को भी आते हैं, या कुछ खास ऐसे आयु वर्ग हैं जिनको ये ज्यादा आते हैं?
1: मिर्गी जो है बड़े लोग और छोटे बच्चों दोनों में आ सकता है, पर इनके जो कारण हैं वो बड़े लोगों में और बच्चों में अलग अलग हैं। जैसे बच्चों के अंदर जो बहुत काफ़ी कॉमन है उसमें क्या है कि बच्चा जैसे जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद अगर तुरंत उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो ब्रेन के अंदर इंजरी हो जाती है जिसको हम हाइपोक्सिक इश्केमिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं, HIE। तो इस तरह के मरीज जो हैं सेरेब्रल पाल्सी बन जाती है उनको, तो उन लोगों के अंदर ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी से आगे निरंतर दौरे बन सकते हैं
0: जी।
1: वहीं छोटे बच्चों के अंदर शुगर की कमी होना, कैल्शियम की कमी होना, इलेक्ट्रोलाइट्स में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो जाना, यह सब कारणों के कारण मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। वहीं अगर हम बड़े लोगों की बात करें तो बड़े लोगों में ट्यूमर, कैंसर एक काफ़ी कॉमन कॉज है, प्लस ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाना, मेनिनजाइटिस हो जाना, यह भी काफ़ी कॉमन कॉज है जो बड़े लोगों के अंदर मिर्गी के झटके ला सकता है।
0: कई मरतबा ऐसा भी देखा गया है कि कुछ व्यक्ति में जब मिर्गी के दौरे आते हैं तो वो दांत भींचने लगते हैं।
1: हाँ जी,
0: तो उसका क्या कारण है, उसमें उस समय क्या किया जाना चाहिए फिर?
1: हाँ, तो इसी के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट कुछ मिथ्स है या फिर जिनको हम बोलते हैं कि डू एंड डोंट्स। तो मिर्गी का अगर किसी को झटका आ रहा है तो उस दौरान हमें इंसान जो भी मरीज है सबसे पहले उसको एक सेफ जगह पे लेके जाना है। मतलब अगर मरीज को मिर्गी का दौरा बीच रोड पे आ गया या फिर कहीं ऊंचाई जगह पे आ गया तो पहले हम उसको एक सेफ जगह पे ले आए जिससे उसको आगे और कोई चोट ना पहुंचे। फिर हमें जब ये झटके आ रहे हैं तो उसके हाथ पैरों को या फिर मुंह में कुछ डालने की कोशिश नहीं करना है कि आप कुछ मुंह में पानी डालने की कोशिश कर रहे हो या फिर उसके झटके रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो यह मरीज के लिए हानिकारक हो सकता है, उसको और ज़्यादा चोट या फिर फ्रैक्चर हो सकता है। तो हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना है कि झटका ख़त्म हो जाए, उसके बाद हमें मरीज को रिकवरी पोजीशन बोलते हैं जिसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन बोलते हैं उसमें लिटा देना है। इसमें हम मरीज को एक करवट के बदले लिटा देंगे और मरीज के आसपास जो भी टाइट क्लोथिंग है उनको हम हटा दें। फिर मरीज को जब ये झटका ख़त्म हो जाता है उसके बाद हमें तुरंत अस्पताल में लेके जाना है। और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके पास अपना एपिलेप्सी का कार्ड भी होता है या फिर उनके पास जेब में उस वक्त दौरे रोकने की दवाइयां हो सकती है जिसको नेजल स्प्रे भी बोलते हैं, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं जो उसका झटका उस दौरान तुरंत रोक देगा।
0: जी डॉक्टर साहब, गाँव में अक्सर देखा गया जब हम छोटे थे तो देखते थे कि कुछ व्यक्ति में जो मिर्गी के दौरे आते हैं तो उनको कुछ सुंघाया जाता है।
1: हाँ जी,
0: कि जिससे उनको होश आ जाए और वो ठीक हो जाए, तो ये कितना उचित है?
1: यह बिल्कुल एक मिथ है, एक भ्रांति है जिसको हमें तोड़ना है कि मिर्गी का झटका आ रहा है तो कुछ ऊपरी हवा आ गई है या फिर कुछ किसी का साया हो गया है। अभी भी गाँव में यही धारणा मानी जाती है, लेकिन उस दौरान हमें कोई प्याज सुंघा रहा है या फिर कोई मोजे सुंघा रहा है, यह सब भ्रांतियों को तोड़ना है और यह चीज़ें नहीं करना है। यह कोई इलाज नहीं है, यह बस उसकी बीमारी को और गंभीर ही करेगा।
0: मिर्गी के जब दौरे किसी व्यक्ति में आ रहे हैं उसमें रोग हो गया है तो क्या इसको सिर्फ नियंत्रण किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है क्या?
1: हाँ, तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि दौरा क्यों आ रहा है, उस कंडीशन को हमें ट्रीट करना होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ दवाइयाँ चलाते हैं जिनको हम दौरे की दवाइयाँ और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं। यह दवाइयों को काम है कि ब्रेन के अंदर जो हिस्सा हाइपर सिंक्रोनस हो रहा है, मतलब जो झटके ला रहा है, उसको दबा के रखेगा जिससे इस तरीके के झटके मरीज को आगे ना आए
0: जी।
1: प्लस साथ में उसके घर वालों या फिर उसके दोस्तों को हम कि जब मरीज को इस तरह के दौरे आते हैं तो क्या करना है वह सलाह दें और वह सिखाएं
0: जी। डॉक्टर साहब, बात और भी हम करेंगे आपसे, और भी रोग बचे हैं अभी, लेकिन उससे पहले हम एक गीत और जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी पसंद का एक और गीत बताइए जो आप सुनना चाहें और हमारे तमाम श्रोता भी सुनेंगे उसको।
1: हाँ, तो इसी के जरिए हम कुमार सानू जी का जब कोई बात बिगड़ जाए यह गाना हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे
0: जी। सुनते हैं इस गीत को।

0: इस गीत के बाद फिर से हम मुखातिब होते हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम पोषवाल से और हम अब जानेंगे पार्किंसंस के बारे में। हम आपसे जानना चाहेंगे सामान्य भाषा में कि ये पार्किंसंस क्या होता है।
1: पार्किंसंस जो है इसको हम अपनी आम भाषा में झुनझुनी या कंपन रोग इसके नाम से भी जानते हैं। पार्किंसंस बीमारी यूजुअली बड़े लोगों के अंदर ज़्यादा होती है, उम्र दराज लोगों में, लेकिन यह छोटे लोगों में यंग ऑनसेट पार्किंसंस जिसको हम कहते हैं तो उनमें भी हो सकती है। इस बीमारी के अंदर मरीज को हाथों में कंपन और धीरे धीरे मरीज अपने डेली रूटीन के अंदर दिनचर्या में स्लो हो जाता है, हाथों में उसको टाइटनेस अकड़न लगती है और वह चलने फिरने में असक्षम हो जाता है। तो यह सिम्टम्स अगर किसी को आ रहे हैं कि धीरे धीरे धीरे धीरे पेशेंट का हाथों में कंपन बढ़ रहा है, वह कोई सामान पकड़ना की कोशिश कर रहा है लेकिन वो छूट जाएगा हाथ से कंपन के कारण, चलने फिरने में वो स्लो हो जाएगा, बार बार गिरने लगेगा चलते हुए, एकदम से अपना कदम बढ़ाना चाहेगा लेकिन आगे नहीं बढ़ा पाएगा, जिसको हम फ्रीजिंग एपिसोड्स भी बोलते हैं, यह सब अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो पार्किंसंस के लक्षण हैं।
0: जी, प्रायः देखा जाता है कि जो उम्र दराजी लोग हैं उनको ज़्यादा ये पार्किंसंस की बातें देखी जाती हैं उनमें, कि उनके जो हाथ हैं वो ज़्यादातर कांपते हैं।
1: हाँ जी।
0: तो क्या उम्र के साथ हर व्यक्ति को ये होता है या कोई ज़रूरी नहीं है?
1: नहीं, तो पार्किंसंस जो बीमारी, इसके अगर हम कॉजेज की बात करें तो उसमें आनुवंशिक एक काफ़ी ऊपर आता है जिसको जेनेटिक कॉजेज भी बोलते हैं। तो कुछ

0: जेनेटिक कॉजेज ऐसे होते हैं जिनमें यह बीमारी यंग ऑनसेट पार्किंसन से प्रेजेंट कर सकती है, और कुछ मरीज हैं जिनके अंदर यह बीमारी हमारा 50-60 साल की उम्र में आती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बुज़ुर्ग व्यक्ति को पार्किंसन्स की बीमारी हो। जिन मरीजों के अंदर इस तरीके के म्यूटेशन हैं या फिर ब्रेन में कुछ और दिक्कतें हैं, उन्हीं को ही यह दिक्कत आती है।
1: तो इस उम्र में मतलब बहुत ज़्यादा उम्र किसी व्यक्ति की हो गई और पार्किंसन्स उसको हुए, तो उसका इलाज संभव है या पूरी तरह से समाप्त हो सकता है?
0: हाँ, तो पार्किंसन्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं टिपिकल पार्किंसन्स, मतलब इडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज, और दूसरा होता है एटिपिकल पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस बीमारी के अंदर दिमाग के अंदर कुछ डोपामीन रिलीजिंग एरिया होता है, जिसको हम सबस्टेंशिया निग्रा बोलते हैं, वह एरिया धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, जिससे यह रसायन की कमी ब्रेन में आने लगती है डोपामीन वाली। तो आप ऐसे समझिए कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में हमेशा पेट्रोल डालना पड़ेगा। पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी चलेगी, पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। उसी तरह इंसान के व्यक्ति के अंदर डोपामीन नामक रसायन होने से वह अपनी डेली दिनचर्या आराम से कर पाता है। जब यह डोपामीन दिमाग में खत्म होने लगता है तो उसका शरीर धीरे धीरे अपना ब्रेन का साथ छोड़ने लगता है और वह अपना डेली रूटीन कर नहीं पाता, स्लो हो जाता है, हाथ पैरों में अकड़न आती है, कंपन आती है। तो इन मरीजों के अंदर जिनको टिपिकल पार्किंसंस है, सिंडोपा नामक दवाई, मतलब वह दवाई में कुछ नहीं है, हम डोपामीन ही दे रहे हैं बाहर से, वह दी जाती है, और ऐसे मरीज इन दवाइयों से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, ये आपने बताया पार्किंसन के बारे में। अब बातचीत के अंत में हमारे तमाम श्रोता जो इस समय आपको सुन रहे हैं, तो उनको आप बताइए कि मस्तिष्क यानी कि ब्रेन को किस तरह से हम हेल्दी रख सकते हैं, उसके कुछ टिप्स यदि आपके पास हों तो उनके बहुत काम आएंगे।
0: तो आजकल इन बीमारियों के अलावा लोग स्ट्रेस सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो स्ट्रेस लेते हैं, तो मैं तो यही मानूंगा कि अपना लाइफ को जितना हो सकता है हम स्ट्रेस फ्री कर सकें, डेली सुबह उठ के योगा करना और अपना वेट कंट्रोल, बाकी और बीमारियां जैसे बीपी शुगर को कंट्रोल रखना, डेली दिनचर्या में अपना व्यायाम को इन्वॉल्व करना। अगर हम 7 दिन में से 4 दिन भी रेगुलर 30 मिनट के लिए व्यायाम करते हैं तो वह हमारा दिमाग ही नहीं, हमारा दिल और दूसरे अंगों को भी स्वस्थ रखेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आप आए और आपने मस्तिष्क यानी ब्रेन संबंध में जो जानकारी दी, उनके रोगों के बारे में बताया, क्या क्या लक्षण होते हैं ये सब आपने बताए, और क्या कुछ ध्यान रखने वाली बातें ये भी आपने बताई। आपने वक्त निकाल कर आप स्टूडियो में आए और आपने जो जानकारियाँ दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। मैं भी आकाशवाणी और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे बुलाने के लिए और लोगों तक अपना संदेश पहुँचाने के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है, FM 103.1 MHz पर। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, आकाशवाणी जयपुर से।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना। और महिला क्रिकेट T20 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी वैश्विक स्तर की संस्थाओं के निर्माण करने की अपील की है। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी देश की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो भारत की आर्थिक क्षमता को दर्शाता है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने ते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस अवसर पर कहा कि आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कौशल रूप से सक्षम लोगों की आवश्यकता है और ये युवाओं के लिए एक अवसर है। जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इनमें पटना, कोलकाता, छत्तीसगढ़, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस संबंध में नियुक्ति वारंट जारी किए। इसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने का ऐलान किया है। इस घोषणा के अनुसार कानून, न्याय और समाज से जुड़े समकालीन मुद्दों पर इस श्रृंखला के जरिए विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। हर माह एक महत्वपूर्ण विचार पर आधारित ये व्याख्यान श्रृंखला न्यायाधीशों, विधि विशेषज्ञों और संगठनों तथा शिक्षाविदों को एक मंच पर लाएगी। मुख्य न्यायाधीश के मार्गदर्शन में इस श्रृंखला के विषय और प्रारूप तय किए जाएंगे। प्रदेश में अब तक 73,184 YCLG सदस्य पुलिस से जुड़ चुके हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कल प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों और YCLG सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद के दौरान ये जानकारी साझा की। उन्होंने प्रदेश में महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा और नशे की रोकथाम को लेकर दिशा निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि YCLG पुलिस और आमजन के बीच प्रभावी कड़ी के रूप में काम कर सकती है। सदस्यों को अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर पुलिस के साथ समन्वय करना चाहिए। पुलिस अधिकारियों को भी YCLG सदस्यों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने और उन्हें अपराध रोकथाम तथा जन सुरक्षा के कामों में भागीदार बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों के प्रत्याशी दम खम के साथ प्रचार में जुटे हैं। भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य विभिन्न राजनीतिक दल तथा निर्दलीय उम्मीदवार घर घर जाकर जनसंपर्क साध रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बीकानेर, अजमेर और जोधपुर में रोड शो का कार्यक्रम है। वे भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में जन समर्थन जुटाएंगे। मुख्यमंत्री पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने 9 और 11 सितंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री सिंह ने कल अजमेर

0: बाड़मेर में जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारियों के साथ बैठक कर निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराने को कहा। इस बीच चुनाव के महायज्ञ में ज्यादा से ज्यादा मतदान की आहूति देने के लिए नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए स्वीप गतिविधियों के माध्यम से लोगों को मतदान का महत्व समझाया जा रहा है। और अब मौसम। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में पिछले दो तीन दिन से चल रहा बारिश का दौर आज कुछ धीमा पड़ गया है। हालांकि कल राजधानी जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा, प्रतापगढ़, करौली, सीकर, कोटा, चित्तौड़गढ़ सहित करीब 25 शहरों में बारिश हुई। इससे कई बांधों और जलाशयों में पानी की आवक बढ़ गई है। टोंक के बीसलपुर बांध में 3 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। बांध का जलस्तर बढ़कर 314 आरएल मीटर से अधिक दर्ज किया गया। सवाईमाधोपुर में हुई बारिश के बाद मानसरोवर बांध पर चादर चल रही है। साथ ही छोटे बड़े अन्य तालाब और बांधों का जलस्तर भी बढ़ गया है। अलवर और दौसा में हुई तेज बरसात से कई इलाकों में पानी भर गया और यातायात बाधित हुआ। सवाईमाधोपुर, झालावाड़ और करौली जिलों में तेज बारिश की चेतावनी के कारण स्कूलों में अवकाश रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज भी राज्य के पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इस दौरान भरतपुर, जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा तथा कोटा, अजमेर, बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। कल से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। हालांकि भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पाली के जवाई क्षेत्र में तेंदुओं के आवास, गुफाओं, प्रजनन स्थलों और वन्य जीव कॉरिडोर के आसपास नए व्यावसायिक निर्माण पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने तेंदुओं के रहने के आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे को लैपर्ड हैबिटेट कंस्ट्रक्शन कंट्रोल जोन घोषित किया है। संवाददाता ने बताया कि वन्य जीव आवाजाही को सुरक्षित रखने के लिए पहाड़ियों के खनन कार्यों और नए पर्यटन गतिविधियों पर भी रोक है।
1: इस आदेश का उद्देश्य जवाई के प्राकृतिक लैंडस्केप और तेंदुओं के कॉरिडोर को मानवीय हस्तक्षेप से बचाना है। कोर्ट ने पाली वन विभाग को 8 सप्ताह में तेंदुओं के आवास की मैपिंग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नाइट सफारी, स्पॉटलाइट, ड्रोन बैटिंग और गुफाओं के आसपास की गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: महिला क्रिकेट T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। दुबई में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और एक गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्रीचरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। ये पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना। और महिला क्रिकेट T20 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सवेरे के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

श्रोताओं आपको फिर से बता दें, शाम 4 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के अंतर्गत सुनिएगा नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत का 4th भाग, संपादन सहयोग योगिता जाधव का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

में आपको अब सुनवा रहे हैं गोल्ड फिल्म का गीत। यासिर देसाई की आवाज है, गीतकार हैं अर्को प्रभो मुखर्जी, संगीतकार भी हैं अर्को प्रभो मुखर्जी।

0: यासिर देसाई की आवाज़ में आप सुन रहे थे गोल्ड फिल्म का गीत। गीतकार और संगीतकार थे अर्को प्रभु मुखर्जी।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।

चिंगारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हिमानी कपूर की आवाज़ में। समीर के बोल थे, आदेश श्रीवास्तव का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।

0: साहब बीबी गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं किसे दिखाऊं।
1: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: रहने दो।
1: 6 सितंबर 1949 को मुंबई में जन्मे राकेश रोशन, संगीतकार रोशनलाल नागरथ के पुत्र और संगीतकार राजेश रोशन के भाई हैं और ऋतिक रोशन के पिता हैं। और अब तो राकेश रोशन का नाम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े निर्माता निर्देशकों में शुमार होता है। लेकिन पिता संगीतकार रोशन के अचानक देहांत के बाद राकेश रोशन के लिए अपने करियर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ऐसे में उनकी मदद के लिए आगे आए निर्माता निर्देशक मोहन कुमार। इन्होंने कई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को राकेश रोशन का नाम सजेस्ट किया एक्टिंग के लिए और आखिर 1970 में फिल्म घर घर की कहानी से राकेश रोशन की एक्टिंग की कहानी शुरू हुई।

ये गाना जो अभी आपने सुना, अभिनेता जलाल आगा पर फिल्माया गया था। इस फिल्म घर घर की कहानी में राकेश रोशन सपोर्टिंग रोल में थे। बतौर अभिनेता उन्होंने अधिकतर सपोर्टिंग रोल्स ही किए। सोलो हीरो के रूप में उनकी कम ही फिल्में आईं, लेकिन जो भी आईं वो भी यादगार रहीं और उनका संगीत तो सुपर डुपर हिट रहा।

0: इन दोनों ही फिल्मों में हालांकि मुख्य भूमिकाओं में देवता में संजीव कुमार थे और जख्मी में सुनील दत्त, लेकिन राकेश रोशन ने अपनी उपस्थिति बहुत ही पुरजोर तरीके से जाहिर की। उसके बाद फिल्म खट्टा मीठा में गोविंदिया गोस्वामी के साथ इनका ये गीत आज भी लोगों का दिल जीत लेता है।
1: ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ,

0: इन दोनों ही फिल्मों में हालांकि मुख्य भूमिकाओं में देवता में संजीव कुमार थे और जख्मी में सुनील दत्त, लेकिन राकेश रोशन ने अपनी उपस्थिति बहुत ही पुरजोर तरीके से जाहिर की। उसके बाद फिल्म खट्टा मीठा में गोविंदिया गोस्वामी के साथ इनका ये गीत आज भी लोगों का दिल जीत लेता है।
1: ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ।

ऐसी ही और भी फिल्में हैं। इनमें एक फिल्म याद आती है, फिल्म खूबसूरत। हालांकि फिल्म में टाइटल रोल रेखा का था, लेकिन राकेश रोशन और रेखा की जोड़ी ने बहुत ही कमाल अभिनय किया।

ऐसी ही और भी फिल्में हैं जिनमें राकेश रोशन अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे, लेकिन इससे राकेश रोशन खुश नहीं थे। इसीलिए 1980 में राकेश रोशन ने स्थापित की अपनी फिल्म निर्माण संस्था फिल्म क्राफ्ट और फिल्म बनाई आपके दीवाने।

0: तुम सा नहीं था, काली जुल्फे उड़ते बादल गोरा चांद सा चेहरा।
1: तेरा जलवा तौबा है तेरा जलवा, जब से देखा तौबा है तेरा जलवा।
2: फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया, तो फिर बाद में जो फिल्म बनी वो थी कामचोर।

ये फिल्म कामचोर सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म को राकेश रोशन ने प्रोड्यूस किया था और यहीं से शुरू हुआ राकेश रोशन की फिल्मों में क शब्द का कमाल। यहां से आगे राकेश रोशन ने जो भी फिल्में बनाई उनका शुरुआती अक्षर क रहा और अब तो राकेश रोशन एक ब्रांड बन गए। राकेश रोशन ने 1987 में निर्देशन की कमान भी संभाल ली। फिल्म थी

खुदगर्ज की सफलता के बाद राकेश रोशन सफलता की गारंटी माने जाने लगे। खून भरी मांग 1988 में रेखा के साथ, फिर किशन कन्हैया 90 में, किंग अंकल, करण अर्जुन, कोयला, और इसके बाद कुछ वर्षों तक बतौर अभिनेता कुछ फिल्मों में कभी कभार नजर आए। लेकिन सन 2000 में बिग बैंग के साथ आए अपने बेटे को लेकर ऋतिक रोशन के साथ कहा, कहो ना प्यार है।

और ये भी जानते होंगे कि बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस फिल्म का नाम है क्योंकि इसे सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले। इसके बाद राकेश रोशन ने जितनी भी फिल्में बनाई सभी ने सफलता का एक नया मकाम हासिल किया। यहाँ ये भी बता दें आपको कि खूबसूरत फिल्म में रेखा के साथ अभिनय करने वाले राकेश रोशन ने अपनी दोस्ती को निभाया और रेखा को कोई मिल गया और क्रिश जैसी फिल्मों में बहुत ही दमदार भूमिका दी। तो अब वो फिल्में जिन्होंने सफलता का इतिहास रचा, कोई मिल गया।

0: फिल्मकार राकेश रोशन पर केंद्रित इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सुबह के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान।

0: का समाधान करेगा, साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: इस छोटे से अंतराल के बाद आइए सुनते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
2: को भी अभी तक ये पूरा स्वीकार नहीं हो रहा है मन को।
3: करेक्ट। और ये इंसानों की फितरत है, मतलब हम इसको, ये नहीं बदली जा सकती है, ये किसी एजुकेशन सिस्टम से भी नहीं बदला जा सकता, किसी संस्कार से भी नहीं बदला जा सकता। इसको कई करोड़ों जन्म लगेंगे कि जो आया है उसको जीना, पूरी तरह से जो स्थिति है, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, उसको पूरी तरह से जीने दो। अगला क्या जो सवाल है, ये बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी इससे गुजरना। और तब उस वक्त जब अभी अभी किसी की मृत्यु हुई है और पूछे आप अगला क्या, वैसा महसूस होता है, क्या मतलब क्या अगला क्या। पर मेरे पिताजी दीपाली, बिहार से पहली लड़की थे हम जो इंडियन आइडल में गए थे, तो मेरे पिताजी को काफी प्रेशर आया उनको ये पहले देख के, वो बिल्कुल हमको ऐसा हमको लगता है कि वो एकदम भौचक हो गए होंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
3: क्योंकि ये पहली बार हो रहा था कि ऐसे मेरी बेटी एयरपोर्ट, एक तो फ्लाइट वाले हम थे नहीं, हम ट्रेन वाले लोग थे, हम फ्लाइट से उतर के, क्योंकि इंडियन आइडल वालों ने फ्लाइट से भेजा है, और मेरे पिताजी, इतनी मीडिया, इतने लोग, कुछ 200-250 लोग आ गए थे, फूल माला, और बच्चियां ऑटोग्राफ लेना चाहती थी, मेरे घर पे लड़के आते थे बाइक से और फूल फेंक के जाते थे। ये स्थिति जब हम मुंबई में चल रहा था तो ये स्थिति होने लगी थी। पटना मेरे साइज का बुके आता था घर पे, मेरे साइज के सॉफ्ट टॉयज आने लगे थे, अखबार में छपने लगा कि दीपाली का फेवरेट मिठाई कौन सा है, तो वो लोग लेके घर आते थे इस उम्मीद पे कि दीपाली से मिलना हो जाएगा। तो इतना प्यार देख के, अब तक मेरे पापा जो थे वो बैकफुट पे खेल रहे थे जीवन में, क्योंकि बिहार में पापा मेरे पुलिस वाले थे, उनके पास ज्यादा समय नहीं था। और हमको जो असल में जो मेरे पिता का रोल प्ले करते थे वो थे मेरे चाचा, मेरे जिनको हम बाबूजी बोलते थे।
2: अच्छा।
3: बाबूजी ही हम लोगों को, मेरा म्यूजिक स्कूल लेके जाना आना बाबूजी ही सब कुछ करते। बट जब ये दौर हुआ जहां पर अब हम बाहर जा रहे हैं, तो मेरे पिताजी फ्रंट फुट पे आए एयरपोर्ट पे और बोले दीपाली कुछ ही महीने में अब मुंबई शिफ्ट हो जाएगी और वहां जाकर हिंदी फिल्मों में गाना गाने की कोशिश करेगी।
2: उन्होंने एकदम बोल दिया,
3: पब्लिकली अनाउंस कर दिया। और घर आने के बाद मेरे पापा मम्मी की हो गई लड़ाई।
2: हाँ।
3: आपने ऐसा किस बेसिस पे बोल दिया, अब तो आ गई थी ना वापस, हम तो कभी नहीं चाहते थे कि ये मुंबई जाए, हमको बहुत डर लगता है उस जगह से, हम तो चाह रहे थे कि ये पढ़ लिख के आईपीएस बन जाएगी, अभी भी छोटी है, अब तो शुरू हुआ है इसका, अब हार गई तो चलिए इसका भी शौक पूरा हो गया, इसको इंडियन आइडल में जाना था, हो गया ना, पूरा कर ली ना, टॉप 7 में आ गई, हो गया अब पढ़ाई करो। लेकिन अब तो हमको भी तो चस्का लग गया था ना, ये दुनिया हमने देख ली थी आंख से, हमने महसूस कर लिया था यहाँ जी के, ये जीवन तो हमको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो पापा बोले कि नहीं, हम लोग तो अब तो भेजना ही पड़ेगा इसके, मुंबई बहुत महंगा शहर है, ये तो मेरे माँ बाप को अंदाजा लग गया था। उस वक्त उन्होंने अपने जो भी जमा पूंजी थी थोड़ी सी, उसको तोड़ा। 2 महीने बाद मेरे साथ मेरे पापा मम्मी मुंबई आए, मेरे लिए एक जगह देखी गई जहाँ पे हम रह सके। क्योंकि तब क्या होता है, तब शोज होने शुरू हो जाते हैं, आप ट्रैवल करने लगते हैं, तो पटना से बहुत फ्लाइट्स नहीं होती थी तब बहुत कम फ्लाइट्स होती थी, तो मुंबई रहना जरूरी था, क्योंकि हर 10वें दिन या एक हफ्ते में एक बार आप फ्लाई कर रहे हैं, कहीं शो करने जा रहे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: पर हम लोग इतने भोले थे कि हमें ये नहीं पता था कि ये जो शोज होते हैं इसके पैसे कमाते हैं हम लोग, ये नहीं जानते थे हम। बेचारे पापा मेरे अपना जमा पूंजी तोड़ के और उसमें से हमको लेके मुंबई पहुंचे, एक छोटी सी जगह ढूंढी, रखा वहां पे, और अकेले रह नहीं सकते थे, बहुत छोटी बच्ची थी वो, 18 साल की दीपाली, तो उसको एक पीजी में रखा गया जहाँ पे 2 और लड़कियां कमरा शेयर करती थी। पैंड्रा में एक पीजी में रहना शुरू किया। और एक दिन अचानक ऑफिस से फोन आया कि आप, और शोज होने लगे मुंबई में, शोज होने लगे, और एक दिन अचानक से ऑफिस से फोन आया कि आप आइए और अपना चेक लेके जाइए। तो हमें पता नहीं था चेक क्या, चेक तो गए तो पता चला जितने भी हमने स्टेज शोज किए थे अब तक उसके पैसे मिलते हैं,
2: और वो अच्छी रकम थी,
3: और वो बहुत अच्छी रकम थी।
2: आंखें एकदम,
3: खेल तो वहां से पलट गया सर।
2: हाँ।
3: ये रकम तो हम कैसे समझाएं कि
2: बिल्कुल
3: ये क्या हो गया था। कुछ समय के लिए जब पहली बार चेक मिला और हम बाहर ऑफिस के बाहर निकल के पापा को जब चेक बताए जो अमाउंट था उस पे जो अमाउंट लिखा था वो हम पढ़े भी नहीं क्योंकि हमको लगा वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने कुछ हजारों में अमाउंट बताया पर वो कुछ लाखों में था। ये स्थिति थी, जीवन वहां से पलट गया मेरा। दैट फर्स्ट चेक गेव मी द कॉन्फिडेंस कि अब हमको मेरे माँ बाप के ऊपर जो प्रेशर है, हमको बहुत, हमको लगता है कि बेटियों को ऐसे ऐसे पाला जाता

0: है कि समाज कर देता है, माँ बाप
1: थोड़े में खुश रहना,
0: वो संतोषी पैदा ही संतोषी होती है, पैदा होंगी और नहीं तो समाज बना देगा कि भाई तो बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे पापा तुमको पढ़ने भेज रहे हैं, इतने में ही खुश है बेटी, हाँ ये बात तो सही है पापा पढ़ने तो भेज रहे हैं। तो मेरे अंदर एक बहुत गिल्ट फील होता था कि मेरे पापा को इतना, मेरे पापा मेहनत करते हैं हम और हमको, मेरे पर सारा खर्चा कर देंगे, दीदी को भी पढ़ाना है तो कैसे होगा। लेकिन वो चेक वो जीवन में एक दूसरी दीपाली को लेकर आया बाहर,
1: और उसके बाद वो एक अलग उड़ान शुरू हुई,
0: एक अलग उड़ान शुरू हो गई।
1: लगातार शोज हो रहे थे और हर शोज में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था
0: और इंडियन आइडल ने तब तक अप्रोच कर दिया कि आप इसे होस्ट करिए।
1: हाँ हाँ।
0: तो जो पिछले साल जो लड़की कानपुर के एक लाइन में खड़ी थी जिस शो में एक हिस्सा बनने के लिए, इस साल वो लड़की उस शो को होस्ट करने जा रही थी।
1: बिल्कुल।
0: तो अब वो लड़की वो थी ही नहीं जो दीपाली पैदा हुई थी पटना में।
1: हाँ।
0: वहां से खेल बदलने लगा, कॉन्फिडेंस भी बदलने लगा।
1: बिल्कुल। यहाँ कामयाबी भी आ रही थी, काम भी आ रहा था और जिंदगी बहुत कुछ सिखा रही थी।
0: करेक्ट।
1: परिस्थितियों के मुताबिक बदलना, अपने आप को संभालना। यहाँ मैं आगे की बातचीत करने से पहले एक गाने का जिक्र करना चाहता हूँ, गंगा मैया तो है पीरी चढ़े वो गाना जो आप गाती हैं बहुत सारा, पहले वो गाना सुनते हैं उसके बाद आगे की यात्रा की बात करते हैं।
0: बिल्कुल।

0: क्या बात है, ये गाना तो जैसे हमारी संस्कृति का
1: हिस्सा
0: बन चुका है, हमारे मानस का हिस्सा बन चुका है। मुझे याद है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो ये कहा जाता था कि पहले बनारस जाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, गंगा मैया देखो, फिर गांव वापस आओ।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो ये एक पूरा एक दौर था जब इस फिल्म को लेके दीवानगी थी। ये गाना सुनते हैं।

0: तो ये गाना हमने सुना, गंगा मैया तो है पीरे चढ़ेबो, और बिहारी लड़की यहाँ आते आते अभिनय के मैदान में भी उतरने वाली थी, ये कैसे हुआ है?
1: ये गजेंद्र सिंह जो है, हाँ, जो सारेगामा
0: के प्रोड्यूसर थे,
1: डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनका अचानक एक दिन फोन आया। उस समय भोजपुरी का एक नया चैनल लॉन्च हुआ था और उन लोगों को नए शोज बनाने थे और
0: बड़े धूमधाम धड़ाम तरीके से शुरू हुआ।
1: बहुत धड़ाम, मतलब बंबई में बहुत बड़ा ऑफिस था भोजपुरी चैनल होने के बाद भी, जितना बड़ा उनका ऑफिस था हिंदी वाले भी दंग रहते थे कि ये क्या चल रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उस वक्त का जो दौर था,
0: सीरियल बनने लगे, रियलिटी शो बनने लगे, जाने क्या क्या हो रहा था।
1: तो ये उन्होंने गजेंद्र सिंह ने ही एक दिन फोन किया, और ये वो गजेंद्र सिंह है जो दीपाली के दिमाग में सारे गामा के डायरेक्टर है, जो जिनको सोनू निगम एक जमाने में होस्ट करते थे और हम बचपन में देखा करते थे। तो फोन आया कि गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, तो मेरा रिएक्शन ऐसा था, अच्छी बात है, ओके बाय, क्योंकि हमको विश्वास नहीं हुआ कि खुद गजेंद्र सिंह ने फोन किया। फिर दोबारा कॉल आया, दीपाली मैं गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, साईं बाबा प्रोडक्शन, सारे गामा। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तब हमको समझ आया कि अरे ये तो असली वाले गजेंद्र सिंह है। तो हम बोले हाँ जी सर बोलिए। तो हम एक शो बना रहे हैं भोजपुरी में है, तो हम चाहते हैं कि तुम उसमें एक्टिंग करो। बोले सर हमको एक्टिंग नहीं आती है। तो बोले वो तुम्हारा काम नहीं है डिसाइड करना, तुम्हारा काम है हाँ बोलना, तुमको आती है कि नहीं आती है ये तो डायरेक्टर बताएगा, हम बताएंगे, तुमसे कराएंगे, हम करा लेंगे, हमको पता है। एंड दैट्स हाउ दिस बड़की मलकाई नाम था इस सीरियल का, ये शुरू हुआ मेरे जीवन में। और एक्टिंग का हमको सच में, मतलब ठीक है कि मूड इंडिगो में हम लोगों को फर्स्ट प्राइज मिल गया था, बट ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेंगे। बट क्योंकि उस जमाने में बहुत अच्छे पैसे थे, हमको ये भी नहीं पता था कि पर डे बेसिस पे सीरियल में पेमेंट होते हैं, सो आई थॉट कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और हुआ क्या कि इंडियन आइडल में मेरे ना वोकल कॉर्ड्स फट गए चिल्लाने की वजह से। तो एक बहुत बड़े डॉक्टर थे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि अब तुम जीवन भर कभी गा नहीं सको, तो तुम गाना तो भूल ही जाओ, ये तुम्हारा करियर यहाँ पे गाने का खत्म होता है। और मेरे वोकल कॉर्ड्स का जो उस समय जो एक वो लैरिंजियोग्राफी या कुछ कहते हैं उसको, उसके पिक्चर्स देखे उन्होंने, तो पिक्चर्स में वोकल कॉर्ड्स लिटरली फट चुके थे और खून बह चुका था, पूरा रेड सोर रेड था मेरा वोकल कॉर्ड। तो हम भी डर गए, हमको लगा कि, तो वो ही उन्होंने बोला कि कुछ दिन तक तो तुमको बिल्कुल साइलेंस पे रहना होगा, क्योंकि उसको रेस्ट देना जरूरी है। और फिर उन्होंने बोला कि सिंगिंग एज अ करियर भूल जाओ, क्योंकि अब तुम अपने वोकल कॉर्ड्स को फाड़ चुकी हो चिल्ला चिल्ला के वो रियलिटी शो होस्ट करने के चक्कर में, तो गाना तो तुम गा नहीं सकती हो, और अगर बहुत बोलोगी तो जो बोलने वाली आवाज है वो भी चली जाएगी। तो हो सकता है वो उनका डराने का तरीका हो एक छोटे बच्चे को, ये इस बहाने शायद ठीक हो जाए। बट आई टुक इट वेरी सीरियसली। तो जब ये एक्टिंग का ऑफर आया तो हमको लगा ठीक है, करियर सिंगिंग में तो है नहीं जीवन अब मेरा, मेरा तो गला चला गया है गाने के हिसाब से, तो एक्टिंग कर लेते हैं। तो एकदम शिद्दत से हम उसमें घुस गए एक्टिंग करने में, और फिर मतलब फिर बाकी जगह से भी ऑफर्स आने लगे और हम करने लगे, रियाज और गाना तो कहीं चला गया जीवन से।
0: और ये जो गले की समस्या थी, इसके बारे में पहले पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि वोकल कॉर्ड्स पर इफेक्ट पड़ता
1: नहीं,
0: है?
1: नहीं पता था, अगर पता होता तो शायद। पर अभी हम सोचते हैं कि अगर कोई बोले कि इतना बड़ा रियलिटी शो होस्ट करना है आपको, लेकिन आपके गले पे असर पड़ेगा, तो भी हम ना नहीं बोलते।
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: बिल्कुल।
1: बोल पाते।
0: कैसे संभाला फिर अपना गला उन दिनों में, जबकि ये कहा गया कि पूरी तरह से साइलेंस रहना है वगैरह वगैरह?
1: उस वो कुछ दिन तो हम बहुत परेशान रहे, क्योंकि बहुत दर्द होता था गले में, तो हम बहुत रोते भी थे, माँ थी मेरे पास यहीं पर अंदर ही अंदर अब समझ आ गया था कि मेरा करियर तो है ही नहीं म्यूजिक में, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरा दिमाग, क्योंकि हम आई वॉज अ डूअर होता है ना, कुछ लोग करने वाले होते हैं, तो हमको

0: करना था कुछ। अब हम आ चुके थे मुंबई और शोज जो थे वो पैसा दे रहे थे, हमको नहीं पता था कि शोज से पैसे आएंगे, पर अब तो आ चुके थे। चस्का तो वहां से भी लग चुका था और यहाँ पे म्यूजिक करियर जाता रहा। तो ऐसे में एक एक्टिंग करियर शुरू हुआ, तो हमको लगा ठीक है, मतलब तो कुछ कला से रिलेटेड करने में है ना, तो ये भी तो यू नो
1: एक रूप है,
0: का आर्ट का ही एक रूप है ना एक्टिंग, और अच्छा है, डिसेंट है। भोजपुरी का जो उस समय इमेज था, मतलब वल्गर गानों का, ये शो उस इमेज को भी तोड़ रहा था, एक अच्छा डिसेंट पारिवारिक एंटरटेनिंग शो। तो हमको लगा सही है। तो पहले कुछ दिन, कुछ ही हमको लगता है कुछ ही महीने का डिप्रेशन रहा होगा, और उसके बाद फिर चीजें पलटने लगी। आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट,
1: और उसके बाद फिर वो जो एक्टिंग का सिलसिला चल पड़ा।
0: Correct.
1: उसमें कौन कौन से सीरियल्स आए वो भी हमारे सुनने वालों को बताइए।
0: सबसे पहले तो बड़की मलकाइन था, फिर उसके कुछ दिन बाद दूरदर्शन नेशनल पर अनुदामिनी करके एक शो आया, वो बहुत हिट हुआ, उसमें मेरा वैम्प का रोल था।
1: ये अलग चैलेंज हो गया,
0: ये अलग चैलेंज हो गया। सो मेरे लिए, बट ये चैलेंजेस बहुत काम कर रहे थे, क्योंकि वो चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते, अगर आपको वो करनी पड़े तो आप अपने आप को फिर और बेहतर पहचानते हैं कि अच्छा ये भी सक्षमता है, ये भी करने में सक्षम होंगे हम, ये भी, ये सारी चीजें आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी है। जब आपने अपने ऊपर कोई कैप नहीं लगाया है कि हम यही करेंगे, तो फिर आप एक जर्नी पर निकल पड़ते हैं इंसानी तौर पे। तो वो मेरा शुरू हो गया था अनजाने में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी अपनी तरह से
0: आई वॉज अलाउइंग कि जीवन को जैसे बहना है बहू, क्योंकि अब तो हम जो सोच के आए थे कि हम बहुत जल्द, मेरे पापा बोले थे कि अब ये मुंबई जाएगी और हिंदी फिल्मों में गाने का कोशिश करेगी, वो तो मेरा चूर हो गया 2 ही महीने में जब डॉक्टर ने बोला नहीं पॉसिबल है। तो फिर हमने एक्टिंग को एक्सेप्ट किया, और भारत की शान, दूरदर्शन पे ही एक रियलिटी शो होता था भारत की शान, उसको भी होस्ट किया। जय हनुमान एक सीरियल आता था सोनी एंटरटेनमेंट पे, उसमें एक्टिंग की, उसमें भी वैम्प का रोल था, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, महाराणा प्रताप, बस थोड़े से अनजाने, नीम नीम शहद शहद, बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा, इस तरह के छोटे छोटे शोज में अच्छे इम्पोर्टेंट रोल्स कर करके आई थिंक मेरे को 6 साल निकले।
1: और ये जो गायकी वाला मामला था,
0: वो तो बस महीने में जैसे 20 दिन की शूटिंग और 10 दिन जो बचा है उसमें कभी कोई शो मिला तो कर लिया।
1: और गला तब तक संभल
0: गया था, पर रियाजी गला नहीं था वो। वो तो उसके अंदर का चोट हील हो गया था, वो मेरे दिमाग का फितूर था कि वो चोट हील नहीं होगा, अब कभी कुछ नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम शोज जो उस समय होते थे, उस समय शोज में प्रायोरिटी ये नहीं होता था कि सुरीला गाओ, ऑडियंस नाचनी चाहिए। तो गाने के ऊपर उतना प्रेशर है नहीं, कोई भी गाना चला दो ऑडियंस नाच रही है। तो शोज अच्छी मेरी अच्छी कट रही थी कि शोज भी चल रहे थे और एक्टिंग भी चल रहा था, और अब करियर तो है नहीं म्यूजिक में सिंगिंग में, तो रियाज तो करने की जरूरत है नहीं, ऐसा जीवन चल रहा था मेरा।
1: और मम्मी पापा तब तक पटना में ही थे?
0: वो लोग पटना में ही थ्रू आउट रहे, मतलब पूरे टाइम वो लोग पटना, पापा क्योंकि सरकारी नौकर थे तो वो शहर तो नहीं छोड़ सकते थे, माँ आना जाना करती थी ऑफकोर्स, वो बेचारी बट गई थी अपने पति और अपने बच्चे के बीच, क्योंकि बड़ी बहन जो थी वो बैंगलोर में LLB कर रही थी, और वो प्रॉपर लाइफ जी रही थी जो एक उस उम्र का बच्चा जीता है, हॉस्टल लाइफ, यू नो क्लास जा रहे आ रहे, पर उनकी ये बेटी जो थी वो एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गई थी। मतलब एक बंदा है उस रियलिटी शो के बाद, उसने बोला चलो बेटा मैं तुमको मोंटी शर्मा से मिलवाता हूँ। हम लोग पहुंच गए यशराज के स्टूडियोज में, मोंटी शर्मा उनके सामने बैठ के, सांवरिया फिल्म आई थी तब, वाली थी या आ गई थी, और उन्होंने गाना भी सुना। और हम लोग जब वापस लौट रहे थे तो रणबीर कपूर से भी मुलाकात हो गई, तो ऐसा लगा कि वाह अब तो बस प्लेबैक मिल ही जाएगा। और वो ही टाइम था जब जो रियलिटी शो उसको होस्ट करने के ठीक पहले का टाइम, जब मेरा गला बिल्कुल रेडी था, जब माँ बाप को लगा था कि ये प्लेबैक में कुछ करेगी। और हमने मुलाकात की, हम जब घर वापस आए तो उस बंदे ने जिसने हमें मिलवाया बिना मांगे, उसने हमारी जो मीटिंग करा दी उसके एवज में उसने बोला कि उसकी कोई विदेशी मित्र मेरे पास रहेगी 3 महीने के लिए। तो मेरी माँ को ये बात खटक गई, क्योंकि ये बात उसने तब नहीं बोला जब वो हमें मिलवाने ले जा रहा था,
1: ये बाद में बोला गया
0: जब उसने हमें मिलवा दिया। और जब मेरी माँ ने मना कर दिया कि नहीं अनजान कोई लड़की नहीं रहेगी तुम्हारे साथ, तो उसने बोला पर मैंने तो तुम्हें मोंटी शर्मा से मिलवा दिया था, तब भी तुम मना कर रही हो मुझे। तो

0: में ये गेम समझ आया कि यहाँ पे ऐसे ही होता है, एक हाथ दे एक हाथ ले फेवर्स, कोई फ्री में
1: करण बनते हैं।
0: हाँ, यहाँ कोई आपके लिए फ्री में नहीं कुछ करेगा, वो आपको लेके, और वो बहुत क्लियरली उसने बोला कि बट हम तो अभी तुमको मोंटी शर्मा से मिलवा के ला रहे हैं भाई,
1: तो ये तो मानना ही पड़ेगा।
0: तो ये तो तुम कैसे मना कर रही हो, मतलब तुम ये मना कर रही हो तो मतलब तुमको अब जीवन में कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास नहीं ले जाएंगे। तो अब हम लोग पटना से उठ के आए हुए, हमारा तो हमारी तो दुनिया हिल गई। और मेरे पिताजी वैसे भी बहुत पुलिस वाले हैं, वो दुनिया के एक उस आयाम को देखते होंगे जो हम नहीं देखे हैं, तो उनको डर भी बहुत लगता है अपनी बेटियों के लिए, हर बाप को लगता है, पर पुलिस वाले थोड़ा ज्यादा डरते हैं क्योंकि वो थोड़े ज्यादा गंदगी देखते हैं, जो गंदा साइड है, जो कठिन साइड है जीवन का, वो ज्यादा देखते हैं। तो मेरे पापा हमको उस दिन एक बात समझाए कि बेटा किसी भी काम को करने के लिए अगर झुकना पड़े तो मत जाना, अपनी इज्जत अपनी डिग्निटी को सबसे ऊपर रखना, और अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि उस जगह पे तुमको डर लग रहा है तो वहां से हट जाना, निकल जाना, काम नहीं मिले मत करना, पर कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। क्योंकि उनको ये डर था कि अगर ये छोटी बच्ची है ये काम मांगेगी तो एवज में उससे क्या मांग ले, ये पता नहीं जज कर पाए कि नहीं कर पाए। और क्योंकि दीपाली एक किताबी बच्ची थी,
1: अक्षरशः मान लिया उसने,
0: शब्दशः उस बात को हमने कर लिया फॉलो। वैसे भी कुछ ही दिनों बाद वोकल कॉर्ड्स फट गए, ये सब कुछ यू नो, ये अपने आप ये चीजें होती चली गई कि सिंगिंग से मेरा नाता रिश्ता टूट गया पूरी तरह से 2012 तक।
1: और ये सारा समय आपको जो है ये ले जा रहा था एक्टिंग की दुनिया में,
0: एक्टिंग की दुनिया में। एक्टिंग करते करते ऐसा लगने लगा कि ये एक्टर जो है उसको तो सारा काम वही करना होता है जो डायरेक्टर बोलता है, तो बनना तो हमको डायरेक्टर है, आई एम अ लीडर।
1: ये यानी मंजिल जो है वो हर एक पड़ाव पर नई नजर आती रही।
0: बिल्कुल।
1: और यहाँ से FTI दिखने लगा।
0: बिल्कुल।
1: मतलब ये बहुत बड़ा टर्न नहीं था कि सिंगिंग से एक्टिंग और एक्टिंग से डायरेक्शन?
0: हाँ, टर्न था, बहुत बड़ा टर्न था। लेकिन हम बोले ना कि ये मेरा सौभाग्य है कि कभी कोई, मेरे माँ बाप, मेरी बहन, कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि तुम क्या कर रही हो, तुम करना चाहती क्या हो। कभी कोई नहीं हमको ये सवाल पूछता था।
1: आपने एक दिन ये तय कर लिया कि आपको फिल्म इंस्टीट्यूट में जाकर डिप्लोमा लेना।
0: हाँ, और इसके लिए एक्टिंग छोड़ के बाकायदा, और तब तक इधर पैरेलली मेरा ग्रेजुएशन भी हुआ मुंबई में।
1: हाँ हाँ, अरे वो तो एडमिशन ले लिया यहाँ कॉलेज में, ये तो मैं भूल गया बात करना।
0: यहाँ हमने एडमिशन ले लिया और मेरा ग्रेजुएशन हुआ मास मीडिया में।
1: तो ये क्लासेस
0: जो थे, ये प्रिंसिपल काफी दयावान थी, वो रियलिटी शो देखती थी और शी वॉज अ फैन, शी वॉज अ सपोर्टर, तो उन्होंने इतनी छूट दे दी
1: रेगुलर क्लासेस नहीं आओगी
0: तो चलेगा। तो वो वहां पे आई थिंक मेरा लक फेवर्ड मी एंड ग्रेजुएशन, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हर कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया, क्योंकि माँ बाप का ये भी था कि बेटा डिग्री तो चाहिए, बिना डिग्री के बिहारी जीवित नहीं रह सकता है।
1: लेकिन ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत जरूरी बात है, और उसमें आपने इस पर फोकस किया ये भी उतनी ही बड़ी बात है कि एक तरफ जब एक्टिंग का मामला चल रहा है, प्रोफेशन सेट है, उसके बाद
0: प्रोफेशन सेट है, पैसे सेट है, मतलब एक 18-20 साल की लड़की के लिए जितने पैसे हम कमा रहे थे, अभी भी सोच के हमको ऐसा लगता है कि मतलब हम गलत रास्ते कैसे नहीं गए, ये कौन सी कृपा थी मेरे ऊपर।
1: ये सारे संस्कारों का खेल,
0: सारे संस्कारों का खेल है, ये मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार थे। और 6 साल बाद जब हम सोचे कि हमको और पढ़ना है, FTII जाना है, तो वो मेरे पिताजी बोले बेटा तुम घर आ जाओ, कोई बात नहीं, अभी कोई कमाई नहीं, कोई काम नहीं, तुम घर आओ, मेरे पिताजी मेरे साथ बैठ के FTII की तैयारी शुरू कर।
1: एक गजब। तो आपने तब एक्टिंग भी छोड़ दिया,
0: बिल्कुल छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मुंबई से वापस घर पटना।
1: ये तो बहुत बड़ा टर्न था।
0: हाँ, ये काफी बड़ा टर्न था, बहुत बड़ा टर्न था।
1: FTII की तैयारी किस तरह की?
0: एक तो पता नहीं था कि फिल्म देखा कैसे जाता है। फिल्म देखना हमें मसाला फिल्में देखने आती थी, मनमोहन देसाई जी की जो ग्रैंड सक्सेस फिल्म जो बिहार में चलती थी। मेरे लिए फिल्म देखना मतलब एंटरटेनमेंट, बट FTII वाज अ सीरियस बिजनेस। और वहां पे जब हम एक्टिंग कर रहे थे तो मेरे अंदर ये था कि डायरेक्टर जो बोल रहा है वही करना पड़ता है, तो भैया जो लीडर है हमको वही बनना है। जिस भी प्रोफेशन में हम काम करें, जो लीडर है हमको तो वही बनना है। ये छोटा जो क्या बोलते हैं, बाल मन जिसको कहते हैं, वो अपना ही कुछ इन्फ्लुएंस निकालता रहता है। तो जैसे एज अ कैरेक्टर हमको ऐसा लगता था कि मेरे कैरेक्टर को ये लोग रुलाते बहुत है, इतना नहीं रो सकती है कोई, वो पलट के

0: क्यों नहीं बोल रही है जब उसके साथ इतनी ज्यादती हो रही है, तो ये जो कहानी लिख रहा है ना, हमको वहां बैठना है, सो दैट आई कैन टेल माय ओन स्टोरी, मे बी यू नो ये मेरे दिमाग में, ये
1: टू कंट्रोल द थिंग्स
0: करेक्ट
1: एंड टेल योर स्टोरी
0: करेक्ट, टू टेल माय स्टोरी इन माय वेज, क्योंकि आप जो दिखाते चले जा रहे हैं ये सच नहीं है। इतनी प्रताड़ना कोई इंसान जीवित तो नहीं सह सकता है, वो कभी तो रिटेलिएट करेगा। तो वो रिटेलिएशन भी वो उस कैरेक्टर का बहुत सीमित दिखाते थे कि वो बस उसने एक बार ऐसे देख लिया चौंक के, बट मेरे नैरेटिव में वो फिट नहीं बैठ रहा था। तो हमको लगा ये कर कौन रहा है, ये खेल क्यों हो रहा है। और मेरी डायरेक्टर से बहस भी होती थी कि सर कभी तो आप पलट के मुझे जवाब देने दो इनको। तो डायरेक्टर ने बताया कि भैया जो राइटर लिखेगा और जो डायरेक्टर बोलेगा यही होगा। तो मेरे दिमाग में अच्छा तो हम अपनी कहानी बनाएंगे, तो हम जाएंगे डायरेक्टर बनने। तब पता भी नहीं था कि FTII नाम का कुछ एग्जिस्ट करता है। इंटरनेट पे दुनिया खोल के पढ़ के पता चला हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसमें तैयारी लगेगी, रिटन होगा, अगर वो क्वालिफाई हुआ तो इंटरव्यू होगा, ये मतलब एक छोटा UPSC का छोटा सा फॉर्मेट। तो
1: उसकी तैयारी के लिए दीपाली यहाँ से एक्टिंग वैक्टिंग सिंगिंग विंगिंग सब छोड़ के चली गई पटना और तैयारी शुरू कर दी।
0: बिल्कुल,
1: ये कहानी बहुत गजब की है भाई।
0: हाँ, हाँ।
1: इतने टर्न एंड ट्विस्ट हैं। पिताजी तैयारी करवा रहे हैं, फिल्में देखी जा रही हैं।
0: हाँ फिल्में देखी नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता था कि फिल्म इंस्टीट्यूट में जाने के लिए फिल्में देखी जाती हैं। आप सोचिए, हमको बहुत आश्चर्य होता है कि कितने कमाल के हैं ये लोग जिनके बीच हम पैदा हुए हैं। इनको कुछ नहीं पता है,
1: नहीं ये एक
0: लेकिन ये लगे हुए हैं।
1: हाँ।
0: हाँ, लगे हुए हैं। हमको भी नहीं पता है कि FTII में घुसने के लिए फिल्में देखनी पड़ेंगी। हमको ये पता है क्रिएटिव होना जरूरी है, एंड आई एम क्रिएटिव। तो जब मेरा रिटर्न हुआ तो उसमें जो एंड जनरल नॉलेज मेरा अच्छा था, जनरल अवेयरनेस अच्छा था, तो वो चीज़ें तो सॉर्टेड थी। क्रिएटिव राइटिंग करना था जो डायरेक्शन के कोर्स के लिए था, वो सॉर्टेड थी। किसी एक फिल्म की समीक्षा अगर आ जाए, किसी स्पेसिफिक फिल्म का एक सीन डिस्क्रिप्शन आ जाए या एडिट पे बात आ जाए, वहाँ हम थोड़े अटकते, बट आई वॉज रेडी कि उसमें भी हम कुछ बात बना के लिख सकते हैं, इतने भी बेवकूफ नहीं है। वर्ल्ड सिनेमा तो पता भी नहीं था। सिनेमा देखना भी नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमेशा उसको एज अ एक्टिंग शूटिंग वही दिमाग में रहा, इसलिए शायद हम थोड़े डेड इमोशन थे। मतलब मेरे अंदर जो जज्बात थे ना वो काफी डेड थे। तो तैयारी शुरू की हमने वर्ल्ड सिनेमा के बारे में सिर्फ पढ़ के, क्योंकि फिल्में नहीं थी मेरे पास देखने को, मेरे लैपटॉप में वो CD प्लेयर नहीं था। मेरे पास वो कंप्यूटर नहीं था जिसमें हम CD लगा के वर्ल्ड सिनेमा की बात देख
1: लें या
0: सके।
1: किसी अलग अलग जरिए से सिनेमा को डाउनलोड कर लें और जमा कर लें और
0: वो
1: शान
0: सब कुछ भी नहीं आता था।
1: हाँ।
0: मेरे हाथ में बस इतना ही था कि वो रिटर्न क्लियर करना है जैसे भी, क्योंकि हमको पता था कि अगर हम इंटरव्यू तक पहुंच गए हमको उसमें से नहीं छांट सकता है। तो आई थिंक आई वॉज वेरी लकी। एक्चुअली मेरा विश्वास था कि हम कभी रिजेक्ट नहीं होंगे। वो रियलिटी शो हारने की वजह थी क्योंकि हम मन से हारे हुए थे। एक लड़की नहीं जीत सकती थी इसलिए वो लड़की नहीं जीती। एक लड़की सोच रही थी वो FTII में निकाल लेगी इसलिए उसने निकाल लिया। यही है, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, ये सत्य है।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं क्योंकि बहुत देर से हम बात कर रहे हैं। तो अब दीपाली कौन सा गाना सुनाएगी?
0: अब दीपाली के जीवन में जो मोड़ आया है वो है छोटा

0: इजाजत तक का सफर तय कर लिया। यहाँ से दीपाली चली आती है पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, सिलेक्शन हो जाता है।
1: करेक्ट।
0: इंटरव्यू सब तोड़ फाड़
1: सब सब सब
0: है ना,
1: सब सब।
0: तो मतलब
1: दीपाली, और जो लिस्ट निकलता है वो लिस्ट में सबसे नीचे का नाम है, क्योंकि वो रैंकिंग

0: सबसे नीचे का नाम है।
1: 12 सीट होते हैं, इनमें से 6 जनरल कैटेगरी और 6 रिजर्व्ड कैटेगरी। तो वो जो 6 सीट है उनमें सबसे नीचे मेरा नाम है, मतलब हमने जस्ट क्वालिफाई कर लिया,
0: बच गए।
1: हाँ।
0: और कौन कौन लोग हैं हमारे साथ वहाँ पर?
1: अलग अलग। अच्छा, ये एक अच्छी बात थी कि 12 स्टूडेंट्स में से हर स्टूडेंट अलग स्टेट का था।
0: बिल्कुल।
1: ये आई थिंक ये कॉन्शियस प्रोसेस है उनका सिलेक्शन का, क्योंकि मेरे बैच में केरलाइट भी था, कर्नाटका भी था, हम बिहारी, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन स्टेट। तो अब क्या होता है, आप अपने प्रांत में, अपने स्टेट में, अपने ही तरह के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। शायद इसलिए FTII जैसा इंस्टीट्यूट बनता है, बहुत बहुत सोच विचार के। अभी इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं तो हमको FTII के मेरे दिन याद आ रहे हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, भी ऐसे ही स्टूडियोज है। बिल्कुल। यही है ही वो।
0: बिल्कुल।
1: वो प्रभात खबर स्टूडियो हुआ करता था, प्रभात स्टूडियोज शांताराम जी का। तो अभी जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इस ऑफिस की तरह ही, हमारे ऐसे ही स्टूडियोज होते थे, हमारे ऐसे ही क्लासेस होते थे।
0: हाँ।
1: तो बट द बेस्ट पार्ट वाज कि सारे बच्चे अलग अलग स्टेट के थे, सारे ग्रेजुएट्स थे। तो आप एक उम्र, अब आप एक जीवन का एक नजरिया, एक एक्सपीरियंस, एक एहसास, आपका दिल टूट चुका है, अब तक आपको प्यार हो चुका है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप जीवन में फिनेंशियल स्ट्रगल समझ चुके हैं, आपने वो सारी चीजें, क्योंकि अब आप ग्रेजुएट हैं तो आपने एक उम्र तो जी ली है, एक हिस्सा एक्सपीरियंस कर लिया है, और उसके बाद आप पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां वर्ल्ड सिनेमा की बात हो रही है, और सिर्फ सिनेमा, सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं हो रही है, ये देख के समझ आ रहा है कि जो मेरे अंदर जो एहसास चल रहा है, इटली में बैठा 100 साल पुराना डायरेक्टर भी उसी एहसास को दिखाने में कामयाब हो रहा है।
0: बिल्कुल।
1: ये समझ आया, सिनेमा इज केपेबल, व्हाट इज सिनेमा केपेबल ऑफ, ये FTII ने समझाया कि इंसान जीना कैसे है, पर्सपेक्टिव क्या होता है।
0: देयर इज नो बाउंड्री इन ह्यूमन इमोशंस,
1: देयर इज नो बाउंड्री, और आप अपने जीवन का कैमरा कहाँ रख रहे हैं, और अपने जीवन को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं।
0: बहुत सही।
1: नॉट जस्ट लिटरली, फिजिकली आप कैमरा कहाँ रख के एक सीन लगाते हैं, उसके पीछे के जो कारण होते हैं ये तो हम सोचते ही नहीं है कि क्यों इस वक्त हम इस लड़ाई को छत से देखा जा रहा है, इस लड़ाई को डायरेक्टर ने नीचे से क्यों नहीं दिखाया। ये चीजें, ये जो पर्सपेक्टिव है, जो फिजिकली और नॉन फिजिकली, मेंटली ऑल्सो, हमको समझ आया कि अच्छा नजरिया होता क्या है एक्चुअली, ये FTII ने सिखाया हमको।
0: और यहाँ वर्ल्ड सिनेमा जो है वो पूरी तरह से अपने कब्जे में था, कुछ भी देख सकते थे, डिस्कस कर सकते थे।
1: बिल्कुल। हमारे जो फैकल्टी थी, जो विजिटिंग फैकल्टीज थे, जो टीचर्स थे, वो बड़े समझदार लोग थे, बहुत सहनशील समझदार लोग थे, क्योंकि ये सारे जो बच्चे आए थे ये सब अपने अपने घरों से लड़कर आए थे। मतलब कोई इंजीनियर है, इंजीनियरिंग के बाद पहुंच रहा है, किसी ने, जो ये वो बच्चे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, और वो वेट कर रहे थे उस दिन का जब वो अपने माँ बाप को बोलेंगे अब तो मेरा चलेगा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जब उन्होंने थोड़े से पैसे भी कमा लिए हैं कहीं से कैसे। तो ये एक ऐसा बाउंड्री था, जो फिजिकल बाउंड्री था FTII का, जिसके अंदर सिर्फ आजाद पंछी थे,
0: और ये सारे सिनेमा के जुनूनी लोग
1: ये
0: थे।
1: सब सिनेमा लवर्स, और इनकी बातें, इनके डिस्कशंस, इनके एक्सपीरियंसेस, इनका जीवन को महसूस करने का तरीका ही अलग था। ये देखते ही कुछ और थे, जो हम लोगों को नॉर्मल दिखता था ये उल्टा देखते थे उन चीजों को। और ऐसे लोगों के साथ मेरा सौभाग्य हुआ कि हम इन लोगों के बीच में गए, मेरे जैसा सीधा चलने, सीधे रास्ते चलने वाला इंसान एक बोले तो एक खुले पिंजरे में घुस गया था, और वहां पर लोगों का सिनेमा देखने का तरीका, उस पर डिस्कशंस, अपनी फिल्में बनाना है आपको, आपके अपने प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो मेरा एक साल का जर्नी था FTII में, आई डिड टेलीविजन डायरेक्शन फ्रॉम देयर, एक साल बाद जो नाम सबसे नीचे था वो वहां से टॉपर बन के निकलता है।
0: वाह वाह वाह।
1: और हमारे यहाँ जो टॉपर होता था उसको विधु विनोद चोपड़ा स्कॉलरशिप मिलती है। सो आई रिसीव्ड दैट स्कॉलरशिप इन FTII। तो मेरे लिए आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा वो जर्नी होगा,
0: पूरा ट्रांसफॉर्मेशन,
1: पूरा मतलब दीपाली कई फेजेस में बनी और टूटी है, FTII उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत। दीपाली को अडल्ट बनाया FTII ने, इन टर्म्स ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन इमोशंस। वहां पे हम पहली बार रोना सीखे पब्लिकली।
0: अच्छा।
1: दूसरों के सामने भी रोया जा सकता है, यह अभी तक नहीं हुआ था मेरे साथ, और FTII के अंदर पहली बार हुआ जब हम किसी के साथ बैठकर कुछ बात करते हुए और हम रो पाए, और वो एक इतना कैथार्टिक फीलिंग था, वो इतना अच्छा है महसूस हुआ जब ये
0: हल्का
1: हुआ,
0: हो जाना,
1: इतना हल्का महसूस हुआ, तो समझ आया कि जीवन कुछ और ही है। मतलब आप

0: कुछ और ही समझ रहे थे अब तक।
1: तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, और वहां पूना में सिनेमा की दुनिया में रहकर एक तरह से खुद से मुलाकात हुई।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने।
1: यहाँ एक गाना सुन लें?
0: बिल्कुल।
1: उसके बाद मुंबई की तरफ आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कौन सा गाना होगा?

0: एकदम सत्य है ये।
1: दीपाली के साथ बिल्कुल यही हो रहा था,
0: बिल्कुल यही हो रहा था।
1: ये जावेद साहब के बोल है,
0: हाँ,
1: मशाल फिल्म का गाना है और हृदयनाथ मंगेशकर का म्यूजिक है
0: जी,
1: है ना, सुनते हैं ये गाना।

0: वहां से फिर बंबई आ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और यहाँ चूंकि अब कैमरे के पीछे रहने की ट्रेनिंग हो गई है,
1: करेक्ट,
0: तो अब क्या करना है?
1: अब टारगेट तो यही था कि बड़े किसी डायरेक्टर को पकड़ लिया जाए और उनके असिस्टेंट बन जाते हैं, जीवन धन्य है यहाँ से। अब यही तो अब करना क्या है, FTI से निकल के सिनेमा बनाना है, करेक्ट। तो एक साल वही छोटे मोटे एड्स, म्यूजिक वीडियोस असिस्ट करने का काम शुरू हो गया,
0: कॉर्पोरेट फिल्म्स वगैरह,
1: कॉर्पोरेट फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट्स, म्यूजिक वीडियोस, या यू नो किसी बड़े डायरेक्टर के यहाँ प्री प्रोडक्शन का 15 दिन में लोगों की जरूरत है, क्योंकि अभी नाम नहीं है मेरा। वो इंडियन आइडल वाली दीपाली यहाँ नहीं चलने वाली है,
0: बिल्कुल,
1: वो जो फेमस वाली है जो सिंगर बनी थी या जिसने होस्ट किया था। और एक अच्छी बात क्या हुई मेरे साथ, जो कि उस वक्त अच्छी नहीं लगती थी, कि कोई हमको पहचानता ही नहीं था, क्योंकि मेरा जो चेहरा है वो इतना एवरेज इंडियन फेस है कि आप यू नो जैसे एक एक एक पर्सनालिटी होती है ना, एक अलग किस्म की खूबसूरती, जैसे ऐश्वर्या राय है, वो एवरेज इंडियन ब्यूटी नहीं है, वो स्टैंड आउट इंडियन ब्यूटी है। वो कहीं भी खड़ी होंगी, हजारों लाखों की भीड़ में भी तो आपकी नजर उनके चेहरे पर चली जाएगी, पर एक एवरेज इंडियन

0: ही नहीं लगती थी कि कोई हमको पहचानता ही नहीं था, क्योंकि मेरा जो चेहरा है वो इतना एवरेज इंडियन फेस है कि आप यू नो जैसे एक एक एक पर्सनालिटी होती है ना, एक अलग किस्म की खूबसूरती, जैसे ऐश्वर्या राय है, वो एवरेज इंडियन ब्यूटी नहीं है, वो स्टैंड आउट इंडियन ब्यूटी है। वो कहीं भी खड़ी होंगी हजारों लाखों की भीड़ में भी तो आपकी नजर उनके चेहरे पर चली जाएगी, पर एक एवरेज इंडियन बिल्ट फेस मेरा वो है। तो रियलिटी शो से निकले भी थे तो भी लोग हमको जल्दी पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि मेरा वैसा कुछ है नहीं, वो पहचानने वाला कोई फीचर नहीं है स्ट्राइकिंग, तो वो मेरे फेवर में काम करता था, क्योंकि फिर हमको ताने कम सुनने पड़ते थे कि अरे तुम तो रियलिटी शो जीत के या जो भी करके आई हो तो तुम ये काम क्यों कर रही हो, तो ऐसा भी सुनने मिलता था।
1: एक एनोनिमिटी मिली,
0: एक एनोनिमिटी मिली, और वो एक अज्ञातवास जो मेरे जीवन का बहुत सुंदर अज्ञातवास था, क्योंकि अब हम उस लेवल पे थे कि हम कुछ भी कर सकते थे, कोई नहीं पहचानता है हमको। वो इतना एम्पावरिंग होता है, क्योंकि जब आप जब जब जस्ट रियलिटी शो से निकले तो आपको सब जान रहे हैं, अगले एक दो साल तो डेफिनेटली आपको लोग जान रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप 5 स्टार्स में जा रहे हैं आ रहे हैं, आप रोज फ्लाइट ले रहे हैं, आपका जीवन अलग चल रहा है, और अचानक से करियर जो है वो धीरे धीरे अपना मोड़ लेने लगता है, और आप एक दिन डिसाइड करते हैं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। और जब आप FTI से निकलते हैं तो आपकी ट्रेनिंग ऐसी है कि आप यू आर रेडी टू बी अ स्पॉट बॉय टू अ डायरेक्टर, आप उस बीच में कुछ भी हो सकते हैं, आप
1: बहुत सही
0: खुल चुके हैं, आप बिल्कुल निर्लज्ज हो चुके हैं, आप हर काम करने को तैयार है, क्योंकि टारगेट ध्येय है कि आपकी फिल्म बननी चाहिए,
1: हाँ।
0: या जिसकी फिल्म बन रही है उसका पूरा सहयोग होना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: वो पैशनेट लोग ही कर सकते हैं,
1: टीम की तरह
0: अब काम अब अब जो इंडिविजुअल दीपाली इंडिविजुअलिस्टिक दीपाली थी, अब वो समाज के साथ जिसके कोई दोस्त नहीं होते थे अब उसके दोस्त बनने शुरू हुए, अब दीपाली एक अलग आयाम में घुस रही थी अपने, और यहाँ पे दोस्ती आई मेरी लाइफ में। इसके पहले तक हम बहुत अकेले थे, बहुत अकेले थे। तो जब हम मुंबई वापस आए तो क्योंकि बैचमेट्स और FTI का तो हम मशहूर हैं, बैचमेट्स और
1: अलुमनाई
0: हमारा काफी तगड़ा है,
1: वहाँ एक तरह का कनेक्शन जो है जोरदार होता
0: बहुत
1: है,
0: बहुत जोरदार होता है, और वो क्या है वो बिल्कुल इतना इतना गहरा है कि समय की सीमा उसमें मायने ही नहीं रखती। कम से कम समय में आप इतनी गहराई से, क्योंकि काम ही ऐसा है, आप एक काम ही ऐसा कर रहे हैं कि आप जुड़ेंगे ही उस लेवल पे। तो वहां से मेरी लाइफ में दोस्ती शुरू हुई, दोस्तों के साथ काम शुरू हुआ, कुछ ऐसे दोस्त बने जो मतलब मेरे जीवन से भी प्यारे हैं, मेरे जान से भी प्यारे हैं मेरे दोस्त, वो लोगों के साथ मुंबई में मेरा असिस्टेंट बनने का सपना और स्ट्रगल और जो भी रास्ता है वो शुरू हो गया था, और एक साल तक ये बड़ा अच्छा चला। इस बीच एक दिन कैफी आजमी साहब की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं हर साल, शबाना आजमी जी और बाबा आजमी जी, ही दे वर लुकिंग फॉर सिंगर्स जो गाना गा सके उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, और एक अच्छा मंच कई नए टैलेंट को भी जगह देने का, क्योंकि वो आंगन ऐसा है कि यू नो हर कोई वहां बैठना चाहता है, वो आप गए होंगे आई एम श्योर जानकी कुटीर में,
1: पृथ्वी हाउस में होता है,
0: पृथ्वी हाउस में, पर पृथ्वी हाउस के ये इधर जो जानकी कुटीर है उसका नाम, हाँ उस वो उन्हीं का आंगन है जहाँ कैफी साहब रहते थे, तो वहीं पे एक छोटा सा स्टेज लगा के, और
1: वहां करते हैं।
0: उनकी मंशा भी यही है कि नए टैलेंट को, क्योंकि वो इतना प्योरिटी से और इतनी शिद्दत से और इतने बड़े लेवल का कार्यक्रम है कि इतने बड़े बड़े समझदार गुणी लोग वहां बैठते हैं कि वहां कोई भी गाने को तैयार हो जाएगा, बट ये देखिए ये उनका बड़प्पन है कि उनको नए टैलेंट चाहिए, वो चाहते हैं कि वो भी अपना टैलेंट नए लोग भी दिखा सके। और मेरे एक दोस्त को, क्योंकि हम गाते थे तो उसको पता चला कि बाबा आजमी को असिस्ट करता था, तो उसने बोला चल तू भी चल, गाना चाहिए उनको, सिंगर्स चाहिए। तो हम बोले मेरा क्या काम है वहां पे, हम तो शोज वोज करते हैं, अब उनको अच्छे सिंगर चाहिए होंगे, नहीं नहीं तू चल। और हम पहुंचे और बाबा आजमी आए बाहर, एक तो वो दिखते भी कैफी साहब जैसे ही है तो काफी ऐसा फील हो रहा था, ओ माय गॉड यू नो बाबा आजमी। एंड उन्होंने बोला आप सुनाइए आप क्या सुना सकती हैं, तो हमने गाना गाया कैफी साहब का, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। बाबा आजमी डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने बोला आप करती क्या है, क्योंकि आप जिसके साथ आई है वो तो मेरा असिस्टेंट है, तो ये आपका दोस्त है, तो मतलब आप सिंगर तो नहीं है, तो आप करती क्या है। तो आई सेड के सर हम अभी डायरेक्शन पास आउट हैं FTI से और काम ढूंढ रहे हैं, तो आप अपना जीवन इसी में व्यर्थ कर देंगी, मतलब आप गाना क्यों नहीं गाती हैं। तो आई सेड सर वो एक डॉक्टर ने बोला था कि हम गाना नहीं गा सकते हैं जीवन भर, तो बोले वो पागल है, वो डॉक्टर पागल है जिसने ये बात आपको बोली है। अब हुआ ये कि वो इतने साल में ये दीपाली की आवाज हील कर चुकी थी, ये तो कॉमन सेंस की बात है जो दीपाली के पास नहीं था

0: क्योंकि आवाज तो पैदा हुई है जिसके साथ आप हाँ। वो आवाज तो वैसी रहेगी ना
1: हाँ।
0: गला खराब हो सकता है, आवाज नहीं जा सकती छोड़ के, आप पैदा हुए उसके साथ, उस मशीन के साथ। तो जब बाबा आजमी ने ये बात बोली ना, तो उनके एक अनजान इंसान, आप उनको पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन वो अगर आपके लिए इतनी शिद्दत से कुछ महसूस कर रहा है तो वो उनकी आंखों में दिखता है। तो बाबा आजमी की आंखों में दिखा कि उनको इस बात की छटपटाहट हो गई कि ये बच्ची अपना जीवन बाकी कामों में व्यर्थ कर क्यों रही है जब ये ऐसा गाती है। और ये बात मेरे साथ रह गई, और उन्होंने उस साल हमको वहां मौका भी दिया कैफी साहब के
1: महफिल
0: में ये गाना, उनका सबसे फेवरेट गाना है बाबा आजमी सर का, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं,
1: अनुपमा फिल्म का।
0: और वो उनको मेरी आवाज इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने बोला कि इस गाने के लिए भैया मार्केट में बहुत बवाल होता है कि हम गाएंगे तो हम गाएंगे, सिंगर्स लूटने के लिए दौड़ते हैं, बट आई वॉन्ट टू गिव दिस सॉन्ग टू यू। ये कॉन्फिडेंस जब बाबा आजमी सर ने मेरे अंदर दिखाया तो हमको लगा कि यार ये हम सच में कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं।
1: फिर से एक दो रहा गया
0: आगे
1: बढ़ने से पहले वही गाना सुनना चाहिए।

कितनी सुंदर पंक्तियों को चुना आपने गाने के लिए, बहुत शानदार गाना है। और ये इस गाने के सबसे अच्छे अंतरों में से एक है, पलकों की ठंडी सेज पर। क्या बात है, क्या बात है।

0: ये गाना कहता है ऐसी भी बातें होती हैं, और दीपाली की जिंदगी में ऐसी ही बातें हो रही थी। गाना वापस लौट गया था
1: बिल्कुल। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। इसका तीसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते बॉम्बे टॉकीज में। जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। सुपर है डुपर।

0: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। दिन के ठीक 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: इस छोटे से अंतराल के बाद आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
5: सीखा जा सकता और वहीं जो हमारे विद्यार्थी होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, वो सब वहीं जाकर संस्कारित होते हैं और समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सके, इस योग्य बनते हैं। और उसका पूरा दायित्व शिक्षक का होता है, क्योंकि बच्चे अपना ज्यादातर वक्त तो स्कूल में ही बिताते हैं और बड़ा एक्टिव वक्त बिताते हैं। जयंत जी,
6: जी
5: एक बात और मैं कहना चाह रही थी कि 5 सितंबर को हमने शिक्षक दिवस मनाया और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस भी है।
6: देखिए कितना अच्छा संयोग है।
5: जी हाँ, और विश्व साक्षरता दिवस आरंभ हुआ था 1967 में, तब से लेकर अब तक हम निरंतर इस दिन को मनाते आ रहे हैं। और आज भी कहते हुए कई बार अफसोस भी होता है कि हमारे देश का भी कुछ हिस्सा अभी तक साक्षर पूर्णतया हो नहीं पाया है, जिसके लिए निरंतर प्रयास जारी है।
6: अवश्य, और आज की तारीख में, आज के जमाने में जिस साक्षरता की बात की जाती है,

0: वो है डिजिटल लिटरेसी।
1: जी हाँ, अगर डिजिटली लिटरेट होंगे, यानी अगर आप कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स के जरिए डिजिटल दुनिया में कदम रखेंगे तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और कई बार तो घरों में हमने देखा है कि नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपने दादा दादी नाना नानी को डिजिटली साक्षर कर रहे हैं। तो इस चीज़ का अवश्य ख्याल रखा जाए कि न केवल साक्षरता बल्कि डिजिटली साक्षर होना भी आज के युग में तो बहुत आवश्यक हो गया है,
0: बेहद आवश्यक है। और मनीषा जी, श्रोताओं को इंतजार है कि हम क्या लेकर के आए हैं इस सुंदर संयोग पर उनके लिए।
1: जी हाँ, ये एक संयोग है। और मैं ये चाह रही थी कि हमने जब इतनी सारी बातें की साक्षरता पर और शिक्षकों पर, तो शिक्षकों के प्रति हमारा जो सम्मान है विविध भारती की ओर से, हम उनको जो सम्मान देना चाह रहे हैं वो होगा गीतों का एक छोटा सा पुष्प। क्योंकि कई फिल्मों में आपको याद होगा जैन
0: जी,
1: बहुत सुंदर कुछ गीत पिक्चराइज किए गए हैं कई अभिनेत्रियों पर, कई कलाकारों पर, जहाँ शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में सीधे सीधे बातचीत है और वो गीत बहुत मीठे हैं।
0: तो चलिए गीतों का ये गुलदस्ता नजर करते हैं अपने श्रोताओं को
1: और आइए याद करते हैं उन पुराने गीतों को जिनमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का प्यारा सा संबंध हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है।

0: सुंदर सा गुलदस्ता और फिल्में हमारे सामने आती हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता है कॉमेडियन का।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से हंसते खेलते हुए हाँ। कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं ये हास्य अभिनेता।
0: जी हाँ, और एक बात तो माननी पड़ेगी कि एक जमाने में हास्य अपने उच्चतम स्तर पर था। उस जमाने में जयंत जी जो फिल्में बना करती थी उसमें जो हास्य अभिनेता होता था वो बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता था, और उन पर कुछ डायलॉग्स तो ऐसे बने हैं जिन्होंने उन कलाकारों को अमर कर दिया। अब आप मेरा इशारा समझ रहे हैं मैं
1: बिल्कुल,
0: किस
1: बिल्कुल, और हम आज याद करने वाले हैं जाने माने अभिनेता मुकरी साहब को। और मुकरी साहब का जिक्र होते ही मनीषा जी बताइए कौन सा डायलॉग याद आता है।
0: अरे शराबी फिल्म का सदी के महानायक अमिताभ जी द्वारा कहा गया वो डायलॉग कौन भूल सकता है कि मुझे हो तो नथू लाल जैसी हो
1: वरना ना हो,
0: वरना ना हो। और देखिए हमारे चेहरों पर भी हंसी खिल गई
1: क्योंकि और अपने श्रोताओं को बता दें मनीषा जी उनका असली नाम था मोहम्मद उमर मुकरी
0: जी,
1: और उनका महाराष्ट्र का जो कोकण इलाका है वहाँ अलीबाग में 5 जनवरी 1922 को उनका जन्म हुआ था और 4 सितंबर है उनका स्मृति दिवस।
0: हम आज मुकरी जी को याद कर रहे हैं, और श्रोताओं मुकरी जी के बारे में कुछ और भी हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्हीं फिल्मों में जो पहला ब्रेक दिया था
1: जी।
0: वो ब्रेक दिया था देविका रानी जी ने, और उनके बारे में जो सिफारिश की थी वो थे उनके स्कूलमेट दिलीप कुमार साहब। उन्होंने देविका रानी जी से कहा था कि इन्हें मौका मिले, और उनकी पहली फिल्म आई थी प्रतिमा जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार जी के साथ अभिनय भी किया था।
1: जी बिल्कुल, बॉम्बे टॉकीज की ये फिल्म थी और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो 600 फिल्मों में हमने उन्हें देखा।
0: बताइए इतने बड़े कलाकार और तकरीबन 50 वर्ष तक का उनका जो फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूशन है उसे कौन भूल सकता है।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से नथुलाल याद रहते हैं वैसे एक और किरदार है, फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी
0: तैयब अली। ऐसे बहुत ही अमर किरदारों को उन्होंने पर्दे पर उतारा जयंत जी।
1: तो मुकरी साहब की कौन सी नायाब रिकॉर्डिंग हमारे श्रोताओं के लिए आप लेकर आई हैं मनीषा जी?
0: एक रिकॉर्डिंग है हमारे पास जयंत जी, और देखिए इस रिकॉर्डिंग में, बल्कि सुनिए इस रिकॉर्डिंग में मुकरी जी ने किस बेबाकी से और कितनी जिंदा दिली के साथ अपनी बात कही है कि सुनते सुनते आपको बहुत आनंद आएगा। तो पेश खिदमत है ये खास रिकॉर्डिंग मुकरी साहब की, आइए श्रोताओं सुनते हैं। ये हम आपके लिए खास तौर पर लाए हैं विविध भारती के संग्रहालय से चुनकर।
2: सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आप तो मेरी आवाज से पहचान गए होंगे कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मेरा नाम है मुकरी। आप तो समझ गए होंगे, कद का वगैरह तो आपने पर्दे पे देख लिया है। वैसे मेरा जो गानों का टेस्ट है वो एक अजीब किस्म का है। मैं गानों में शायरी और धुन को बहुत ही नज़ाकत और उसके अंदर सही अल्फाज वगैरह चाहते हैं। मैं ये नहीं चाहता वो जैसे आजकल गाने हैं, तूने देखा मैंने देखा, मैंने सुना तूने सुना, आप पीपल के झाड़ के नीचे प्यार करेंगे, वो ये चीज़ें मुझे साहब ने बिल्कुल पसंद नहीं आती। क्योंकि गाना हो तो ज़रा मज़े का, तबीयत खुश हो जाए, यानी एक मूड आ जाए, एक किसी चीज़ में खो जाए, ये वो गाने। जैसे मसलन एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन गाना सुनाने से पहले मैं उसका ज़रा आपको उसकी स्टोरी सुनाऊँ कि क्या हुआ। जब साहब मेरी शादी हुई, मतलब शादी हो रही थी, तो उसमें शादियों में जो रस्म और रिवाज होते हैं, तो हमने हमारी बीवी को कभी देखा ही नहीं। हमारे माँ बाप ने हमारी शादी, हमारे फिल्म लाइन में होते हुए भी मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसने अपनी बीवी को ही नहीं देखा और शादी कर दी। अब हमको ये फिक्र रही उसके पता नहीं कितने लंबे दांत होंगे, कितनी बड़ी नाक होगी, क्या होगा, चिचक के दाग होंगे, पता नहीं। इंसान अपने अपने ख्याल में कुछ ना कुछ सोचता रहता है, लेकिन जब हमारे सामने उस रस्म में आईना लाके रखा तो हमने देखा वाह वाह हमारी बीवी गोरी चिट्टी है, मुझे बड़ी पसंद आई। लेकिन जब उसने मेरा मुँह देखा तो उसने ये गाना शुरू किया।
3: मैंने

महमूद साहब ने एक पिक्चर का प्रोग्राम बनाया। महमूद साहब मुझे बड़ा तकदीर वाला समझते हैं। वैसे वाकई में मेरी कुछ कुदरत की बड़ी मुझ पर मेहरबानी है और मैं बड़ा खुदा से और भगवान से और जो ईश्वर से जिससे आपका आप हर एक के अपने अपने जो है उससे मैं बहुत डरता हूँ। और न किसी का दिल दुखाना, न किसी का गिबत करना, न किसी की बुराई करना, इन चीज़ों से अपने को कोई लेना देना नहीं। काम अपने को मिलता है, रोटी अपने को मिलती है, रहने को अच्छी तरह से मिलता है, तो फिर इन तमाम चीज़ों से मतलब क्या है। और सबसे बड़ी बात कि अपने को किसी किस्म की लालच भी नहीं है। तो महमूद साहब जब प्रोग्राम वो कहते हैं यार तू तो बड़ा लक्की है, मैं हर मेरी पिक्चर तेरी वजह से हिट हो जाती है क्योंकि मैंने उसके पड़ोसन में काम किया, कुंवारा बाप में काम किया। तो जब ये महमूद साहब पिक्चर बना रहे थे जनता हवलदार, तो बस बार बार मेरे आ रहे रोज खाने पीने खाने कहने लगे कि मैं और तू दोनों इस पिक्चर में क्या तेरा रोल होगा और ये होगा वो होगा। तो जो राजेश खन्ना साहब ने जो रोल किया था वो तो बोले मैं कर रहा हूँ और मेरा रोल तू कर रहा है। बाद में गोलियों के चक्कर में उन्होंने उनका रोल जो था वो राजेश खन्ना को दिया और मेरा रोल जो रोल था वो खुद ने कर दिया। उसके बाद पिक्चर हो गई फ्लॉप, पिक्चर की डिलीवरी भी नहीं गई। तो जिस दिन आए फिर मेरे यहाँ, तो मेरे उनका यहाँ फैमिली रिलेशन है, तो मेरी बीवी ने खाना भी ना लगा। मैंने कहा महमूद तू बड़ा उदास मालूम हो रहा है, तो कहने लगा यार वो मैं एक गाना लगाता हूँ, वो मुझसे का भूल हुई जिसकी सजा मुझको मिली। मैंने बोला वो सजा ये मिली कि तूने मेरे को नहीं लिया ना पिक्चर में, इसलिए वो तेरे को सजा मिली कि डिलीवरी नहीं गई।

जब मैंने हीरा के अंदर सुल्तान अहमद साहब की पिक्चर में काम किया हीरा में, तो कल्याण जी आनंद जी साहब ने कहा कि भाई जो ये गाना मुकरी का है ये किसी गाने वाले से नहीं, हम मुकरी से गवाएंगे। सुल्तान अहमद कहने लगे साहब मुकरी कैसे गा सकेगा, वो तो गाना गाता ही नहीं। कहने लगा नहीं हाँ हम उससे गवा लेंगे। तो किशोर कुमार साहब ने जो मेरे साथ जो सुनील दत्त का प्लेबैक दे रहे थे वो

गाना किशोर साहब ने मेरे साथ जरा मेहनत की उस गाने में और मैंने वो खुद गाना गाया। वैसे पहले बॉम्बे टॉकीज में मैं पहला, मुझे जब बॉम्बे टॉकीज में दिलीप कुमार साहब के साथ काम मिला प्रतिमा में, जो मेरा रोल था जिससे मैं फिल्म आर्टिस्ट बन गया, तो एक गाना था ठुमक ठुमक चुम छनना मेरे अंगना आओ जी अजी आओ जी अजी आओ जी आओ जी ठुमक ठुम। ये गाना साहब महमूद के वालिद मुमताज अली साहब ने मुझे बराबर इसकी रिहर्सल वगैरह करवा के मुझे तैयार किया और ये मैंने खुद अपने से गाया। वैसे मैं कोई गाना बिना गाने तो मुझे आता नहीं है, ना मुझे ताल सुर का पता रहता है, लेकिन ये गाना गाया था और मैंने फिर ये गाना गाया जो हीरा के अंदर मैंने गाया, वो सुन लीजिए। मैंने मेरी अपनी आवाज है।

0: जयंत जी, मुकरी जी की आवाज सुनकर उनकी पूरी शख्सियत सामने आ गई और बहुत आनंद आया उनकी इस रिकॉर्डिंग को सुनकर। बहुत बेबाक और बहुत हंसते हुए उन्होंने अपनी बात कही थी, बहुत खुश मिजाज व्यक्ति।
1: मनीषा जी, हास्य अभिनेता जिस तरह से बहुत जरूरी हिस्सा होता है फिल्मों का, वैसे ही फिल्मों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है फिल्म का संगीत।
0: वो तो मैं कहती हूँ फिल्मों की आत्मा है।
1: बिल्कुल, और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जहाँ बात हो रही है, आज के दिन याद आ रहे हैं विशेष रूप से संगीतकार आदेश श्रीवास्तव।
0: बहुत कम उम्र में एक बहुत महत्वपूर्ण संगीतकार जो हमारे दौर के थे, आदेश श्रीवास्तव जी, उन्हें हमने खो दिया। ये भी एक बहुत दुखद पहलू रहा कि 4 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है और 5 सितंबर उनका स्मृति दिवस। बहुत कम उम्र में, मैंने कहा ना, जैसे 51 वर्ष की उम्र में वो हमारे बीच से चले गए। कुछ एक बार विविध भारती को ये मौका मिला था इस युवा संगीतकार से मिलने का, और आदेश श्रीवास्तव साहब एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए थे जिनका संगीत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा।
1: जी, जानी मानी गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की छोटी बहन विजेता पंडित से उनका विवाह हुआ था।
0: जी हाँ, और सुलक्षणा पंडित जी और विजेता पंडित जी पंडित प्रताप नारायण की पुत्रियां हैं, तो पूरा जो परिवार है उनका वो संगीत में रचा बसा है। इसके अलावा उनके जो भाई हैं सुलक्षणा पंडित जी के, जतिन ललित, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण संगीतकार जोड़ी के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाद में जतिन पंडित जी ने भी बहुत सी फिल्मों में संगीत दिया। आदेश श्रीवास्तव जी उसी परिवार से थे। जन्म उनका हुआ था मध्य प्रदेश के जबलपुर में।
1: जी, और उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म का प्रोडक्शन भी किया था, सना नाम की ये शॉर्ट फिल्म थी। और आपको बता दें कि सबसे पहली बार उन्हें जो ब्रेक मिला था फिल्म संगीत के लिए, वो थी फिल्म कन्यादान 1993 में, और उसमें लता जी और उदित नारायण का गाया हुआ एक गीत बड़ा मशहूर हुआ था, आगे आओ प्यार करें। इस फिल्म से सिलसिला शुरू हुआ और फिर बहुत सी फिल्में हमें मालूम है, चलते चलते, बागवान, कभी खुशी कभी गम, आंखें, रहना है तेरे दिल में भी एक गीत उनका था।
0: फिल्मों में उनके गीत बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और आज हम श्रोताओं उनकी वो रिकॉर्डिंग आपके लिए लेकर आए हैं जो हमने बहुत पहले रिकॉर्ड की थी। विविध भारती तशरीफ लाए थे आदेश जी और उनसे बातचीत की थी कमल शर्मा जी ने। उनकी स्मृतियां हमारे पास हैं और वो हमारी धरोहर हैं।
1: तो चलिए सुनते हैं ये नायाब रिकॉर्डिंग।
2: फिल्म लाइन में आने से पहले मैं बता दूं श्रोताओं को कि मैं जबलपुर का रहने वाला हूं और जबलपुर में मैं मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता था। तो हमारे एमपी के पूरे स्कूलों का कॉम्पिटिशन था म्यूजिक, तो उसमें मैं एक ही गाने में ड्रम्स बजा रहा था और एक कोंगा होता है वो बजा रहा था, और उसमें जज आए थे श्री सपन जगमोहन जी। तो उन्होंने मुझको वहाँ पे देखा एंड देखा कि एक ही गाने में एक दो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कभी टर्न वो चेयर होती थी रिवॉल्विंग चेयर, उसमें पलट के ड्रम्स बजा रहा हूँ। फिर टीचर बेचारे मेरे स्टिक लिए खड़े रहते थे, वो स्टिक पकड़ाते फिर मैं ऐसा सब चेंज होता था। तो मेरे को जगमोहन अंकल ने बुलाया, बोला कि आर यू प्रोफेशनल? आई सेड नो, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं तो स्कूल का स्टूडेंट हूँ, बस स्कूल की तरफ से आया हुआ।
3: क्या उम्र रही होगी?
2: आई वॉज आई थिंक 13 साल का हुआ मैं। तो बाद में जब

0: सपन अंकल से भी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला तुम बॉम्बे आना चाहोगे, तो मैं कहा ऐसा सब बोलते हैं बट कोई बुलाता नहीं है। बोले नहीं, एक शर्त पे, तुम जब फर्स्ट क्लास फर्स्ट आओगे उसके बाद तुम बॉम्बे में आ जाना, मैं तुमको रखूँगा अपने साथ। तो अब उन्होंने एक जो थी एक लालच तो दे दी थी बॉम्बे की, और मुझको अपने सपने आने लगे बॉम्बे के कम उम्र में ही। तो मुंबई के मुझको समय सपने आने लगे और मैं भी सोचने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या वो वाकई में मुझको यहाँ बुलाएंगे। और मैं मेहनत पढ़ाई में मैंने चालू कर दी, और वो दिन आ गया जब मैंने 11th का एग्ज़ाम दिया एंड तो मैं सीधा बॉम्बे आया। वाकई मैं रिजल्ट के लिए वेट नहीं किया, मैंने एग्ज़ाम्स दिए और आ गए। मेरे को जब आया तो मैं यहाँ अंकल के पास आया तो बोले अरे तुम तो सचमुच में आ गए। तो मैं कहा आपने बोला था इसलिए आ गया मैं।
1: रिजल्ट के बारे में नहीं पूछा आपसे?
0: पूछा उन्होंने कि रिजल्ट, मैं कहा रिजल्ट तो अभी नहीं, मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो 2 महीने अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर चला जाऊँगा। तो बोले अच्छा। फिर उन्होंने काफ़ी समझाया और इधर के हिसाब से ट्रेनिंग, फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह चालू हुई। बहुत स्ट्रगल किया मैंने, इतनी स्ट्रगल की है इस लाइन में। जो आज मेरे सीनियर म्यूजिशियन है, जो आज मेरे साथ बजाते हैं एज ए म्यूजिशियन, वो हमेशा उनकी हर किसी की मैंने दुआएं लेके और आशीर्वाद लेके इस लाइन में कदम रखा।
1: पहली फिल्म कौन सी मिली आपको?
0: सबसे पहली फिल्म मैंने की एक कन्यादान, जो सुधाकर बोकाडे जी ने फर्स्ट ब्रेक दिया मुझको। और जैसा कि हर इंटरव्यू में मैं बोलता हूँ, एक आदमी का नाम इसमें हमेशा लेता हूँ जिसने मेरे को ये फिल्म दिलाई थी, वो थे जैकी श्रॉफ। फिर सुधाकर बोकाडे जी आए एंड सिटिंग की, और एक ही दिन की सिटिंग में उन्होंने कुछ 32 सॉन्ग्स निकाले मेरे से, उसमें से फिर हमने सेलेक्ट किए। तब जाकर उनकी लगातार मैं 3 फिल्म उनकी कर चुका हूँ, अभी चौथी फिर उनकी लॉन्च होने वाली। सेकंड फिल्म थी फिल्म आओ प्यार करें, रिलीज़ पहले वो हो गई तो उसका गाना था बहुत पॉपुलर हुआ था, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, ये काफ़ी हिट हुआ उस। बट एक और गाना था चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर, और क्योंकि एक गाना और था जिसमें पूरी पोइट्री थी, क्यों फूल खिलते हैं, स्पेशली वो गाना इसलिए अच्छा था लगा मुझको क्योंकि बहुत अच्छा लिखा था श्याम राज जी ने और गाया था इसको कुमार शानू और विजेता ने।
1: आपकी बहुत सारे जो गीत उनमें विजेता जी का बहुत नाम आया, और आपकी वो जीवन संगिनी है, और ये माना जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का भी हाथ होता है। ऐसी जीवन संगिनी पा करके आपको अपने जीवन में क्या बदलाव, रचनात्मक बदलाव महसूस हुआ?
0: विजेता का जैसे आपको बताऊं मैं कि विजेता से शादी करने के बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, मेरा करियर चेंज हो गया। और कई लोग उससे इस मामले में चिढ़ते भी हैं कि इसने जो है इसको चेंज कर दिया, अच्छा था म्यूजिशियन था हमारे साथ काम करता था, अब म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। तो म्यूजिक डायरेक्टर बनाने में उसका हाथ नहीं है, लेकिन मेरे को चार्जअप करने के लिए कि तुम जिंदगी भर म्यूजिशियन बन के क्या करोगे। और जब अच्छा मेरा क्या था कि मैं गाने आपको बताऊँ, मैं एज ऑफ व्हेन आई वाज जस्ट 10 ईयर्स ओल्ड और मैंने 20 सूत्री कार्यक्रम चले थे तब गाना बनाया था मैंने इंदिरा जी के लिए जबलपुर में। तो मेरे को एक था कंपोजिशन का एक शुरू से शौक था। फिर बॉम्बे आके मैं 79-80 से मैं गाने बना के रखता जा रहा था, मेरे पास स्टॉक में कम से कम 2000 गाने थे उस समय,
1: अपना एक बैंक
0: कि बना के रखता। मेरी मम्मी पूछती थी तू बुला किसी को सुनाता तो है नहीं, तू बनाता ही रहता है ऐसा क्यों। मैं कहा अभी नहीं, जब होगा तब सुनाऊंगा मैं। तो ये ऐसा होता था शादी के पहले, माँ मेरे को काफी वो करती थी,
1: कंट्रोल करती थी।
0: शादी के बाद विजेता आ गए तो विजेता ने बोला कि ना, तो फिर मैंने फिर डिसाइड किया कि क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा फिर मैं एज ए म्यूजिशियन कहीं पे भी काम नहीं करूंगा। बड़े भाई हैं उनने भी काफी मुझको इसमें सपोर्ट किया। मेरे स्ट्रगल पीरियड में जब मैं बॉम्बे आया तो वो मेरे साथ थे यहाँ पे, और आज भी उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। बट वो जबलपुर में है, मैं बॉम्बे में हूँ। आज भी मैं जैसे बनारस अभी गया था मैं बीच में, तो बनारस में इतना प्यार, वहाँ पे एक इंटीरियर में इतना प्यार मिलता है जब उनको पता चलता है तो कि फिल्म लाइन से जुड़े हैं, गाना सुनते हैं लोग, तो इतना वो लोग इज्जत और इतना मान सम्मान देते हैं और उससे ज्यादा प्यार देते हैं।
1: आदेश जी, आपकी यादों में कहीं बचपन के किसी उम्र के हिस्से में रेडियो किसी रूप में जुड़ा रहा?
0: मैं जबलपुर में था तो एक शाम को 6 बजे प्रोग्राम होता था युववाणी का। वो युववाणी में होता था कि MP के सब कलाकारों को मौका मिलता था, फिर उसमें मैंने भी गाया था, लेकिन जब तक गाया नहीं था तो मैं शाम को 6 बजे वो बैंड वाला रेडियो होता था, वो धागा रखता था उसमें से। और मेरे मोहल्ले में भाई के बगीचे में सबसे बड़ा रेडियो मेरे घर में ही था, सब आ जाते थे सुनने के लिए। फिर मैं उसको लाउड करके तमाम उसमें एम्पलीफायर वगैरह लगा के मैंने और स्पीकर एक्स्ट्रा लगा के लगाता था। इंटीरियर में आज भी हमारे जो देहाती खुशबू जिसको बोलते हैं, जो गाँव में, आज भी रेडियो को ही ज़्यादा महत्व देते हैं और आज भी विविध भारती ही सुनते हैं, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं अपने चाहने वालों से बात करूं और उसका जरिया है विविध भारती का ये प्रोग्राम।
1: मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अपने बचपन के और कॉलेज के

0: माने में वो कौन से गीत खास उससे आप गुनगुनाया करते थे?
1: मेरा एक फेवरेट गाना था, मैं बहुत गाता था वो, कांटों से खींच के आंचल।
0: अच्छा, क्या वजह थी इसकी?
1: ये उसका अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगता था मुझको, और फिर उसके बाद मेरे को मदन मोहन जी के गाने बहुत अच्छे लगते थे। मुझको सबसे ज्यादा पसंद थे किशोर दा।
0: अच्छा,
1: किशोर दा के गाने बहुत गाता था मैं, स्टेज पे भी गाता था और फिर रफी साहब के गाता था। किशोर दा के मैं एक्सप्रेशन का बहुत, वो जो एक उनमें एक कला थी, जिस आर्टिस्ट के लिए गाते थे ऐसा लगता था वो वही आर्टिस्ट गा रहा है।
0: मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि संगीत के सुरों के लिए वो जो एक लगाव होता है वो आपके अंदर पहले से था, और घर में ऐसा कोई माहौल था जिससे आपको और ज्यादा प्रेरणा मिली?
1: ये क्या था कि बचपन से ही घर में ऐसा था कि म्यूजिकल माहौल था मेरे, बट शौकिया तौर पे था। और उसके बाद फिर वहाँ जब जबलपुर से यहाँ आया तो यहाँ पे मैंने जो गुणी जनों के साथ जो काम करने का मुझको मौका मिला, मैं सोचता हूँ मैं बहुत लकी था। बिगनी में साल दो साल भर पंचमदा के साथ भी था मैं, और मैंने काम किया शंकर जी के साथ भी एज ए म्यूजिशियन, ओपन डियर साहब के साथ, सलील दा के साथ भी मैंने मौका मिला मुझको। और उसके बाद फिर मैंने 1982 में ज्वाइन किया था अपना श्री लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को, जो कि लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी का जो काम करने का जो एक तरीका, एक जो ढंग, वो एक ऐसा लगता था कि ये स्कूल है, और वहाँ इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली। और मैं सोचता हूँ कि उसी के कारण आज वही प्लस पॉइंट है मेरे लिए। और आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जो जितनी लंबी इनिंग उन लोग ने खेली है और आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि आज के जितने भी नए संगीतकार हैं वो कोई भी सोच भी नहीं सकता उनके बारे में। जब मैंने ज्वाइन किया था उनको तो उत्सव की रिकॉर्डिंग बेला महका रे महका,
0: बहुत खूबसूरत गीत,
1: फिर बैकग्राउंड म्यूजिक था उत्सव का, उसमें मैं जब बजा रहा था तो उसमें लयकारी थी पूरी, और जो प्यारे जी ने किया था अरेंजमेंट उसमें 9 मात्रा 6 मात्रा ये सब कुछ आवर्तनों के बाद आके एक साथ सम आता था, और मुझको जो सौंपा गया था वो था सम देना। तो अगर मैं किसी कोई आड़े को सुन रहा हूँ, अगर कान मैंने ध्यान दिया तो मेरा सम गया। और फिर पंचमदा की जो मैं मज़ा आया, उनके एक रिदम का एक अलग था क्लियरिटी, उनकी हर रिकॉर्डिंग में क्लीननेस बहुत, कि अगर एक खंजरी टैम्बरिन बज रही है तो एक उसका कुछ अगर बीट रखी उन्होंने तो उसकी एक अहमियत है उस बीट की, है दिखने में छोटा इंस्ट्रूमेंट है बट वो आपको रजिस्टर हो जाएगा, कभी बोल ना बोल के साथ वो आएगा ही आएगा। जैसे ट्रायंगल एक था, ट्रायंगल का यूज़ बहुत किया पंचमदा ने अपना हम किसी से कम नहीं के गानों में भी किया था, और पहाड़ी तो खैर बहुत उन्होंने यूज़ किया पहाड़ी राग में।
0: आपके म्यूजिक की जो विशेषता क्या है जिसमें आदेश श्रीवास्तव एक मौलिक संगीतकार के रूप में नजर आता है?
1: देखिए मेरा क्या है कि मैं बहुत ओरिजिनल आदमी हूँ, मैं आर्टिफिशियल चीज़ों से बहुत चिढ़ता हूँ मैं, तो वही चीज़ मैंने अपनाई है अपने म्यूजिक में भी। तो मेरा ये रहता है कि मैं हमेशा अपना अलग गाना छाप छोड़ूँ। लोगों ने खूब आइटम दिए, लोगों ने डबल मीनिंग्स गाने दिए, बट मैंने कहा कि नहीं, उस दरमियान जो था मैंने कहा नहीं, मेरे को मेलोडी पकड़नी मोरा।

0: श्रोताओ, मशहूर संगीतकार आदेश श्रीवास्तव जी की ये रिकॉर्डिंग हमने सुनी। आपसे बातचीत की थी कमल शर्मा जी ने। ये रिकॉर्डिंग जो थी ये हमारे संग्रहालय से हम ढूंढ कर लाए थे और आदेश जी को याद कर रहे थे। हमने आज आपको इस कार्यक्रम का संपादित अंश सुनवाया। कभी मौका मिला तो आपको इस कार्यक्रम को पूरा भी सुनवाएंगे। आज की विविधा के अब हम अंतिम सेगमेंट पे आ गए हैं जहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे पास है।
1: जी मनीषा जी, हमने एक संगीतकार को याद किया और एक और संगीतकार को याद करेंगे जो अपने आप में बहुत महान संगीतज्ञ थे, डॉक्टर भूपेन हजारिका।

0: इस अमर गीत के गायक
1: जी
0: असम के डॉक्टर भूपेन हजारिका, बल्कि मैं कहूँगी असम ही क्यों, पूरे भारत वर्ष के हमारे डॉक्टर भूपेन हजारिका, पूर्वोत्तर के संगीत को पूरे भारत वर्ष में प्रतिष्ठित करने और लोकप्रिय करने का महत्वपूर्ण दायित्व डॉक्टर भूपेन हजारिका ने संभाला था।
1: जी, इस महान कलाकार का जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ था असम के सदियां ग्राम में।
0: हाँ।
1: और हम उन्हें इसी उपलक्ष में आज याद कर रहे हैं। मूलतः इन्होंने असमी भाषा में बहुत से गीत तैयार किए और ये बाद में अनुवादित हुए बांग्ला और हिंदी में।
0: वैसे कई भाषाओं में उनका रचना संसार अनुवादित हुआ, लेकिन बांग्ला में बहुत अधिक पाया जाता है और बांग्ला के बहुत अच्छे जानकार थे डॉक्टर भूपेन हजारिका।
1: और इनके गीतों में विश्व बंधुत्व और एकात्मिकता की बात हमेशा ये करते रहे।
0: जी हाँ, संगीत तो वैसे सार्वभौमिक सार्वकालिक होता है और जब ऐसे सुदूर पूर्वोत्तर के अंचल से आई हुई खुशबू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में महकने लगी, तब हमारा हिंदी का जो सिने संसार है वो और अधिक समृद्ध हुआ। डॉक्टर भूपेन हजारिका की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसे हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। वैसे इस रिकॉर्डिंग की एक खासियत है, इसमें भूपेन जी ने बहुत सारी बातें की, लेकिन हम उसका चूंकि कुछ अंश अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। उन्होंने उसमें संगीत के, खासतौर पर लोक संगीत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं और ये जो रिकॉर्डिंग है इसके लिए हम हमेशा याद करते हैं छाया गांगुली जी को, जिन्होंने डॉक्टर भूपेन हजारिका जी की ये इम्पोर्टेंट रिकॉर्डिंग हमें दी है, विविध भारती के लिए की है, तो उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। और आइए सुनते हैं इस अमर रिकॉर्डिंग को, ये हमारे पास एक बहुत बड़ी धरोहर है। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी से बातचीत की है राम सिंह पवार ने।
2: भूपेन जी, अपने उभरते बाल्यकाल के बारे में कुछ कहेंगे।
3: मैं एक साधारण सांस्कृतिक मजदूर हूँ और

0: हमारा सदिया गांव जो है उत्तर पूर्व भारत सीमांत में है
1: जी।
0: अभी अरुणाचल और आसाम के बॉर्डर में है
1: जी।
0: तो वहाँ यहाँ नदी, वहाँ पहाड़, सब के बीच हम कूद के खेल के बड़े हुए थे। हमारे माता जी बहुत अच्छा गाते थे, वो बंगाली रविंद्र संगीत गाती थी
1: जी
0: माँ, और पिताजी वैष्णव संगीत गाते थे, स्कूल टीचर थे
1: जी।
0: पिताजी स्कूल टीचर थे
1: जी।
0: तो वातावरण संगीत का था घर में, तो इसलिए यहाँ पारिपार्शिक जितना छंद है, जितना सुर है, वो तो आया उसी के,
1: ये तो विरासत में
0: जी। हाँ, अभी भी याद है माँ गाती थी लले बाई, हमारे मोएना खुबोई

0: भूपेन जी, स्वतंत्रता के पहले कुछ अपने जीवन की अनुभूतियाँ।
1: गांधी जी हमारे आसाम में कभी कभी आते थे, जब तब मेरे पिताजी का नाम है नीलकंठ हजारिका, तो गांधी जी आके कहते कि वो हजारिका का दो बच्चा है, है भूपेन और बहन का नाम था सुदक्षिणा, ये दोनों का भजन सुनना चाहते हैं। तो पहले हमें आशीर्वाद मिला था महात्मा गांधी दोनों, वो क्या गाए थे, वो भी एक ब्रजावली भाषा में, असम के पुराना असमिया में थे। हे जय रो घूरो

0: आजादी से पहले स्वतंत्रता के लिए चहुमुखी प्रयास किए जा रहे थे। गीत, संगीत, अभिनय, फिल्म और रंगमंच ने भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। और आप भी उस समय इप्टा इंडियन पीपल्स थिएटर ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो उस समय के कुछ संस्मरण और उस दिशा में आपके प्रयास।
1: अमेरिका में हम जब डॉक्टरेट कर रहे थे
0: जी,
1: तब सौभाग्य हुआ था पॉल रॉबसन से मिलने का। उसके बाद उनके पीपल सॉन्ग जो थे सारा दुनिया, जैसे ओल्ड मैन रिवर, यू डोंट से नथिंग, यू जस्ट कीप रोलिंग अलोंग, ये सब जब सुना वहाँ, सारे चार साल के बाद जब ब्रह्मपुत्र के किनारे फिर चले आए, तब इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन बहुत बड़ा काम कर रहे थे, यूनिफिकेशन ऑफ कल्चर। उसमें कैफी आजमी साहब थे, सलील चौधरी थे गाने में, हम लोग क्रिएट कर रहे थे, भूपेन हजारिका आसाम में, सुरेंद्र कौर पंजाब में, जसवंत ठाकुर बड़ौदा में, इसके बाद थिएटर में शंभू मित्र, उत्पल दत्त, बलराज सहनी यहाँ बॉम्बे में। तो उसमें हम लोग एक नया कंटेंट देना चाहते थे, और लोक संगीत वगैरह को फिर उद्धार करके, पुनरुद्धार करके उसको ठीक से फिर नया क्रिएशन में लोक संगीत के ऊपर रचनाएं करके हम लोग स्टेज, फिल्म, माइक्रोफोन, मोशन पिक्चर, स्टेज,
0: तो आजादी के आंदोलन में सब के द्वारा आपने
1: हाँ
0: उसमें
1: हाँ वो तो स्वाधीनता के बाद इप्टा ज्यादा ये हुआ था।
0: हाँ जी।
1: और हम आके ज्वाइन किए थे अमेरिका से लौट के आए थे 52 साल में, आफ्टर माय पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ आके जब गाना लिखना शुरू किया, चाय बगान है हमारा असम में, हाईएस्ट बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द होल वर्ल्ड इज असम, तो वहाँ उन लोगों के बात कह के टू लिप्स एंड ए बड, आदमी आज टू लिप्स और एक बड हो गया, और कौन इनको डिस्ट्रॉय करने आए हैं, ऐसा एक रिवोल्यूशनरी नहीं है लेकिन सोशल कंटेंट स्ट्रांग था। तो उसी वो एक एटी कोली दुटी पात रतनपुर बागीसात लह पहिया हाते रे कोने नो सिंगीले ओ कोने नो सिंगीले, इसे को हमारा गुलजार भाई,
0: अच्छा
1: मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हमें समझते भी है
0: जी, हाँ।
1: तो हिंदी में रूपांतर करके ये प्रचार कर रहे हैं अभी भी, एक कली दो पत्तियां, और गुलजार भाई खुद प्रेजेंट किए हैं और कमेंट्री दे के।
2: एक तो ये कि भूपेन दा के गीतों में वहाँ के आवाम की तस्वीर नजर आती है, वो तस्वीर मजमूई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी, एक पूरा लैंडस्केप है, और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहीगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं।

0: भूपेन जी, विद्या अध्ययन के दौरान और वैसे भी आप तो सारी दुनिया घूमे हैं, तो विश्व एकात्मता अथवा यानी विश्व बंधुत्व के बारे में भी आपने निश्चय ही कुछ सोचा और लिखा होगा।
1: जी, हम जो जब दुनिया देखे थे तो ऐसे देखे थे कि ड्रम मुंबसा से लेकर बेल्जियम कांगो तक
0: जी,
1: अफ्रीकन लोग कैसे ड्रम को यूज करते हैं, ये अध्ययन करने के लिए भी हम गए थे। इसलिए सारा दुनिया घूम के जब देखा कि ऐसे जैसे मिसिसिपी में सुना, डोंट क्राई माय मेलांकोली बेब, डोंट क्राई, मत रोना मेरा बेटा मत रोना। और इसके बाद ब्रह्मपुत्र का में आके सुना, ओ बिहुरेनो बिरीना, ओ आयता बिहुरेनो बिरीना पार। सो आई वांटेड टू बी ऑलवेज एन इटर्नल ट्रैवलर, तो इसलिए एक गाना लिखा था, आमी एक जाजाबर, आमी एक जाजाबर, पृथ्वी आमाके आपन करेछे, भूलेछि निजेर घर, घर ही भूल गए, सारा दुनिया हमारा घर हो गया। तो गुलजार जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको रूपांतर किए थे, याजाबर ट्रांसलेशन किए हैं, आवारा
0: जी,
1: हाँ आवारा।

0: संगीत का विस्तार अपार होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। महान संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका को ये हमारी आदरांजलि थी। आज हमने उन्हें याद किया विविधा के इस अंक में, और अब कुछ कहने को बाकी नहीं रहा
1: जी, बिल्कुल। और संगीत की इन बातों में, इन्हीं यादों में डूबते हुए, लबरेज रहते हुए हम अपने श्रोताओं से आज विदा ले रहे हैं।
0: जी हाँ, अब दीजिए इस अंक को समेटने की इजाजत। आप सभी से अनुमति लेती हूँ मैं, मनीषा जैन
1: और जयंत पात्रीकर।
0: हम दोनों ही

0: नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है, दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी
4: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। दिन के ठीक 12 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: दुनिया को क्यों लीड न करे।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
2: दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे गृह मंत्रालय की बैठक का नेतृत्व करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या

0: और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा भी लिया जा रहा है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा हुई है। मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। आरोपियों के पास अवैध हथियार होने की भी बात सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए कार्य करना है। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। विश्व की 5वें नंबर की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरियन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाए थे, जवाब में भारतीय टीम ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम।
2: वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है राकेश रोशन के सदाबहार गीतों की माला से। आज राकेश रोशन का जन्मदिन है, उनको विविध भारती परिवार की ओर से, आपकी तरफ से, हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर, किशोर कुमार, बिंदिया गोस्वामी और राकेश रोशन की आवाजों में। गीतकार है गुलजार, धुन है राजेश रोशन की, फिल्म का नाम है खट्टा मीठा।
3: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे,

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत रचना इंदिवर की, संगीत रचना राजेश रोशन की, फिल्म का नाम है काम चोर।

0: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे आशा भोसले की आवाज में। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है खून भरी मांग।
1: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। दिन के ठीक 12:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
1: इस संदेश के बाद आइए सुनते हैं विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज को। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं राजेश रोशन। फिल्म का नाम है खेल।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत सुनेंगे हम नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है किंग अंकल।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीत रचना राजेंद्र वर्मा की, संगीतकार है विजय बटालवीकर, फिल्म का नाम है बहू की आवाज।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता,
1: मार उड़ा दी,
0: एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है ढोंगी।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में। गीत के बोल हैं इंदीवर के, तर्ज है राजेश रोशन की, फिल्म का नाम है खुदगर्ज़।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पार्टियां अपने अपने स्टार प्रचारकों के माध्यम से अपने घोषणा पत्र और विकास के दावों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अजमेर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने मेवाड़ा स्टेट में कार्यकर्ताओं से चुनाव की रणनीति पर बातचीत भी की। मुख्यमंत्री का आज ही बीकानेर और जोधपुर में भी रोड शो का कार्यक्रम है, वे वहां जनसभा भी करेंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आम सभा को संबोधित कर वोट डालने की अपील की। इस बीच मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। भरतपुर में श्रम विभाग की ओर से विभिन्न संस्थानों और संगठनों के उद्योगपतियों तथा श्रमिकों के साथ मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। संयुक्त श्रम आयुक्त हसीना बानो ने बताया कि 9 और 11 सितंबर को होने वाले चुनाव के मद्देनजर अवकाश रहेगा और इस दिन किसी भी कर्मचारी की मजदूरी में कटौती नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा वित्त और कानून परामर्श से जुड़ी वैश्विक स्तर की संस्थाओं के निर्माण करने की अपील की है। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी देश की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो भारत की आर्थिक क्षमता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की बढ़ोतरी हुई। उन्होंने ये भी बताया कि घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इनमें पटना, कोलकाता, छत्तीसगढ़, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस संबंध में कल नियुक्ति वारंट जारी किए। इसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति अधिसूचना जारी की। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में कल दिन भर बारिश का दौर चला। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 10.4 सेंटीमीटर पानी सवाई माधोपुर के खंडार में बरसा। करौली, भरतपुर और अलवर के कई क्षेत्रों में करीब 3 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई। धौलपुर में आज भी रिमझिम बारिश हो रही है। जिला कलेक्टर ने कल भारी बरसात को देखते हुए एडवाइजरी जारी की थी। यहां निचले इलाकों में पानी भर जाने से आवागमन

0: बाधित हुआ है। वहीं चंबल नदी में जलस्तर 8 मीटर तक बढ़ गया है। कई बांधों के गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। भरतपुर के बंद बारेठा बांध के 2, धौलपुर के पार्वती बांध के 2, झालावाड़ के कालीसिंध बांध के 3 और कोटा के नवनेरा बैराज के 7 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। वहीं धौलपुर का रामसागर बांध और सवाई माधोपुर का मानसरोवर बांध भी पानी से लबालब होकर छलक गया। मौसम विभाग ने आज भी भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं कल से राज्य के अधिकांश भागों में बरसात की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। हालांकि भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। स्वच्छता ही सेवा अभियान से देश भर में साफ सफाई के प्रति लोगों में अभूतपूर्व जागरूकता आई है। इस साल 17 सितंबर से इस अभियान का नवा संस्करण शुरू होने जा रहा है। ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने अभियान की तैयारियों को लेकर वर्चुअल माध्यम से बैठक की। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अंतर मंत्रालय बैठक से जुड़े। इस दौरान आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने नागरिकों से अभियान में भाग लेने और स्वच्छता ही सेवा को जन आंदोलन बनाने की अपील की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: शायद इसीलिए गाने सुनते हुए हमें सिर्फ संगीत हम सिर्फ संगीत नहीं सुनते बल्कि अपना ही कोई बीता हुआ पल, कोई रिश्ता और अपने मन की अनकही कहानी सुनते हैं। गीत ख़त्म हो जाता है लेकिन उसका एहसास देर तक दिल में गुनगुनाता रहता है। बिल्कुल सच बात है ये। मन में कुछ चीज़ें समय बीतने के साथ खुद ब खुद स्पष्ट हो जाती हैं। ज़िंदगी में खुशी आएगी तो दुख भी आएगा, असुरक्षा आएगी तो डर भी आएगा। सो जो है वो आज इसी पल में है। शोला हो या फिर चमकती बिजुरिया, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हमेशा झेलना पड़ता ही है। तो इन चमकते गीतों के सहारे हम तय करेंगे आज का सुरीला सफ़र। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ मुलाकातें उम्र नहीं पूछती, बस दिल में उतर जाती हैं और फिर बरसों बाद भी यादों की खिड़की खोलो तो वही रंगीन शाम, वही हाथ और वही अधूरा सा सफ़र सामने बैठा मिलता है। मन के खाली नगर में किसी की तस्वीर उभरने के खूबसूरत रूहानी एहसास को बयां करती है। ये वो तस्वीर एक ठंडी हवा के झोंके की तरह पूरे वजूद को महका देती है और सालों का खालीपन को रूहानी एहसास से भर देती है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, फिल्मों में मुख्य अभिनेता का कार, टैक्सी, ट्रक ड्राइवर का किरदार निभाना भारतीय सिनेमा में काफ़ी लोकप्रिय रहा है। ऐसी फिल्मों में अक्सर एक्शन, इमोशन और सफ़र का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है। तो ऐसी ही कुछ मशहूर फिल्मों के गीत हमने लिए हैं आज के सुरीला सफ़र के लिए, जिसमें हीरो मुख्य रूप से किसी गाड़ी को चलाने का काम करते हैं। '71 की क्लासिक बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी कारवां। धोखे से कराई गई शादी से घर से भागी लड़की सुनीता और बंजारों के दल के साथ ट्रक चलाने वाले मोहन, सफ़र के दौरान दोनों को हुआ एक दूसरे से प्यार और दूसरी तरफ सुनीता की तलाश में उस कारवां के पीछे ओंडे। रोमांचक मोड़, एक्शन और गानों के दरमियान साजिश का पर्दाफाश होता है। खलनायक अपने अंजाम तक पहुंचते हैं और मोहन सुनीता की प्रेम कहानी होती है पूरी। तो बताइए कौन थे मोहन, सुनीता और खलनायक, और इस फिल्म के निर्देशक का नाम भी बताएं हमें। तब तक आइए सुनते हैं इस गीत को, यानी कि आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ कार्यक्रम की, जिसमें आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

साथियों अपने विचार, अपनी बातें, अपने पैगाम और संदेश आपने भेज दिए हैं जो हम तक पहुंच गए हैं और लगातार आप भेज रहे हैं, तो उन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में आगे बढ़ते जाएंगे। फिल्म का नाम था कारवा। जितेंद्र, आशा पारेख, रूना ईरानी, मदनपुरी और जूनियर महमूद ने इस फिल्म में भूमिका निभाई थी और निर्देशक थे नासिर हुसैन। हमारे साथियों ने लिखा है कि राजेश खन्ना और देव आनंद के बिना कोई सफ़र सफ़र नहीं होता ज़िंदगी का। एक वक्त था जब ज़िंदगी बेरंग थी, फिर तुम आए और सब कुछ बदल गया। हम एक दूसरे की बातों में ऐसे खोए कि दुनिया को भूल गए। तुम किसी हसीन ख्वाब जैसी हो और तुम्हें अपना बनाने की चाहत इस दिल में है। तुम्हारे साथ से ज़िंदगी मुकम्मल लगती है, इसलिए अब हर हाल में मेरा साथ निभाना। तुम एक खूबसूरत लत की तरह हो, चलो आज के इस हसीन पल को पूरी शिद्दत से जी लेते हैं क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला। मन भी अजीब सा मुसाफिर है, कभी खुद में ही सफ़र करता है, कभी खामोश रहकर कह देता है सब कुछ, कभी कहकर भी कुछ नहीं कहता। मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद और जॉब लगने के बाद मेरे मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे मन के नगर को भरा और सूखी डाली में हरियाली भी आई जब मेरे जीवन में आई मेरी पत्नी यानी के मेरी घरवाली। साथियों, टैक्सी, कार या बसों से आपने कोई सुहाना सफ़र किया तो होगा, तो कहाँ कहाँ की सैर की, उन खूबसूरत यादों को, बातों को हमारे साथ बांटिए और लिख दीजिए हमारे FB पेज पर। टैक्सी चोर इस एक्शन थ्रिलर मूवी में मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्य भूमिका निभाई थी, पर हम बात करेंगे खुददार। इस सुपरहिट फिल्म में महानायक ने एक ईमानदार टैक्सी चालक का रोल प्ले किया था जो अपने उसूलों के लिए लड़ता है। तो बताइए गोविंदा यानी कि उस महानायक का नाम और इस गीत में कौन सी अभिनेत्री उनके साथ है उसका भी नाम बताएं। और इस गीत में आवाज़ें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

फिल्म आशा का गीत याद आ रहा है, जाने हम सड़क के लोगों से, जितेंद्र उसमें ट्रक चलाते हैं। अगला मैसेज है कि सफ़र जीवन का हो, किसी मंजिल तक जाने का हो, किसी

के दिल तक पहुंचने का हो या सुरीला सफ़र विविध भारती के साथ हो, हम तो हर सफ़र को एंजॉय करते हैं क्योंकि असली मज़ा और सुनहरी यादें सफ़र की होती हैं। मंजिल या मकाम पर पहुंचने के बाद भी वही हमारे जहन में रहती हैं। सबसे लंबी सड़क मार्ग का सफ़र मेरा कटक से पुणे का था। काफ़ी रोमांचक था। चिल्का झील, घने जंगलों, पहाड़ों से गुजरते हुए पहली रात, विशाखापट्टनम समुद्र किनारे दूसरी रात, और हैदराबाद में गुजरने के बाद सोलापुर होते पुणे पहुँचे। मेरी पत्नी बेटा बेटी के संग सफ़र के हमने खूब मज़े लिए। आवाज़ की दुनिया के हमारे दोस्त हमारी ही तरह इबारत लिखना सीख गए हैं। गीतों के इस सफ़र में बढ़ते हैं अब आगे। बेहतरीन लोकेशन और रोमांटिक फिल्म कश्मीर की कली, जिसमें एक अमीर बिजनेसमैन राजीव लाल को एक सीधी साधी फूल बेचने वाली लड़की चंपा से प्यार हो जाता है, और पेशे से ट्रक ड्राइवर मोहन चंपा पर बुरी नज़र रखता है और उसके गरीब पिता दीनू को ब्लैकमेल करता है। कहानी कई उतार चढ़ाव, गलत पहचान का नाटक, खलनायकों की चालें, और अंत में सभी गलत फहमियां दूर होकर एक सुखद मिलन होता है। तो किस खूबसूरत लोकेशन पर यह फिल्म बनाई गई थी। वैसे तो उसमें फिल्म के नाम में ही वो बात छुपी है। और राजीव, चंपा, मोहन की भूमिकाओं में कौन से कलाकार थे और निर्देशक का नाम भी बताएं। वैसे ये जो गाना अभी आप सुनेंगे, इस ट्रक में भेस बदलकर गाना कौन से अभिनेता गा रहे हैं, और गीत में आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार हैं SH बिहारी, संगीतकार हैं OP नैयर, फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

साथियों, आपके जवाब हमें मिले हैं। मुख्य कलाकार थे शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर, प्राण, नज़ीर हुसैन, मदन पुरी और टुनटुन। कश्मीर की कली, इस फिल्म की शूटिंग श्रीनगर और वहां की मशहूर डल झील और उसके आसपास की खूबसूरत वादियों में की गई थी। निर्देशक थे शक्ति सामंत और कश्मीर की कली ये फिल्म थी शर्मिला टैगोर की पहली हिंदी फिल्म। हमारे साथियों ने हमें कुछ और मैसेज लिखे हैं कि फिल्म नमकीन का गीत सफर में होता है ट्रक में संजीव कुमार गाते हैं, ठीक है। फिल्म 9-2-11 का गीत हम है राही प्यार के देव आनंद ट्रक चलाते हुए गाते हैं और फिल्म जौहर महमूद के गाने हम दो दीवाने मिलके भी सफर में गा रहे हैं। साथियों, अब बात करते हैं बॉलीवुड की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक राजा हिंदुस्तानी की, जिसमें आमिर खान एक सीधे साधे टैक्सी ड्राइवर राजा की भूमिका में नज़र आए थे, जिसे एक बेहद अमीर लड़की से प्यार हो जाता है। तो अब ये बताइए कि टैक्सी ड्राइवर राजा किस इलाके में टैक्सी चलाते थे और कौन थी वो अमीर लड़की, और लड़की की माता जी की भूमिका में नज़र आने वाली अभिनेत्री का भी हमें नाम बताएं, और साथ में हमें ये भी बताएं कि इस फिल्म में जो छोटा बच्चा था वो आजकल एक बड़ा अभिनेता है, तो उस छोटे बच्चे का भी हमें नाम बताएं। साथियों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कभी कभी अक्सर लोग टैक्सी, रिक्शा, बसों में अपना कीमती सामान भूल जाते हैं, तो अचानक से, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि जो टैक्सी चालक होते हैं वो पूरी ईमानदारी से आपका वो कीमती सामान लौटा देते हैं। तो कभी कुछ ऐसी बातें आपके साथ हुई या आपने देखी या आपने सुनी हो तो वो भी हमें लिख दीजिए, हम आपके सारे कमेंट्स को पढ़ रहे हैं। तो लीजिए, सुनिए उदित नारायण की आवाज़ में ये गीत, गीतकार हैं समीर और संगीत है नदीम श्रावण का।

दोस्तों आपके जवाब हमें मिल गए हैं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी की ज़्यादातर शूटिंग ऊटी, तमिलनाडु, मैसूर, कर्नाटक और उत्तराखंड के रानीखेत में हुई और टैक्सी ड्राइवर राजा एक काल्पनिक इलाके पालनखेत में अपनी टैक्सी चलाते थे। आमिर खान, करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय, जॉनी लिवर, कुणाल खेमू, अर्चना पूरन सिंह, मोनिश बहल, टीकू तलसानिया, फरीदा जलाल, नवनीत निशान और वीरू कृष्णन इस फिल्म में नजर आए थे। हमारे एक साथी ने लिखा है कि भूटान में जब मैं गया था तब गर्मी का मौसम था, फिर भी गर्मी में बहुत ही मज़ा उठाया हम लोगों ने। अगला ये मैसेज है कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में

छोड़ जाता है। सफर में गाए जाने वाले गीत एक दो नहीं बहुत सारे हैं, जैसे कि परिचय में मुसाफिर हूँ यारो। और एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफ़र का ये सफ़र सचमुच बहुत ही रोमांचक सफ़र है, जिसमें हम अपनी बातों को यहाँ पर रखते हैं। साथियों, सड़क पर तो हम सभी रोज़ चलते हैं, गुजरते हैं, पर एक बेहद चर्चित रोमांटिक थ्रिलर फिल्म आई थी सड़क, जिसमें संजय दत्त ने रवि नाम के एक टैक्सी ड्राइवर का किरदार निभाया था। तो इस फिल्म की अभिनेत्री और संजय दत्त के दोस्त के रोल में नज़र आने वाले अभिनेता और खलनायक के नाम भी हमें लिख दीजिए, साथ ही निर्देशक का नाम भी लिख कर भेजें। इस गीत में आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का, फिल्म का नाम है सड़क।

0: साथियों आपके जवाब हमें मिले हैं, पूजा भट्ट, संजय दत्त, दीपक तिजोरी, नीलिमा आजम, सदाशिव अमरापुर का जो महारानी के किरदार में नज़र आए थे, अवतार गिल, जावेद खान, पंकज धीर और निर्देशक थे महेश भट्ट। साथियों आपने कभी ट्रक की सवारी की है या उसमें बैठकर किसी शादी में गए हैं या ट्रक से जुड़ी कोई बात हो तो वो भी हमें बताएं। खेती करने में ट्रक का कितना और कैसा योगदान होता है वो भी बताएं। और अब बात उस ब्लॉकबस्टर मूवी की जिसमें सनी देओल पेशे से एक देसी ट्रक ड्राइवर के रोल में नज़र आते हैं और इस फिल्म में ट्रक सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि कहानी का एक अहम हिस्सा भी है। तो उस फिल्म का नाम और सनी देओल की भूमिका का नाम, निर्देशक का नाम भी बताएं। वैसे इस फिल्म में सनी देओल ने एक चीज़ उखाड़ ली थी, क्या थी वो चीज़ उसका भी नाम लिख दे। तब तक आइए सुनते हैं ये गीत जिसमें आवाज़ें हैं उदित नारायण और साथियों की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं उत्तम सिंह।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके।

हमारे साथियों ने जवाब लिख दिए हैं हमारे पेज पर। सनी देओल की भूमिका वाले किरदार का नाम था तारा सिंह, साथ में थे अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक शौक, सुरेश ओबराय और गदर। एक प्रेम कथा में तारा सिंह ने जमीन से सीधे एक लोहे का हैंडपम्प उखाड़ लिया था, जिसे हिंदी फिल्मों के इतिहास के सबसे लोकप्रिय सीन्स में गिना जाता है। और इस फिल्म के निर्देशक हैं अनिल शर्मा। राजा हिंदुस्तानी इस फिल्म को देखकर जब जब फूल खिले वाले शशि कपूर और नंदा याद आ जाते हैं हमें। साथी ने लिखा है कि मज़ेदार मनोरंजक कार्यक्रम चल रहा है और मेरी सात गीतों की लिखी हुई इबारत में से छठे नंबर पर लिखा हुआ गीत भी शामिल हो गया है। और एक साथी ने लिखा है कि सड़कों के सफ़र में हम कई बार ट्रक्स और सामान ले जाने वाली गाड़ियों के पीछे लिखी हुई लाइनें जो लिखी होती हैं उसे पढ़ते हैं, जैसे कि अनारकली अरे बढ़कर चली, जो सफ़र प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफ़र, नहीं तो गर्दिशों के दौर का मारा है सफ़र, और बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं हाईवे की। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा महावीर भाई नाम के एक ट्रक ड्राइवर और किडनैपर की भूमिका में नज़र आए थे और नायिका के साथ भारत के अलग अलग रास्तों पर ट्रक के ज़रिए वो सफ़र करते हैं। तो बताइए उन इलाकों के लोकेशन के नाम और फिल्म के निर्देशक का भी नाम बताएं, साथ ही उन जगहों के बारे में आप कोई ख़ास जानकारी रखते हो तो वो भी हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। और आलिया भट्ट की पहली फिल्म का नाम क्या था वो भी लिख दें, और इस गीत में आवाज़ें किसकी हैं वो भी बताएं। गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार हैं AR रहमान।

साथियों आपके जवाब हम पढ़ देते हैं। निर्देशक हैं इम्तियाज अली और उनकी ये जो फिल्म हाईवे है भारत के अलग अलग इलाकों में फिल्माई गई थी, जिनके नाम है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। आलिया भट्ट की पहली फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर और संघर्ष में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था और इस गीत में आवाजें थी सुल्ताना और ज्योति नूरानी की। साथियों अब हम आपको सुनवा रहे हैं टैक्सी ड्राइवर का, इस फिल्म का गीत, और इस गीत का एक जवाब हमें जल्दी से लिखकर भेज दीजिए कि ये गीत किस पर फिल्माया गया है।

फिल्म का नाम था टैक्सी ड्राइवर, आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीत को लिखा था साहिर ने, संगीत था सचिन देव बर्मन का, और इस फिल्म में नज़र आए थे देव आनंद, कल्पना कार्तिक, जॉनी वॉकर, और ये जो गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री का नाम था शीला रमानी।

साथियों, सुरीला सफ़र के हम सफ़र बनकर आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। और आज की तरह कल भी हमारे साथ तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफ़र देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन यांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे

0: के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
1: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमरीका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1,270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पनबिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण ये दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
3: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे

0: खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी दो दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर NDMC क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच NDMC नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आईब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
3: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमरीकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
4: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
1: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए सांविधिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उपमहापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व के पांचवें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजरियन अयूब और टेन वी कियोंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरों मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है आ गले लग जा।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। गीतकार है गौहर कानपुरी, संगीत है बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम है जख्मी।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर
0: एक उत्तम जीवन,
2: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता,
1: मार उड़ाली
0: एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नख्मों का कार्यक्रम सदाबहार नख्मे। आइए सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, गीत रचना नीरज की, संगीत रचना सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

साथियों लीजिए सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। धुन है राहुल देव बर्मन की, फिल्म का नाम है द ट्रेन।

0: संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया।
1: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं अमित खन्ना, संगीतकार हैं राजेश रोशन, फिल्म का नाम है स्वामी।

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके पत्र, आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। और कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइशें भेजी है आप सभी दोस्तों ने, गांव जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी और शुभम दयाल खटक, चारकोप कांदिवली वेस्ट मुंबई से अनिल कुमार वैद्य, गांव पालधी महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनना चाहते हैं संजय पाटिल, नरेंद्र पाटिल, शेखर पाटिल, चेतना पाटिल, मानसी पाटिल, किरण पाटिल और शैला बाई पाटिल, कृष्णा कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो उबैद, अलीना जुनैद, रजिया मुआज और आयात मंसूरी, और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंदडाने, अर्चना प्रतिभा ताई और पद्माकर गोंदडाने। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गीत किशोर कुमार और सपना मुखर्जी की आवाज़ों में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है जांबाज़।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी खत लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। राजनगर कांति निकेतन मधुबनी बिहार से कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा रिद्धि सिद्धि और कोमल गुप्ता ने, कुंवर कॉलोनी एमपी से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और जंक्शन प्लॉट राजकोट से प्रभुदास कोटेचा, हंसाबेन कोटेचा और आशीष कोटेचा, खाम गांव जिला बुल्डाना से करीम शाह, गणेश गरड़, शेख मोहसिन, लक्ष्मण उपासे, गोपाल काड़े और राम बाड़खे ने।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। कस्बा हरदुआ गंज अलीगढ़ से मुन्ने मियां अंसारी, अयान अंसारी, नफीस अंसारी, शाहिद अहमद अंसारी और विंस टेलर। सदर नागपुर से कमल गोल्दा, अंकित गोल्दा, अभिषेक गोल्दा, प्रेम लता गोल्दा और समस्त गोल्दा परिवार। आमला ग्राम अंधारिया बैतूल एमपी से वीरेश झारे, योगेश झारे, त्रिवेश झारे और नवदीप। नेरदे वर्धा छिंदवाड़ा से पूजा देवी, बलराम पटेल, जानवी रामा और देव। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलविंदर कौर धीमान, रोनित, नीशू और भूपेंद्र।

शाहू नगर, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और स्वीट बेबी प्रियांशी। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीत को लिखा है निदा फाजली ने, संगीत है उषा खन्ना का और फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे।

साथियों, कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है और इसे सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। मालेगांव जिला वाशिम महाराष्ट्र से अरविंद साखरकर, सुनीता, रोहित, निखिल और दीपमाला साखरकर, रणपिस

नगर अकोला महाराष्ट्र से शिवराज भारती, कुमारी टीना भारती, तनिषा वेनो संगेफर, रीना रोहित, मनु गयालकर और राज भारती। कोपर गांव से पेंटर दारूवाला, मतिन दारूवाला, मसूदा दारूवाला, दिया और दानिश खान। बाला चौक यवतमाल से पत्र लिखा है मीना ताई, गायत्री, भूमि, नितिन, तनिष, मुकेश, दीपिका, लविसा, शौर्य, शुभम, कल्याणी, कुकू और सुनीता श्रीवास ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं, तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। आवाज़ है आशा भोसले की, गीत को लिखा है शहरयार ने, संगीत है खयाम का, फिल्म का नाम है उमराव जान।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर खत लिखे हैं आपने। शैलू बाजार जिला वाशिम से नारायण गवार गुरु, सरला गवार गुरु, सचिन खाडेकर, दक्ष, आयुष पुरवा, निर्मोही और आधिराज ने, रिधोरा से बाबूलाल बोराखडे, गोकुला बोराखडे और मंगेश बोराखडे, दुर्ग रायगढ़ से गेंदालाल श्रीवास, कुशल और गेंदू भाई, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका बलविंदर बीरक, जय तेग बीरक और मीका बीरक, रामना हड़दी से मोहम्मद आरिफ, फातिमा अरफा और एमएच शरीफ, जलगांव सोमनाथ से आपने खत लिखा है डॉक्टर नामदेव भुतेकर, अभिषेक भुतेकर, कार्तिक और अश्विनी भुतेकर, संभाजी नगर महाराष्ट्र से वैष्णवी जगदाड़े, हर्षुल साउंगी, संभाजी नगर भाव सिंह पूरा से वैभव और गौरव लोखंडे, और बदनापुर से मेघराज युवराज कोलते, रिधोरा देवी और रुद्र कोलकर ने ये पत्र लिखे हैं। साथियों, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रवि, फिल्म का नाम है आँखें।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। आपको बता दें, आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला आकांक्षा विश्वकर्मा और चंचल वर्मा से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।

0: आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आंख की किरकिरी का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा।
1: कौन? तुम?
2: क्या पढ़ रही हो? जरा देखूं तो।
1: कुछ नहीं, ऐसे ही।
2: देखूं तो सही। अच्छा, विष वृक्ष पढ़ रही हो। और मैं तो समझा कि कोई गुप्त चीज होगी।
1: मेरे पास गुप्त क्या हो सकता है?
2: जैसे बिहारी की कोई चिट्ठी।
1: क्या क्या कहा तुमने?
2: अरे मैं तो परिहास कर रहा था।
1: छोड़ मेरा हाथ। परिहास किसका कर रहे थे? यदि उनकी मित्रता के योग्य होते तो तुम्हारा परिहास मैं सह लेती। तुम्हारा मन छोटा है, मित्रता करने की शक्ति ही नहीं तुम्हें।
2: मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ।
3: महिंदा,
4: ओह, बड़े समय में आ गया, किंतु ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। केवल एक बात कहने आया हूं। मैं काशी गया था, जानता नहीं था कि भाभी वहां है। बिना जाने उनके सामने जाकर अपराधी हुआ, पर उनसे क्षमा मांगने का अवसर नहीं मिला, इसीलिए तुमसे क्षमा मांगने आया हूं। मेरे मन को ज्ञान अज्ञान में यदि किसी पाप ने स्पर्श किया हो तो उसके लिए उन्हें किसी तरह का दुख ना सहना पड़े। बस
2: मैंने तो ना तुमसे दोष स्वीकार करने को कहा है ना स्वीकार करने को, तब तुम क्षमा मांगकर साधु बनने क्यों आए हो?
4: मैं
1: बिहारी लाला जी, तुम कुछ मत कहो। इस आदमी ने जो कहा है उससे इसी के मुंह पर कलंक लगा रहेगा।
4: अच्छा, मैं जाता हूँ।
1: लाला जी मुझसे तुम्हें क्या कुछ भी नहीं कहना। यदि तिरस्कार करने की बात हो तो तिरस्कार करो। लाला जी कुछ तो बोलो। लाला जी
2: हट जाओ मेरे सामने से। अरे तुम्हारे बाएं हाथ की कोहनी से खून बह रहा है। ला, फिर मैं अभी पट्टी बांध देता हूं।
1: कुछ मत करो, गिरने दो खून।
2: कैसी बात कर रही हो? पट्टी बांध कर अभी एक दवा देता हूं, दर्द जाता रहेगा और घाव शीघ्र अच्छा हो जाएगा।
1: नहीं, इस दर्द को बना रहने दो, मुझे अच्छा नहीं करा रहा है।
2: मैंने अधीर होकर लोगों के सामने तुम्हें अपदस्त किया, इसके लिए मुझे क्षमा करो।
1: क्षमा किस लिए? अच्छा किया। मैं क्या किसी से डरती हूँ? जो लोग थक्का देकर चोट पहुंचाकर छोड़ जाते हैं वे ही क्या मेरे सर्वस्व हैं? और जो पांव पकड़ कर रखना चाहते हैं वे कोई नहीं।
2: तो तुम मेरे प्रेम को कभी नहीं ठुकराओगी?
1: नहीं, मैं उसे माथे पर लगा कर रखूंगी।
2: चुन्नी, काशी से लौटने के बाद तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया है।
5: और तुम कैसे रहे?
2: अच्छा ही था। सुनो, मैं कॉलेज जा रहा हूँ।
5: आज इतनी जल्दी?
2: हाँ, कुछ आवश्यक कार्य है। अच्छा, चलता हूँ। महेंद्र, तू ये क्या कर रहा है? कभी तेरा मन आशा की ओर भागता है, कभी विनोदनी की ओर। आशा जब जब तेरे पास आती है तो उसकी ओर उपेक्षा का भाव रखता है और विनोदनी के पीछे पीछे भागता है। तुझे क्या मालूम कि उस सरल हृदय पर क्या बीतती होगी? लेकिन आज ना तो भोजन के समय और ना उसके बाद ही आशा आई। मैं तो सोच रहा था कि अपने प्यार दुलार से उसकी सारी वेदना को दूर कर दूंगा। आशा को अब भी मैं कितना प्यार करता हूं, वो बहुत कम स्त्रियों के भाग्य में होता है। और विनोदनी, आशा और विनोदनी दोनों के लिए मेरे हृदय में स्थान है। और

0: और दोनों में से किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं। ये मौसम, ये चांदी रात, लेकिन लेकिन विनोद भी मुझसे दूर नहीं। नहीं नहीं, मैं भी उससे मिलूंगा, उससे मिलूंगा। चल उसे कमरे में।
1: विनोद, विनोद बिस्तर बिछा है, विनोद ने कहा है?
2: कौन?
0: मैं हूं, मैं।
3: अरे महेन, इतनी रात को तू यहां कैसे? महेन, विनोदिनी, महेन बहू को छोड़ इतनी रात के यहाँ क्या करने आया था?
2: मुझे क्या मालूम, शायद किरकिरी के साथ कुछ खटपट हो गई होगी। आज भी समय से पहले कॉलेज चले गए, ना हमसे कुछ बोले ना कुछ कहा। चलो उनके कपड़े निकाल दूं। अरे चिट्ठी देखो तो किसकी है? ये तो विनोदनी यानी किरकिरी की चिट्ठी, इनके नाम। हे भगवान, जरा पढ़ो तो। कल रात तुमने जो कुछ किया
4: उससे भी क्या तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई? आज फिर नौकरानी के हाथ गुप्त चिट्ठी क्यों भेजी?
2: जी जी,
4: वो अपने मन में क्या सोचती होगी? मुझे क्या तुम जगत में किसी के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रखोगे? तुम मुझसे चाहते क्या हो? प्रेम? तुम्हारी ये भिक्षा वृत्ति क्यों है? जन्म से तुम केवल प्रेम पाते आ रहे हो, तब भी तुम्हारे लोभ का अंत नहीं है? जगत में मुझे प्रेम करने और पाने का कोई स्थान नहीं, इसी से मैं खेल खेल कर प्रेम का खेत मिटा लिया करती हूँ। जब तुम्हारे पास अवसर था तब उस मिथ्या खेल में तुमने भी साथ दिया, किंतु खेल की छुट्टी क्या कभी समाप्त नहीं होती? अब घर में तुम्हारी पुकार हुई है, अब धूल झाड़ कर घर जाओ। मेरे तो घर नहीं है। हाँ, मन ही मन अकेले बैठ कर खेलती रहूंगी, तुम्हें नहीं बुलाऊंगी।
2: हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? क्यों? क्या क्या ये हमारा संपूर्ण सर्वनाश है? मौसी, मौसी।

0: आज माँ ने मुझे रोज की तरह अभी तक आवाज नहीं दी, बात क्या है? चलो मैं स्वयं ही उनके पास भंडारे में जाती हूँ। माँ, माँ, माँ जान पड़ता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बात भी है ऐसी है, उस रात देखो ना एकदम पागल की तरह खड़े हो गए, मुझे तो फिर नींद ही नहीं लगी। शायद किरकिरी के साथ कुछ खटपट हो गई होगी, फैसले के लिए मुझे धर पकड़ना चाहा। रात भर सब्र कहाँ, आपके लड़के में माँ और चाहे हजार गुण हो पर धैर्य तो लेश मात्र भी नहीं है, इसीलिए अक्सर मेरे से उनका झगड़ा हुआ करता है।
1: बहू तुम झूठ पक रही हो, मुझे आज कोई बात अच्छी नहीं लग रही।
0: मुझे भी आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा माँ, तुम्हारे मन को चोट लगेगी इसीलिए झूठी बातों से तुम्हारे लड़के के गुण दोष ठगने की चेष्टा कर रही थी, किंतु जो हो गया उसे ठगा नहीं जा सकता।
1: अपने बेटे के दोष गुण मुझे मालूम है, परंतु तुम ऐसी मायावी हो ये मैं नहीं जानती थी।
0: कोई किसी को नहीं जानता माँ, अपने मन को ही क्या सब जानते हैं। तुमने क्या कभी अपनी बहू से द्वेष करके इस मायावनी से अपने लड़के का मन बहलाने की इच्छा नहीं की?
1: अभागिन, बेटे के बारे में तू माँ पर अपवाद रखती है, तेरी जीभ क्यों नहीं गिर जाती?
0: माँ, हम सब मायावनी की जाति की हैं। मेरे अंदर क्या माया थी ये मैं ठीक नहीं जानती, तुम जान गई। तुम में जो माया है उसे तुम नहीं

0: जानती, मैं जान गई माया थी अवश्य, अन्यथा ऐसी घटना ही न होती। मैंने कुछ जाने कुछ अनजाने जाल बिछाया और तुमने भी कुछ जानकर कुछ अनजाने बिछाया था। हमारी जाति का धर्म ही ऐसा है।
1: अभागिन, तू तू
2: विनोद,
0: जाओ मेरे कमरे से, तुम चले जाओ।
2: क्यों, क्या किया है मैंने?
0: क्या किया है? डरपोक, कायर, तुम्हें क्या करने की शक्ति है? ना तुम प्रेम करना चाहते हो, ना कर्तव्य निभाना, फिर मुझे क्यों लोगों के सामने नष्ट किया चाहते हो?
2: मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, ये कह रही हो?
0: हाँ, मैं यही कह रही हूँ। लुका चोरी, ढकना उघाड़ना, कभी इधर कभी उधर, तुम्हारी चोरों जैसी प्रवृत्ति देखकर मुझे घृणा होती है। अभी अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, जाओ यहाँ से।
2: तुम मुझसे घृणा करती हो विनोद?
0: हाँ, घृणा करती हूँ। बिहारी लाला जी।
2: अरे भाभी, आप कैसे?
0: यहाँ तुम्हारा आत्मीय स्त्रियों में कोई नहीं है?
2: आत्मीय भी नहीं, पराई भी नहीं। बुआ है, सो देश के मकान में रहती है।
0: तुम अपने देश के मकान में मुझे ले चलो।
2: तुम्हें क्या कह के वहां ले चलूंगा?
0: दासी कह के, मैं वहां घर का सब काम काज करूंगी।
2: ये बात मन में उठी कैसे?
0: महेंद्र मुझसे प्रेम करता है।
2: ये बात कोई नई नहीं है, दोबारा सुनने की इच्छा हो?
0: मेरी इच्छा भी नहीं।
2: महेंद्र जिस रास्ते पर चला जा रहा था, उसे उससे किसने हटाया?
0: मैंने, अपने हृदय की आग से मैंने महेंद्र का घर चलाया है। मैंने समझा था कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, पर वो मेरी भूल थी।
2: प्यार करने वाली क्या इस प्रकार आग लगा सकती है?
0: वो तुम्हारे शास्त्रों की बात है, अभी उसे समझकर चलने की बुद्धि मुझ में नहीं है। सुनो लाला जी, मैं निर्लज्ज होकर कह रही हूँ, तुम ही मुझे बचा सकते हो। महेंद्र मुझे चाहता है, पर अंधा है, मुझे समझता नहीं। एक बार मुझे लगा था तुम मुझे समझ गए हो, शायद तुमने मुझ पर श्रद्धा भी की थी। सच कहना, छिपाना नहीं।
2: हाँ, की थी।
0: तुमने भूल नहीं की थी, किंतु यदि समझ नहीं लगे थे, श्रद्धा ही करने लगे थे, तो वहीं क्यों रुक गए? मुझे प्रेम करने में तुम्हें क्या बाधा थी? मैं आज निर्लज्ज होकर तुमसे कह रही हूं, तुमने भी मुझे प्यार क्यों नहीं किया? मेरा चला भाग्य, तुम्हें आशा के प्रेम में थी। नहीं, तुम क्रोध न कर सकोगे, मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगी। तुम आशा को प्यार करते हो, ये बात जब तुम स्वयं नहीं जानते थे, तब भी मैं जान गई थी। आशा में तुमने क्या देखा, मैं समझ नहीं पाती। विधाता के पुरुष को आंख के साथ अंतर्दृष्टि कुछ भी नहीं देते, तुम लोग क्या देखकर भूल जाते हो?
2: भाभी, अब तुम जो सुनाओगी सुनूंगा, पर जो बात कहने की नहीं है वो ना कहो, यही मेरी प्रार्थना है।
0: लाला जी, मैं जानती हूं तुम्हें कहां पीड़ा हो रही है, किंतु जिसकी श्रद्धा मुझे मिली थी और जिसका प्रेम पाने पर मेरा जीवन सार्थक हो जाता, उसके पास इस रात मैं संपूर्ण भय और लज्जा छोड़कर आई हूं। उसमें मेरे मन की कितनी वेदना छिपी है, जरा इस पर विचार कर धीरज धरो। मैं सच कह रही हूं लाला जी, यदि तुम आशा को प्रेम ना करते तो मेरे द्वारा उसका सर्वनाश कभी नहीं होता।
2: आशा का क्या हुआ, तुमने उसके साथ क्या किया?
0: महेंद्र सब कुछ छोड़कर कल ही मुझे साथ ले घर से निकल जाने को तैयार है।

0: ये किसी तरह नहीं हो सकता, किसी तरह नहीं।
1: महेंद्र को आज कौन रोक सकता है?
0: तुम।
1: किसके लिए रोकूं? तुम्हारी आशा के लिए? मेरा अपना सुख दुख क्या कुछ नहीं? तुम्हारी आशा का भला हो, तुम्हारे महेंद्र के घर गृहस्थी का भला हो, इसके लिए मैं अपने समस्त दावों को छोड़ दूं? इतनी भली मैं नहीं हूं, धर्मशास्त्र की पोथियां मैंने इतनी नहीं पढ़ी हैं। मैं जो छोड़ूंगी उसके बदले मुझे क्या मिलेगा?
0: सुनो, मैं भी तुमसे एक बात स्पष्ट कहता हूं कि ये सब जो तुमने कहा है उसका अधिकांश तुम्हारा नहीं है। छोटे दर्जे के नाटक उपन्यास तुमने पढ़े हैं और उससे ही चुराया हुआ है। तुम अगर नितांत अभूत बालिका रहती तो भी संसार में प्रेम से वंचित न रहती। नाटक की नायिका स्टेज पर शोभा देती है, घर में उसे लेकर काम नहीं चल सकता।
1: तुम मुझे क्या करने को कहते हो?
0: असाधारण कुछ न करो, साधारण स्त्रियों की शुभ बुद्धि जो कहती है वही करो। देश चले जाओ, मैं जनाने डिब्बे में बैठा कर तुम्हें देश तक पहुंचा दूंगा।
1: तो आज की रात यहीं रह जाऊं?
0: नहीं, मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं
1: है। बस इतनी दुर्बलता बनाए रखना लाला जी, पत्थर की देवता की तरह बिल्कुल पवित्र ना हो जाना, किसी बुरे से प्यार करके सरा बुरे बने रहना।
0: विनोद, मैं
1: जीवन सर्वस्व जानती हूँ, जानती हूँ कि सदा के लिए तुम मेरे नहीं हो सकते, किंतु आज एक मुहूर्त के लिए मुझे प्यार करो, उसके बाद मैं अपने उसी वन जंगल में चली जाऊंगी और किसी से कुछ न चाहूंगी। मरण पर्यंत मन में रखने लायक तुम कुछ तो दे दो मुझे, कुछ तो दो।
0: रात 1 बजे पैसेंजर ट्रेन जाती है।
1: मैं उसी गाड़ी से चली जाऊंगी। मैंने तुमसे प्रार्थना की थी कि तुम मुझे चिट्ठी अवश्य लिखना, मैं रोज तुम्हारी चिट्ठी पाने की प्रतीक्षा करती हूँ। तुम मेरे विचारक हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुम्हारी 2 लाइन की चिट्ठी ही मेरे निर्वासन में मेरा आहार है। कहते हैं एकाग्र मन से जिसे पुकारा जाता है वह अवश्य आता है। मैं भी तुम्हें पुकार रही हूँ, मेरा जीवन सूना है। इस सूनेपन में एक बार तुम आ जाओ, एक क्षण के लिए आ जाओ, तुम्हें आना ही होगा। मैं किसी तरह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हें आना ही होगा। तुम आ जाओ, एक क्षण के लिए आ जाओ, तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें आना ही होगा। आ गए प्रभु।
2: आ गया विनोद।
1: तुम चले जाओ यहां से, मैं कहती हूं चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से।
2: मैं इतना कायर नहीं कि तुम्हें इस लोक निंदा की आग में छोड़कर चला जाऊं यहां से। तुम्हें ले ही जाऊंगा, उसके बाद मुझे छोड़ देने की इच्छा हो तो छोड़ देना, मैं कुछ भी बाधा नहीं बनूंगा। मैं तुम्हें छूकर कसम खाता हूं कि तुम जो इच्छा करोगी वही होगा। मैंने अविश्वास के कितने ही काम किए हैं, परंतु आज मेरा विश्वास ना करो। चलो, मैं सवारी लेकर आया हूं।
1: चलो, मैं चलती हूं।
3: माँ,
4: माँ, लालची जरा जल्दी चलकर माँ को देखिए, बड़ा कष्ट हो रहा है उन्हें।
3: माँ, प्रणाम। माँ,
1: बहुत दिनों से

0: मेरे, तू है तो अच्छी तरह।
1: माँ, तुमने अपनी बीमारी का समाचार क्यों नहीं दिया? सुनकर मैं एक क्षण भी रुक सकता था।
0: खोकू, अरे क्या मैं जानती नहीं, तुझे सिर्फ पेट पे नहीं रखा रे, अन्यथा तुझसे बढ़कर दुनिया में मेरा कौन है रे?
1: माँ,
0: बहुत दुबला हो गया रे, तेरे तेक

0: का भार तुम पर रहा, इसे सुखी रखना।
1: न्यारी, जरा बाहर तो आ।
2: कहो काकी।
1: तुझे नहीं मालूम क्या, महेंद्र विनोदनी को लेकर कहीं चला गया है। एक बार महेंद्र को तो बुला नहीं लाएगा, और देरी करना उचित नहीं है।
2: अच्छा काकी, तुम माँ की पथ्य और दवा का ख्याल रखना। काकी काकी, महेंद्र का उद्धार मैं करूंगा।
3: विनोद, ये क्या तुमने फूलों से अपनी बेकी गूंथी? गले में भी फूलों का हार, ये सादा मोटे कपड़े, सारा कमरा, ये बिछोना, सब तरफ फूल ही फूल। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो? ये बिछोना जी चाहता है।
4: नहीं नहीं, तुम जाओ, इस बिछोने पर मत बैठना।
3: तो फिर ये श्रृंगार किसके लिए किया है?
4: जिनके लिए किया है वे मेरे हृदय के भीतर हैं।
3: कौन है वो? बिहारी?
4: उनका नाम तुम मुंह से न लो।
3: उसी के लिए तुम मेरे साथ इधर उधर घूमती हो?
4: हाँ, उन्हीं के लिए।
3: उसका पता ठिकाना जानती हो?
4: किसी न किसी तरह जान ही लूंगी।
3: मैं किसी भी तरह जाने नहीं दूंगा।
4: न जानने दोगे ना सही, पर मेरे हृदय से उन्हें किसी भी प्रकार निकाल न सकूंगी।
3: ओ, तुम मर क्यों ना गई? तुम्हारे मरने से कितना मंगल होता।
4: जब तक बिहारी की आशा है मैं मर नहीं सकती।
3: अगर तुम मेरी नहीं हुई तो बिहारी की भी नहीं हो सकती, समझी?
4: मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से।
3: मेरी माँ रो रही है, मेरी स्त्री रो रही है, उनके आंसू मुझे दूर से ही जला रहे हैं। तुम्हारे मरे बिना मुझे उनके आंसू पहुँचने का अवसर नहीं मिलेगा।
4: मैं कहती हूँ तुम अपने घर जाओ, जाओ यहाँ से। तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं। ओह, तुम नहीं मानोगे क्यों मुझे बार बार तंग करने के लिए आ जाती हो।
1: तुम?
2: महेंद्र, महेंद्र?
1: महेंद्र नहीं है, वो शहर गया है।
2: अच्छा, मैं चलता हूँ।
1: तुम्हारे पांव पड़ती हो, तुम्हें थोड़ी देर बैठना होगा।
2: कहो, क्या कहना है?
1: तुम जो कुछ मन में समझ रहे हो वो बात नहीं है। इस घर को किसी कलंक ने नहीं छुआ है। ये फूल तुम्हारी ही पूजा में सूख गए हैं। तुम्हें यही बैठना होगा। बैठो।
2: लो, बैठ गया।
1: तुमने दया पूर्वक मुझे ये स्थान दिया है, और दूर रहकर भी मैं इसकी रक्षा करूंगी। अच्छा बताओ, मैंने गांव से जो पत्र लिखा था उसे तुमने खोलकर उत्तर दिए बिना महेंद्र के हाथ वापस क्यों कर दिया?
2: मुझे तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, और ना ही महेंद्र के हाथों मैंने कोई चिट्ठी वापस की।
1: अच्छा, अब समझ में आया। सुनो, मैं सब बातें तुमसे कहती हूँ, विश्वास करोगे तो अपना सौभाग्य मानूंगी, ना करोगे तो तुम्हें दोष ना दूंगी।
2: ना ना ना, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। बिना कुछ कहे ही मैं तुम्हारा विश्वास करता हूं। मैं खुद तुमसे घृणा नहीं कर सकता। बस अब तुम एक शब्द भी मत कहो।
1: तो भी बताए बिना जी न सकूंगी। मैंने तुम्हें मन में रखा है, इसीलिए पवित्र बनी रही। आज मैं तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मेरा मूल्य नष्ट नहीं हुआ है, मेरा मूल्य नष्ट नहीं हुआ है।
2: अच्छा, तो अब रंग भूमि से महेंद्र का प्रस्थान और बिहारी का प्रवेश।
3: सुनो महेंद्र, तुम्हें विनोदनी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। मैं उससे विवाह करूंगा। और सुन लो महेंद्र, तुम्हारी माँ मृत्युशैया पर पड़ी है, उसके बचने की कोई आशा नहीं। मैं आज रात की गाड़ी से विनोदनी को लेकर चला जाऊंगा। हाँ?
2: ठीक है, मैं जाता हूं।
1: सुनो,

0: तुम्हारे मुंह से निकली कैसे? मेरा उपहास कर रहे हो?
1: नहीं, मैं सचमुच तुमसे विवाह करूं।
0: इस पापिष्ठा के उद्धार के लिए?
1: नहीं, नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए।
0: बस यही मेरा चरम पुरस्कार है। इतना जो तुमने स्वीकार किया है उससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिलने पर भी वो रहेगा नहीं, धर्म उसे कभी सहन नहीं करेगा।
1: क्यों नहीं करेगा?
0: जी जी, ये बात सोचने पर भी लज्जा होती है। मैं विधवा हूं, निंदिता हूं, समस्त समाज में तुम्हें लांछित करूं ये कभी नहीं होगा।
1: किंतु विनोदी, मैं तुम्हें प्यार करता हूं।
0: सुनो, दूसरे जन्म में तुम्हें पाने के लिए तपस्या करूंगी। इस जन्म में और कोई आशा नहीं करती। मुझसे विवाह करके तुम सुखी ना हो सकोगे, तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। मैं भी संपूर्ण गौरव खो दूंगी। तुम सदा से निर्लिप्त और प्रसन्न रहते आए हो, आज भी वही बने रहो। मैं अन्नपूर्णा काकी के साथ काशी चली जाऊंगी।
1: भाभी, न जाने इस जिंदगी में फिर आपसे मिलना हो या ना हो, मैं तुम्हारी कोई निशानी अपने पास रखना चाहता हूं।
0: जी जी
1: भाभी, मैं क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता?
0: तुम तो बहुत पहले ही मुझे जो दे चुके हो वो मेरे शरीर का भूषण है, उसे मरते दम तक कोई नहीं ले सकता। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
1: मैं समझा नहीं, मैंने ऐसा तुम्हें क्या दिया है?
0: भूल गए लाला जी, ये देखो।
1: अरे, ये तुम्हारे हाथ में चोट का निशान है।
0: हाँ लाला जी, एक दिन गुस्से में घृणा के साथ तुमने मुझे धक्का दिया था ना, मेरे हाथ में चोट लगी। उस खाप का ये निशान उसी दिन से मेरी आत्मा का आभूषण बन चुका है।
1: भाभी,
0: लाला जी, भगवान तुम सबको सदा सुखी रखे।

आंख की किरकिरी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली के इस रेडियो नाट्य रूपांतरण का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया, उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं चौथा और अंतिम भाग।
1: चूंकि बातें गौरी जी की हो रही हैं, तो इसी विषय पर बना रहता हूँ। आपके निर्देशन में उन्होंने किन नाटकों में काम किया?
2: काफी जुलवा में ही थी पहले तो
1: जी,
2: और जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। मतलब जितने शो हो गए, शायद वो एक आध दो शो में नहीं थी, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन लगभग मैं नहीं होता था कई बार शो में, लेकिन वो जरूर होती थी। तो उन्होंने रेणुका करके उसका कैरेक्टर था सयाजी, और उनका पेयर होता था वो साथ में, वो भी जोगतीन कम्युनिटी की थी और सयाजी जोगत्या था, तो उसको कर्जा देने वाली, उससे वसूलने वाली, ऐसी एक थोड़ी सी रिच उन्हीं के कम्युनिटी की, पर धाकड़ कैरेक्टर था, उन्होंने वो बखूबी निभाया। उसके बाद एक झुंज वारियाशी जो मैंने नाटक किया, उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया, क्योंकि उस पूरे नाटक में उनके हिस्से में केवल दो छोटे छोटे सीन्स थे।
1: ओके।
2: लेकिन पूरा नाटक उनके हस्बैंड जो जर्नलिस्ट होता है, उसके करियर को लोगों ने कैसे बर्बाद किया, बड़ा पॉलिटिशियन बनने के लिए, बड़े अहदे पे जाने के लिए, और वो सारा कैबिन में हो रहा है और ये कैबिन के बाहर बैठी हुई है, और उनको पीठ ऑडियंस की तरफ करके बिठाया था मैंने। वो पता चलता था इनके पीठ से कि ये अंदर के इसको कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, इसके ऊपर क्या क्या परिणाम हो रहा है। और जब वो अंदर आके बर्स्ट आउट होती थी, दैट सीन वॉज मेमोरेबल सीन इन दैट प्ले। उसके पास मी राष्ट्रपति नाम का प्ले मैंने किया था, उसमें भी उन्होंने बहुत मेजर रोल निभाया। तो मुझे लगता है ये दो तीन चार नाटक थे। उसके बाद फिर मैं बाहर भी नाटक करने लगा, व्यावसायिक भी नाटक करने लगा। फिर उसके बाद ये भी हो गया कि चार पांच साल पर ऋत्विक का जन्म हुआ, तो वो स्कूल में काम करती थी, हफ्ते में दो बार सेंट कोलंबा जो स्कूल थी वहां जाके बच्चों के साथ क्लास लेती थी, तो इसीलिए वो भी एक उनके लिए मर्यादा हो गई कि व्यावसायिक नाटकों में जाना है तो फिर लंबा जाना पड़ता है, 10-15 दिन के टूर लगते थे उस समय पर। पर उन्होंने अपने लेवल पे स्पर्श नाम के नाटक में काम किया, जो द गोवा हिंदू एसोसिएशन का व्यावसायिक नाटक था। फिर उन्होंने हैंड्स अप नाम के नाटक में काम किया, जो व्यावसायिक नाटक था। तो उन्होंने अपने लेवल पे बहुत सारे, तू का जातो वैकुंठाला नाम के नाटक में काम किया, तो बहुत सारे नाटकों में काम किया उन्होंने, सीरियल में काम किया। सह्याद्री की बहुत फेमस इर्जिक नाम की एक धारा चली थी, उसमें उन्होंने कई सारे एपिसोड किए। विजय मेहता के साथ लाइफ लाइन जो उन्होंने सीरियल पहली डायरेक्ट की थी उसमें काम किया। गोटिया जो सीरियल चल रही थी उसमें भी उन्होंने काम किया, बहुत सारी सीरियल्स में उन्होंने काम किया, फिल्मों में काम किया। फिर उसके आगे बहुत सारी महत्वपूर्ण फिल्मों में भी काम किया। अशोक सराफ जी के साथ उन्होंने फिल्म संजय सुरकर ने डायरेक्ट की हुई चौकट राजा, उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। उसके बाद अक्षय कुमार जी के साथ खिलाड़ी 420 में उन्होंने हिंदी में काम किया
1: जी।
2: फिर मराठी में और सारी फिल्मों में काम किया, और खास उनका बहुत ज़्यादा पॉपुलर काम रहा है वो देवयानी नाम की जो सीरियल लगातार 3-4.5 साल चली, उसमें मेजर रोल था उनका, और जिसको हाईएस्ट टीआरपी थी उस सीरियल को। तो उसके बाद उन्होंने तय किया कि मैं दिल्ली से आता था तब भी वो 30 दिन शूटिंग करती थी, और कभी कभी संडे को एक स्पेशल एपिसोड होता था उसके लिए रात दिन वो भी काम करती थी। ऋत्विक भी उसी समय सीरियल में काम करता था लीड रोल में, मानसी था चित्रकार तो स्टार प्रवाह के ऊपर। तो मैं जब दिल्ली में आता था ये दोनों बिजी होते थे, और ये दिल्ली आते थे कभी कभी जब मैं दिल्ली में था तब, तो ये जैसे ही पहुंचते थे तो दूसरे दिन सुबह फोन आता था कि कल के एपिसोड में प्रॉब्लम हो गया, आप तुरंत निकल आइए
1: लीजिए।
2: तो एक या दो दिन से ज्यादा हम रह नहीं पाते थे, तो फिर उन्होंने दोनों ने भी ये तय किया वो सीरियल कंप्लीट करने के बाद कि अब हम ज्यादा समय सीरियल में नहीं देंगे, फिल्म और नाटक यही है। और उनका सबसे

0: अच्छा मुझे लगा कि पैरेलल जो उन्होंने करियर किया वो चिल्ड्रन थिएटर में
1: जी बहुत बड़ा योगदान,
0: लीडिंग थिएटर चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट इन महाराष्ट्र, कि बहुत सारे बच्चों को उन्होंने करियर तक पहुंचाने का काम किया है और अपने किस्म का वो नाटक करती है बच्चों के साथ, उनको एक अपना नैक है, उनकी अपनी एक मेथोडोलॉजी बनी है कि 10 दिन में वो बच्चों को पूरा आर पार बदल देती हैं और नाटक भी करवाती हैं अंत में, और जो नाटक बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी होते हैं, ह्यूमरस भी होते हैं और कुछ मैसेज लेके भी वो नाटक करती हैं। तो इसीलिए अपने आप में वो अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है, वो एक्ट्रेस भी है, थिएटर की भी है, सिनेमा की भी है, सीरियल की भी है, ये तीनों मीडिया में वो कंफर्टेबल है, और चौथा है वो चिल्ड्रन थिएटर की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूटर है। मुझे लगता है कि सुधा कर्मरकर और 2-3 सुलभा देशपांडे और इनके बाद बहुत ज़्यादा कंचन सोनटक्के जी के बाद मराठी थिएटर में बहुत ज्यादा उन्होंने चिल्ड्रन थिएटर में काम किया है
1: जी। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: जब आपके शुरुआती दो तीन नाटक बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और ये लगा कि ये अलग ताप के नाटक हैं, इनके तेवर बहुत अलग हैं, और आपने उसमें अपना बहुत कुछ झोंक दिया था और ये उम्मीद की जा रही थी कि इस डायरेक्टर के तत्व जल्दी चुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो क्या चीज थी जो लगातार आपको आगे प्रेरित करती रही? और दूसरा, दलित थिएटर मूवमेंट को आप लगातार जिंदा रखे रहे?
1: दलित थिएटर मूवमेंट की बात तो थी, जैसे मैंने कहा कि दो नाटक में तो मैं उसका हीरो था
0: जी,
1: नायक की भूमिका में था। उसके बाद दिल्ली जाने के बाद एक्चुअल उस मूवमेंट से मेरा संबंध थोड़ा सा विरल हो गया, कम हो गया, लेकिन मैं जो नाटक करता रहा
0: यस,
1: उसमें वो तत्व जो है, मतलब मैंने जिस काम के लिए मैं नाटक में आया था, मैं आज

0: तक उसको भूला नहीं हूं। मैं नाटक में क्यों हूं ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। मुझे कौन सा नाटक करना है ये भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। मुझे कौन सा नाटक नहीं करना है, कितना भी पैसा दे दो, वो भी मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। तो इसलिए मेरे नाटकों के जो विषय है, चाहे वो जुलवा है या जाने मन है, मुझे लगता है जिन लोगों की अभिव्यक्ति को, जिन लोगों की जिंदगी को, जिन लोगों के दबेपन को आवाज नहीं मिली है, मुझे लगता है उनको मैं अपने नाटक का विषय बनाता हूँ।
1: हमेशा हाशिए पर जो लोग हैं,
0: हाँ, हाशिए पे जो लोग हैं, जो गांव के बाहर है, गांव के अंदर के भी नाटक किए मैंने, पर जो ज्यादातर जो विषय चुने मैंने वो गांव के बाहर है, उनको गांव में एंट्री नहीं है। अब देखिए झुलवा जोकते जोकतीनी पर है, एक झुंझ वारियाशी एब्सोल्युटली डायरेक्ट ये मेन स्ट्रीम कंटेंट था कि किस तरीके का भ्रष्टाचार पूरे सत्ता कारण में हो रहा है और उसमें इनोसेंट टैलेंट का बलि कैसे चढ़ाया जाता है और वो भी जो जर्नलिस्ट है। उसके बाद मैंने नाटक किया दूसरा सामना जो सतीश आलेकर जी ने लिखा, जो हमारी ये शुगर सहकार मूवमेंट है उसके अंदर किस तरीके से फिर वही दलित का बलि कैसे चढ़ाया जाता है। पहला सामना तो जो था वो फिल्म थी, उसका सिक्वेल था जो लिखा गया कि जो दलित का बेटा है जो आईएएस है और आज वो अपर कास्ट का है क्योंकि उसको अडॉप्ट किया गया और उसको मालूम नहीं, और एक दिन अचानक उसको मालूम हो जाता है कि वो जिस जाति से और जिस संस्कार को बिलोंग करता है उसका है ही नहीं, जो भी आईएएस होने के बावजूद भी वो तो है दलित। उसके बाद जो टूटना है उसका, वो टूटना विक्रम गोखले वो रोल करते थे और दूसरा विनय आप्टे करते थे और तीसरा इला भाटे का पहला नाटक था
1: जी।
0: तो ये उस नाटक में भी वही बात अलग किस्म से थी, नाती गोती था, एक मिडिल क्लास फैमिली में एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा होने के बाद उस फैमिली की वाताहत कैसे होती है, उस फैमिली की जिसको हम मराठी में वाट कैसे लग जाती है और उसके ऊपर क्या सोल्यूशन है, इस तरीके का विषय था
1: जी।
0: जाने मन का बिल्कुल किन्नरों के जीवन पे विषय था उसका, लड़ी नजरिया पे डेमोक्रेसी की कैसी हम लोगों ने बारा बजा दिए हैं उस कॉन्सेप्ट के और हम अपनी तरीके की डेमोक्रेसी कैसे लाद रहे हैं, ये विषय था। तो जितने भी विषय हैं ती फुलरानी तक रणांगण एक ऐसा विषय था कि ये भारतीय आदमी जीतता क्यों नहीं है, क्या ऐसे उसमें खून में संस्कार में उसके जीवन में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा वो विष घोला है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कोऑपरेट ही नहीं करता, ये बेदिली है, ये धोखा देना है, ये भारतीय स्वभाव में कैसे, और उसके बाद ज्यादा तो मराठी में कैसे है, पानीपत का थर्ड वॉर हम हारे क्या जीते, इसको लेकर वो सारा का सारा असेसमेंट था भारतीय मन का, भारतीय स्वभाव का, बिल्कुल बहुत तटस्थता से किया हुआ और जो नाटक बहुत अंतर्मुख करता था
1: जी,
0: और जिसके 700-750 शो, मतलब दैट वाज सपोज टू बी फर्स्ट 70 mm प्ले ऑन मराठी स्टेज,
1: बिल्कुल,
0: जिसमें भानु अथैया गांधी फिल्म के लिए जिनको ऑस्कर मिला था उन्होंने जीवन में पहली बार नाटक के लिए कॉस्ट्यूम किए,
1: वाह,
0: मंगेश पाड़गांवकर जी ने गाने लिखे,
1: क्या बात है,
0: ये ऐसे ऐसे दिग्गज, पहले कुसुमाग्रज गाने लिखने वाले थे पर उनकी तबीयत ठीक नहीं रही, फिर उसके बाद फिर हमने मंगेश पाड़गांवकर जी से गाने लिखवाए, अनंत अम्मेम्बल ने उसमें म्यूजिक किया, ये सारा का सारा मुझे लगता है कि वो भी एक अलग किस्म का विषय था। तो लेट्स पीढ़ी दर पीढ़ी हम ये कह रहे कि हमारे पास जीतने का जज्बा क्यों नहीं है, जीतने के बाद भी हमारे आसपास क्या है कि दिल्ली मराठों ने जीतने के बाद भी उस समय मराठों को दिल्ली के गद्दे पे नहीं बिठाया, हमारे नेता ने क्या थी उसके पीछे की सोच, क्योंकि उससे पहले ही हमारे कारोबारियों ने दिल्ली पंजाब के राज्यों को भेज दी थी
1: जी।
0: तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर कुरघोड़ी करने का स्वभाव है, एक तरीके से धोखा देने का स्वभाव है, कभी भी कोई भी आदमी एक दूसरे से बेदिली करने का स्वभाव जो है, इसको उस नाटक में क्या कहते हसीये पे रखा था और वो एक नाटक लोगों को लगा था पानीपत थर्ड यू आर जैसे हार गए वैसे ये नाटक भी बहुत जोर से गिरेगा, उसकी आवाज सुनने के लिए सारे कान बेताब थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस नाटक ने जो खौफ है मराठी मानस में, कुछ भी हुआ तो पानीपत हुआ बोलते हैं हम उसका, डिजास्टरस एक्सपीरियंस इज पानीपत, तो उस पानीपत शब्द से हमने उस नाटक ने लोगों को बाहर निकालने का काम किया। पानीपत वॉज नॉट डिजास्टर बट इट वॉज द बिगेस्ट वॉरफेयर

0: प्लेड बाय मराठास हेल्प ऑफ अदर पीपल इन इंडिया, और जिसमें मुसलमान भी थे
1: जी।
0: तो ये भूमि पे प्यार करने वाले लोगों का जो एक गट्ठा था, वो मरते दम तक एक दूसरे के लिए लड़ते रहे, मरते रहे, उसकी कहानी थी ये रणांगण।
1: क्या बात है। और फिर ती फूलरानी आया,
0: उसके बाद ती फूलरानी आया, उसके बाद ये मध्यम व्यय आयोग किया। जब एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स का पहला प्रोडक्शन कौन सा किया जाए, तो हमने कहा चलो परंपरा से शुरू किया जाए। कालिदास भास ये पहला नाटककार माना जाता है, तो हमने उनके मध्यम व्यय आयोग से शुरू किया। उसमें भी मुझे हिडम्बा है वो मुझे दिखाई दी। मैं क्योंकि केरल में रहा था, द्रविड़ में मातृसत्ता कुटुंब पद्धति है और आर्य में पितृसत्ता है, तो उनकी जो प्रेम की कहानी है भीम की और हिडम्बा की और उनका बेटा जो घटोत्कच है, मुझे लगा कि जो औरत हमारे स्वार्थ से परे हैं, स्वार्थ के अड़े आती हैं, जो भी है, हम किसी को डेरोगेटिव टर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको हम हिडम्बा बोल देते हैं। अरे यार उसके हिडम्बा के क्या चक्कर में आता है, मतलब देखने में वो खूबसूरत भी हो तो जो हमारे स्वार्थ के अड़े आता है उसका कैरेक्टर असैसिनेट करने का हमारा पुराना स्वभाव है।
1: जी जी जी,
0: उस स्वभाव को पकड़कर वो नाटक बनाया हुआ है। और फिर आर्य और अनार्य के बीच की जो राजनीति है वो जेंडर बेस्ड भी है, वो क्लास बेस्ड भी है, वो हर तरीके की राजनीति है। और वो जब सवाल पूछती है भीम को, और बेटा सवाल पूछता है कि आप कहाँ गए थे, बच्चा पैदा होने से लेकर बच्चा बड़ा होने तक, वॉरियर होने तक वो वापस आके देखा नहीं उन्होंने, उसके बारे में जो सवाल पूछती है, बोलती है कि अगर होती मैं आर्य स्त्री तो क्या होता आपका यही उत्तर।
1: वाह,
0: तब तो राजदरबार बैठते, तब तो तहकीकात होती, चर्चाएं होती, न्याय मंडली बैठती, न्याय होता। चूंकि मैं आर्य नहीं हूं इसलिए आपको लगा कि यू कैन इग्नोर मी।
1: ओहो,
0: तो इस तरीके के मुझे लगता है बहुत बुनियादी जो सवाल है हमारे ही समाज के विसंगति के, वो कहीं ना कहीं मेरे नाटक उठाते हैं। और वो केवल कोई सेंसेशन क्रिएट करने के लिए नहीं उठाते हैं, मुझे लगता है वो अंतर्मुख करने के लिए उठाते हैं। क्योंकि नाटक का मूल जो स्वभाव है वो किसके लिए नाटक करना है
1: जी।
0: नाटक केवल लोगों को हा हा हू हू करके जाओ घर में,
1: केवल मनोरंजन,
0: केवल मनोरंजन के लिए नाटक नहीं। मनोरंजन तो रुलाना भी है, नौ रसों में से कोई ना कोई एक रस ऑडियंस के मन में पैदा करना नाटक का मूल रस है, मूल स्वभाव है, मूल चिंतन है, मूल भाव है। हम ये कहते हैं कि नाटक इसीलिए करते हैं ताकि हम समाज को उसका आईना दिखाए।
1: बिल्कुल,
0: उसमें विसंगतियां क्या है, संगतियां क्या है, अच्छा क्या है, अच्छा क्या नहीं है, वो आईना दिखा के हम समाज में एक अच्छा समाज कैसे हो, कल्याणकारी समाज कैसे हो, ये करने के लिए, एक आशावादी दृष्टिकोण देने के लिए नाटक होता है। वो हमेशा ऐसा नहीं है कि व्यवस्था के खिलाफ कोई विद्रोह बार बार दिखाने के लिए नहीं है
1: जी,
0: पर वो विसंगतियां हैं, जो विरोधाभास है वो सारा तो दिखाना नाटक का काम है ना। सिनेमा नहीं करेगा, नाटक नहीं करेगा, साहित्य नहीं करेगा, पेंटिंग नहीं करेगी तो कौन करेगा।
1: बिल्कुल, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: समाज को समृद्ध भी करना है, संवेदनशील भी करना है, और आगे अच्छा समाज बनाने के लिए सोच के लेवल पर अग्रेसर भी बनाना है, इसके लिए ये मुझे लगता है कला दालन है।
1: बिल्कुल,
0: ये संस्कृति का दालन यही है कि वो आपको एनरिच करता है
1: जी,
0: एक आपके दायरे का विस्तार करता है, सोच का विस्तार करता है, आपकी दिमाग में जो दीवारें आपने बनाई है उसको ढाने का काम करता है, क्योंकि आखिरी इंसान और आप दोनों एक ही है, क्योंकि आप एक भूमि के हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप एक हैं क्योंकि नैसर्गिक अधिकार आपको दोनों को एक ही दिया है, और जिसका नाम है शांति से जीना। मुझे लगता है वो नाटक का मूल पर्पस है। अब वो पर्पस हम किस एंगल से दिखाएं वो आपका तरीका है। अगर हम बीरबल की एंगल से दिखाएं तो बीरबल वही करता था जो अकबर को विसंगतियों का, विरोधाभास का वो आईना ही तो दिखाता था। वो भी नाटक ना करे तो कौन करेगा, वो भी सिनेमा ना करेगा तो कौन करेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी व्यवस्था में नाटक का रोल यही होता है, व्यवस्था को अपना मन खुला होकर। इसीलिए एक कहावत है ना कि एक ऐसा कहते हैं कि अगर किसी भी समाज को आपको समझना है, मान लीजिए आप यूरोप गए या किसी भी समाज में, कोई भी देश में चले गए, आपको उस समाज को फास्ट समझना है तो आप जाके उसके 5-6 नाटक देख लीजिए।
1: क्या बात है,
0: उस समाज का आकलन उस 5-6-7-8 नाटकों में से जो आपको जितने जल्दी मिलेगा उतना एक साल भर रहने से नहीं मिलेगा। क्योंकि वो आईना दिखाता है। अगर ये सच्चाई है तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये निराशावाद है, ये तुलनात्मक फैसिलिटी का कम आंकना है एक दूसरे को, ये जो दीवारें खड़ी करना है इंसान इंसान में, वो चाहे धर्म की है, जाति की है, परंपरा की है, वर्ण की है, वर्ग की है, कुल की है, परिवार की है, इससे क्या बनने वाला है
1: जी?
0: इससे कुछ नहीं बनने वाला। अगर हमें एक स्ट्रेंथफुल देश बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हमें सारे समाज की सारी क्षमताओं को साथ लेकर इस देश का जब विकास करेंगे तो हमें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप हमें विश्व गुरु बनाइए
1: जी। एनसीपीए में एक रिकॉर्ड आपने कायम किया था, एक ही दिन में 3 अलग अलग भाषाओं के नाटक
0: जी। ये मध्यम व्यायोग नाटक जो था, इसको मैंने हमारे एकेडमी के विद्यार्थियों के लिए एज अ डेमो ऑफ क्लासिकल इंडियन थिएटर किया था। उसके बाद एक 10-12 शो के बाद वो खत्म हो गया और मैं भूल गया उस नाटक को। ये 2004 में किया था, 5 साल में वो बैच निकल गई, उसके बाद भूल गए। कुछ सालों बाद जैसे मैंने कहा कि भास ने जो लिखे हुए नाटक में जो अधूरे छोड़े हुए थ्रेड्स है उसका कहीं ना कहीं मुझे हंट आउट करने लगे। बेटा भी पूछ रहा है और माता भी पूछ रही हिडम्बा भीम जी को, वो सारे सवाल बाद में दिखाई देने लगे। और मैंने कहा कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग नाटक हो सकता है, इसका नया संस्करण तैयार करना पड़ेगा। ये रंगावृति नहीं तैयार करनी पड़ेगी, जहां भास रुके हैं उसके आगे भी तो हम नाटक को ले जा सकते हैं। इसको लेके हमने वो नाटक करने की बात सोची, पहले मराठी में करते हैं, फिर करते करते पता चला हम हिंदी में क्यों ना करें इसको।
1: क्या बात है,
0: तो हमने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके उसकी शुरुआत की। फिर ऐसा लगा कि यार ये हिंदी मराठी तो ठीक है, लेकिन जो कुछ मराठी या हिंदी भाषी लोग है जिसको जब तक आप अंग्रेजी में कुछ नहीं करते तब तक वो आपको समझना नहीं चाहते, अपनी संस्कृति को समझना नहीं चाहते, उनके लिए हम अंग्रेजी क्यों ना करें।
1: अब 3 भाषाएं हो गई,
0: अब 3 भाषाएं हो गई।

0: तीन भाषाओं में हमको लगा कि एक ही टीम के साथ करें, नहीं तो बड़ी सर्कस हो जाती। तो इसीलिए सारे मराठी स्पीकिंग एक्टर्स है मूलतः, उसी को हिंदी भी सिखाई, उसमें से बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी आती थी, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आती थी, तो वो अंग्रेजी भी हमारी इंडियन इंग्लिश है। तो ये सारे तीनों भाषाओं में 3 जुलाई 2011 को एनसीपीए के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में इस नाटक को लेके हमने सोचा कि इसका शुभारंभ करेंगे
1: जी,
0: और तीनों नाटक एक ही दिन में ओपन करेंगे, एक ही टीम, एक ही डेट, एक ही थिएटर।
1: वाह।
0: तो हमने दोपहर 2 बजे मराठी में नाटक ओपन किया, वही नाटक प्रिया बावरी, उसके 3 अलग अलग नाम जानबूझ के रखे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता कि मराठी कौन सा है, हिंदी कौन सा है। दोपहर 4:30 बजे हमने वही से नाटक किया मोहे पिया हिंदी में, और शाम को 7 बजे वही नाटक किया हमने ओ माई लव इस नाम से, वही नाटक तीनों भाषाओं में, सेम फॉर्म, सेम कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग इज सेम, भाषा अलग है, गाने अलग है, सब अलग है।
1: गजब।
0: और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया, और आज तक वो विश्व रिकॉर्ड ऐसे ही है, अभी तक किसी ने तोड़ने की कोशिश नहीं की उसको, तो हम ही शायद तोड़ने की कोशिश करेंगे कि इसको और एक भाषा में, गुजराती में करके 4 भाषाओं में एक ही दिन में कर लेंगे। तो इसको लेकर ऐसा काम हो गया, और वो नाटक ने पूरे देश में गजब ढा दिया
1: जी।
0: मराठी में हमने 150-200 शो किए, हिंदी में अभी भी वो चल रहा है मोहे पिया, अभी 300 शो होने को आए हैं अलग से हिंदी में
1: जी,
0: वो कभी हम सेलिब्रेट करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। अंग्रेजी के भी हमने 70-75 शो किए, तो हम ये 15 दिन की नोटिस पे हम किसी भी भाषा में ये नाटक कर सकते हैं।
1: क्या कमाल है।
0: हाँ, तो अभी बहुत सारे भारत भवन में भी, दिल्ली में भी संगीत नाटक अकादमी है या और कोई है, वो चाह रहे कि ये इस तरीके का एक प्रयोग हम दिल्ली में भी करें या और शहरों में भी करें, इस तरीके के आमंत्रण न्योते आ रहे हैं, अब हम उसके ऊपर भी सोच रहे हैं।
1: एक और कमाल है आपका, NSD के दोनों अवार्ड आपको मिले।
0: जैसे एक संगीत, क्योंकि हमारे देश में एक ही अवार्ड था जो संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिलने के बाद एक आपका रुतबा माना जाता था, कि आपके योगदान को माना जाता था। मैं ये अनुपम खेर जी चेयरमैन थे, तब उन्होंने मुझे सोसाइटी का मेंबर बनाया। उसी समय हमने ये कहा कि भाई पूरे देश को, संगीत नाटक अकादमी तो पूरे देश को लेकर काम करती है, अब उसमें ज्यादातर अलग अलग भाषाओं में NSD के लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत है, पर अवार्ड देते समय ये तो ध्यान में रखा जाएगा कि भाई हर साल NSD Alumni को तो वहाँ अवार्ड नहीं दिया जाएगा ना
1: जी,
0: दूसरे भी भाषाओं के लोग है, और भी लोग है जिन्होंने भारतीय थिएटर को जिंदा रखा है, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतना ही स्वाभिमान पूर्वक है। तो हमें ये काम करना चाहिए, हमें 2 अवार्ड स्टार्ट करने चाहिए, नहीं तो बूढ़ा होने तक, जब तक उसको 2 आदमी उठा के पकड़ के ले जाते, तब उसके बाद अवार्ड दे के उसका इंस्पिरेशन क्या है
1: जी।
0: तो हमने एक सुझाव दिया था कि भाई ऐसे 2 अवार्ड, एक 50 साल के ऊपर जो रंगकर्मी ने आउटस्टैंडिंग काम किया है NSD के Alumni ने, उसको एक अवार्ड दिया जाए, और 50 के नीचे जो भी नया हो 20-25 साल से लेके, उस रेंज में एक अवार्ड दिया जाए, ताकि NSD जब Alumni को अवार्ड देगी तो वो भी राष्ट्रीय पुरस्कार है
1: जी।
0: तो हम NSD के Alumni को ही इंस्पायर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर करते रहें, काम करते रहें। तो फिर वो सोसाइटी ने मंजूर कर लिया, और एक युवा जो आवास पुरस्कार था उसको मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार के हैसियत से उसका नाम दिया, और जो दूसरा था जो सीनियर को मिल रहा है वो BV कारंत स्मृति पुरस्कार
1: जी,
0: और हम भूल गए वो सोसाइटी में, फिर उन्होंने कोई कमेटी वगैरह बिठा दी, और पहला ही जो पुरस्कार डिक्लेयर किया कि जो सीनियर कैटेगरी में पुरस्कार जो दिया गया BV कारंत पुरस्कार, वो रतन थियाम जी को दिया गया,
1: आपके और गुरु,
0: हाँ हमारे गुरु मतलब
1: जी।
0: और दूसरा जो पुरस्कार युवा रंगकर्मी का पुरस्कार, तो वो अमन केंद्रे को दिया गया,
1: क्या बात है,
0: तब तक के लिए योगदान के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहा, और जब मैं NSD छोड़ने के बाद, मतलब मेरा टर्म खत्म होने के बाद, 2-3 साल वो अवार्ड दे नहीं पाए थे कई कारणों की वजह से, उसके बाद 2-4 साल नहीं दे पाए थे, तो फिर हमारे बाद के बाद के डायरेक्टर ने वो सारे पुरस्कार की घोषणाएं की, समिति गठित करके, तो उसमें से जो दूसरा पुरस्कार जो मिलता है,
1: सीनियर वाला,
0: वो मैं पहला Alumni हूं कि दोनों भी पुरस्कार, पहला तो स्मृति मिला ही था मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार, और ये BV कारंत स्मृति पुरस्कार भी मुझे दिया गया, एंड ये भी एक रिकॉर्ड हो गया कि भाई ये दोनों पुरस्कार पाने वाला पहला

0: लेकिन एक रिकॉर्ड और भी तो है कि वहीं पढ़ के वहीं के डायरेक्टर भी बने
1: जी,
0: और एक तूफानी कार्यकाल आपने किया जिसमें बहुत वाइब्रेंट काम वहाँ।
1: यस, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पहले भी कई सारे, मतलब जब विवेकानंद भी वहीं पढ़े थे वो डायरेक्टर हुए थे, ही वाज फर्स्ट एग्जांपल
0: जी।
1: उसके बाद बीएम शाह तो एनएसडी में नहीं पढ़े थे, लेकिन रतन थियाम हो गए, पर उन्होंने अपना डायरेक्टर का कार्यकाल पूरा नहीं किया, पर हुए वो भी। मोहन महर्षि हुए, पर उनके कार्यकाल छोटे छोटे रहे, मोहन महर्षि 2 साल के लिए रहे। उसके बाद कीर्ति जैन रही, उसके बाद अंकुर जी रहे
0: जी।
1: तो ये सारे जो थे वो वहीं पढ़े और वहीं डायरेक्टर हो गए। पर महाराष्ट्र का ये पहला रंगकर्मी था जिसको सम्मान पूर्वक वहां पर विद्यार्थी के हैसियत से नहीं, पर बाहर के कंट्रीब्यूशन के हैसियत से आमंत्रित किया गया एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो वहां पढ़ा था और उसके बाद डायरेक्टर बना, कि महाराष्ट्र के इतिहास में ये तो दर्ज हो ही जाएगा, पर वहां के इतिहास में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया उसमें से थोड़ा बहुत नाम तो ले ही लेंगे लोग, ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए भी वो कार्यकाल वाइब्रेंट रहा ऐसा लोग अब कह रहे हैं। तब तो क्या होता है कि कोई भी कार्यकाल का महत्व योगदान रजिस्टर होने के लिए बीच में काल जाना चाहिए होता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। तो अब लोग कह रहे हैं कि दैट वाज वन ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वो इतना ही था कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करने गया था, जितना संभव है 24 घंटे से 36 घंटा कैसे हो सकता है, ये कोशिश करके मुझे लगता है कि वहाँ की खूबसूरती, मतलब कैंपस की खूबसूरती, कैंपस का आर्टिस्टिक होना, एकेडमिक जो हमारी गतिविधियाँ हैं उसको पुख्ता करना।

0: भी विद्यार्थियों की समस्याएं हैं उसको पहले सुनना, क्योंकि अल्टीमेटली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बाकी चीज़ों के लिए नहीं, पहले विद्यार्थियों के लिए बनी हुई है
1: जी,
0: वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसमें क्या क्या मैं था तब उस समय में कौन सा माहौल था, फिर क्या खामियाँ थी, क्योंकि मैं यहाँ मुंबई विश्वविद्यालय में 10 साल अकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स खड़ा कर चुका था, तो यहाँ क्या प्लस पॉइंट्स है, वो सारे उसमें ढालते ढालते ढालते ढालते एक बहुत स्ट्रांग एकेडमिक स्ट्रेंथ वाले विद्यार्थी पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को एक्टिंग में काम मिले, जो एक्टर्स है डायरेक्शन में, डायरेक्टर को स्पेशलाइजेशन 3 कर दिए, 2 ही थे, एक एक्टिंग था और डिजाइन एंड स्टेज टेक्निक्स था, तो इसमें से डायरेक्शन हटाता था वो डिजाइनर को ही डायरेक्ट करने के लिए बोल देते थे, तो मैंने कहा ये उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है ना, डायरेक्टर एक सेपरेट टेम्परामेंट है, वो अलग स्वभाव है, डिजाइनर एक अलग स्वभाव है, एक्टर एक अलग स्वभाव है, तो सिलेक्शन से ही फिर हमने वो सारा माहौल बदलने की कोशिश की और तीनों स्पेशलाइजेशन वापस शुरुआत करके, तो एक ही साथ एक बैच के साथ दो दो नाटक करने से एक्टर को काम मिलना शुरू हो गया, और जो एक्टर भी और डायरेक्टर भी, तो दोनों को भी ये कॉन्फिडेंस मिलना, और डिजाइनर कॉमन होते थे, उनको तो दो दो प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिलता था, फिर उनको अपना डिप्लोमा प्रोडक्शन तो करना ही करना है, तो इस तरीके से मुझे लगा कि एकेडमिक माहौल बहुत स्ट्रांग बन गया, फैकल्टी जितनी संभव था देश की और दुनिया की लाने की कोशिश की गई, तो ये सारा है। उसके साथ साथ उसका विस्तार किया, जो लोग कहते थे कि वो नेशनल नहीं बचा है, उसका थोड़ा सा स्वभाव दिल्ली के आसपास का बना है, तो हमने कहा ऐसा नहीं है, हम उसको डिसेंट्रलाइज कर लेते हैं, मतलब एकेडमिक एक्टिविटी तो रहेगी लेकिन उसका विस्तार हो। मतलब मेरे दिमाग में ये था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा केवल एल्यूमिनाई को ये ना लगे कि ये हमारी संस्था है, पर जो भी थिएटर कर रहा है, वो चाहे अमेटर थिएटर कर रहा है, चाहे प्रोफेशनल कर रहा है, चाहे पैरेलल कर रहा है, चाहे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चाहे मूवमेंट की हैसियत से थिएटर कर रहा है, चाहे चिल्ड्रन थिएटर कर रहा है, कोई भी किस्म का थिएटर कर रहा है, फार्मर का कर रहा है, कामगारों का कर रहा है, वो हर किसी को कोने में खड़े हुए किसी खेत में थिएटर करने वाले आदमी को ये लगना चाहिए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरी है,
1: वाह,
0: और मैं वहां जा सकता हूं, या वो मुझ तक पहुंच सकती है और मुझे लाभ दिला सकती है, वो ट्रेनिंग के लेवल पर हो, फेस्टिवल के लेवल पर हो, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शंस इन फेस्टिवल्स यहां से हो, क्वालिटी इज द ओनली क्राइटेरिया।
1: यस,
0: मैं हमेशा ये कहता था, भारत रंग महोत्सव हो या कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे जश्ने बचपन हो, बाल संग हो, कोई भी हो, या हमारे आदि क्या कहते हैं ये क्लासिकल थिएटर का फेस्टिवल हमने शुरू किया, नॉर्थ ईस्ट में अलग फेस्टिवल शुरू किए, इस सब में एक ही था, क्वालिटी इज इन सेंटर। मैं ये कहता था भारंगम में कि अगर कल को मेरे पिताजी का नाटक आता है और यहाँ कंसीडर करने के लायक नहीं है तो उस डीवीडी को फेंक दो और तोड़ दो, कोई पर्सनैलिटी नहीं, कोई मेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं, कोई किसी का नहीं है, जो थिएटर क्वालिटी का काम करता है वो हम सबका है।
1: क्या बात है?
0: और उसको ही सेंटर में रख के कोशिश यही की गई कि 5 साल उस एनएसडी का जो क्वालिटेटिव माहौल है उसको भी एनहांस करने की कोशिश की गई, बहुत विनम्रता के साथ ये सब कह रहा हूं। दूसरा मुझे लगा कि जो विस्तार होना चाहिए था उसका, जैसे बंगलोर में हमारा एक सेंटर था पर वो रिसोर्स सेंटर बन के रह गया, तो हमने कहा ये तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उसको कन्वर्ट किया 1 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम में और वहां बच्चों को स्कॉलरशिप देके अब वहां 20 बच्चे हर साल पढ़ते हैं। जो एक सेंटर नया क्लासिकल थिएटर में जो हमारी धारणा थी कि एक संस्कृत शैली का थिएटर जो करना चाहता है, सीखना चाहता है, कहीं और से थिएटर सीख के आया और उसको स्पेशलाइजेशन करना है, उसके लिए मौका ढूंढना चाहिए, रखना चाहिए, इसलिए वाराणसी में 1 साल का कोर्स शुरू किया, सेंटर शुरू किया, और वो क्लासिकल इंडियन ड्रामा सीखने के लिए
1: जी।
0: जो सिक्किम का सेंटर था वो 1 साल का था, हमने कहा इसको 2 साल करिए, फिर उसको 2 साल करने का सारा जो कुछ था उसको करने की कोशिश की। एक त्रिपुरा में था, वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए था, तो हमने कहा नहीं है, वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग जो थिएटर एजुकेशन में निर्माण करना इतना ही उसका काम नहीं है, आर्टिस्ट निर्माण करना भी उसका काम होना चाहिए, थिएटर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, प्रैक्टिशनर भी निर्माण करे और हम टीचर भी निर्माण करे, इसी के लिए वो सेंटर, और दोनों सेंटर नॉर्थ ईस्ट कन्फाइंड हो कि वहां के लोगों के लिए बनाए, तो उसका

0: ज्यादा से ज्यादा फायदा उस 7 और 8 स्टेट को होना चाहिए। तो इस तरीके से मुंबई सेंटर का जो लेआउट था वो पूरा सैंक्शन करके रखा था। जम्मू कश्मीर में भी अभी अभी सेंटर खुल गया मेरे आने के बाद। तो ये सारी बहुत अच्छी चीजें वहां करने का मौका मिला। फिर थिएटर ओलंपिक्स एक सबसे बड़ी जो मतलब भारत रंग महोत्सव को तो हमने ये तो किया ही किया, पर एक दिन मुझे अचानक पता चला कि थिएटर ओलंपिक्स नाम की कोई एक चीज होती है। तो जब मैंने उसका इतिहास ढूंढने की कोशिश की तो जो पहले ओलंपिक होता था जो स्पोर्ट्स का है उसमें स्पोर्ट्स भी होता था, उसमें थिएटर भी होता था, म्यूजिक भी होता था, डांस भी होता था, विजुअल आर्ट्स भी होती थी, ये सब मिलके ओलंपिक होता था।
1: ओके
0: पर आगे चलकर स्पोर्ट्स वाले ने उस प्लेटफॉर्म को हाईजैक किया और ये सब पीछे छूट गए। फिर थिएटर के कुछ लोग इकट्ठा आ गए और उन्होंने कहा कि यार हम इसका हिस्सा थे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे हाथ से गया। तो कुछ विद्वानों ने थिएटर के रंगकर्मियों ने ये तय किया कि हम अपना थिएटर ओलंपिक्स क्यों ना शुरू करें। और फिर वो शुरू किया, पहला वो ग्रीस में हुआ और ये मुझे पता चला फिर बाद में तुर्की में हो गया, फिर कहीं जापान में हो गया, चाइना में हो गया, कनाडा में, यहाँ वहां हो गया और 8वां होना है ये मुझे पता चला। तो मैंने अपने सोसाइटी से कहा कि भाई ये ओलंपिक अगर हमें मिलता है तो हमको लेना चाहिए। फिर हमारी मिनिस्ट्री है जो केंद्र सरकार की, उनको कहा तो उनकी परमिशन ले ली और 8वां थिएटर ओलंपिक्स भारत में हो इसके लिए हमने कमिटी से रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा हमें आके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो हमने बुलाया उनको, आइए, न्योता दिया, वो आए, सब देख लिया, दिल्ली देखा, मुंबई देखा, ये 2-4 जगह देखा और उन्होंने कहा नहीं है, ओलंपिक होने लायक तो यहाँ है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और NSD कैन हैंडल इट, क्योंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल तो हैंडल करती ही है। तो फिर उन्होंने वो हमको मौका दिया और सौभाग्य की बात है कि 51 दिन का तो 8वां थिएटर ओलंपिक्स हो गया जो 17 राज्यों में हुआ, जम्मू कश्मीर से लेके त्रिवेंद्रम तक और इधर मणिपुर और गुवाहाटी से लेके आसाम से लेके इधर अहमदाबाद तक, मुंबई, बंगलोर, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, ये सारे उसके सेंटर थे। 17 सेंटर में 51 दिन में हमने 450 नाटक, 32 देशों का पार्टिसिपेशन, ये मेजर नाटक जो मेन थिएटर में किए उसी को यूथ से जोड़ने के लिए हमने 300 कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के 300 नाटक सेलेक्ट करके, मतलब उसमें भी 1100 नाटक आए थे, एक कमेटी ने 300 नाटक सेलेक्ट किए, वो 300 शो और फोक, ट्राइबल और स्ट्रीट प्लेयर्स जो है हमारे संस्कृति के आधार स्तंभ, वो कव्वाली से लेके सारा कुछ, तो उनके 600-650 शो।
1: तो ये तो कितने,
0: ये लगभग 1500 शो, 1500 शो हमने उसमें 51 दिन में किए और जिसमें 25-26 हजार आर्टिस्ट इन्वॉल्व हो गए देश के और दुनिया के।
1: तो बहुत भव्य,
0: बहुत हो गया। ये ऐसा माना गया कि ये भारत के इतिहास का नहीं, रंग जगत के इतिहास का नहीं, नाटक जगत के इतिहास का नहीं है, दुनिया के इतिहास का, नाटक जगत के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट किसी ने किया हो तो भारत देश ने किया और वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने किया।
1: वाह वाह,
0: ये मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट हुआ। और एक बहुत अच्छी बात है, जितने नाटक वाले थे हमने 125 डायरेक्टर को इनवाइट किया जिन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया जिस किसी भी भाषा में, उनको हमने हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक इनवाइट किया कि भाई आप अपना बेस्ट प्रोडक्शन लेके इसमें शामिल हो जाइए। अब 125 तो नहीं हो पाए लेकिन 105 इनवाइटेड डायरेक्टर ने उसमें नाटक किए।
1: वाह,
0: कॉम्पिटेटिव फेस्टिवल में हमने कहा था कि उसमें 1200 नाटक आ गए, उसमें से 200-250 नाटक चुन लिए गए और विदेशी नाटक 32 देशों के नाटक आ गए। तो ऐसा मिलाकर ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा इवेंट हो चुका है और इतना बड़ा क्वालिटेटिव थिएटर फेस्टिवल मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ। उसके बाद तो एक्टिविटी चलती रहती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए और सौभाग्य से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए, और उसका मैं डायरेक्टर था, ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: सिनेमा के आकर्षण से आप कैसे बचे रहे अपने पूरे जीवन काल में?
1: नहीं, मुझे मालूम था कि मुझे पहले अपनी स्पेस नाटक में पैदा करना जरूरी है, क्योंकि मेरी जगह है। मैं कहीं भी जाऊं, भूला भटका हो जाऊं, पर गिरने के बाद मुझे अपनी एक जगह चाहिए, वो पुख्ता जगह तैयार होना जरूरी था। पर वो क्या हो गया कि मैं एकेडमिक से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया पहले से ही।
0: जी जी,
1: एनएसडी हो गया, रिसर्च हो गया, आके एनसीपीएम में 10 साल, फिर वही एसोसिएट रह गया, रिश हो गया, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में 10 साल हो गया। जब भी मैंने थिएटर से फिल्म की तरफ जाने की कोशिश की, रंग देवता ने किसी न किसी बहाने मुझे वापस खींच लिया।
0: वहां नहीं जाना है,
1: वहां जाने नहीं दिया। मतलब ऐसी कोई परेशानियां या उस तरीके की अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी की कि आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं और ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करो। मतलब मैं जाने मन नाटक किया और रणांगण किया, दो बहुत मेजर प्लेस थे मेरे हिसाब से। एक ही साल के आसपास किए मैंने, और ये तय किया था कि आप 5 साल में नाटक नहीं करूंगा, तब भी ये नाटक चलते रहेंगे और नाम गूंजता रहेगा। तो अब मैं फिल्म करूंगा। तो कोई एक प्रोड्यूसर उस समय मुझसे बहुत बड़ा मेगा इवेंट करना चाह रहे थे फिल्म में, और मेगा कंटेंट पे वो बजट लेके बैठे हुए थे। तो उसी दरमियान डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर, जो वाइस चांसलर थे मुंबई विश्वविद्यालय के, बाद में प्लानिंग कमीशन के मेंबर हो गए, फिर राज्यसभा के मेंबर हो गए, तो उन्होंने एक कमेटी स्थापन की। उस कमेटी में मुझे भी लिया गया और बोले कि 35 साल से मैंने देखा हिस्ट्री मुंबई विश्वविद्यालय में, नाटक का विभाग हो इसके लिए इतनी कमेटियाँ हो गई, इतना हो गया, पर आज तक वो हो नहीं पाया। उसमें जब्बार पटेल थे, दामू केंकरे थे, मैं था, उसके बाद रघुवीर तड़ाशीलकर थे, जयंत पवार, ऐसे 7-8 लोग थे। उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई कमेटी बिमिटी, आपकी कमेटी है अंतिम है, अब आपको 4 महीने के अंदर मुझे ये विभाग शुरू करना।
0: अरे गजब,
1: आप जो जो चाहिए बताइए मुझे क्या चाहिए। तो पहले उन्होंने कहा एक सिलेबस दे दो, तो हमने कहीं यहाँ वहां से कटिंग पेस्टिंग करके एक सिलेबस दे दिया उनको, जो उन्होंने एकेडमी काउंसिल में पारित कर लिया, मैनेजमेंट काउंसिल में पारित कर लिया कि हमको ये डिपार्टमेंट खोलना है। 4th महीने में उन्होंने डिपार्टमेंट खोल दिया।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: वो 4 महीना मेरे पीछे पड़े रहे कि तुमको इसका हेड होना है। तो मैंने मना किया, मुझे तो जाना है, मैं तो सिनेमा करने वाला हूँ।
0: कोई मेगा प्रोजेक्ट है?
1: हाँ, मेगा प्रोजेक्ट है। और फिर उन्होंने जब्बार पटेल जी को, दामू केंकरे जी को, ये सारे हमारे दोस्तों को बोला कि नहीं, इसको राजी करो। तो फिर वो होते होते फिर सुशील कुमार शिंदे जी तक बात पहुंच गई, और एक दिन उनका भी फोन आ गया कि वैसे भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर अच्छा नहीं है मुंबई में, तो इसीलिए अगर वो सही आदमी के हाथ में नहीं जाएगा तो फिर ये आप लोग रोते रहोगे। तो वो जो कह रहे हैं मुणगेकर, उसकी बात मानो, और मैं आपको महाराष्ट्र की जनता की ओर से बोल रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि 1-2-3 साल दे दो, 2 दिन 3-3 घंटा 4 घंटा दे दो, बाकी अपना काम करते रहो। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है सर, एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है, तो आप, मैं आपको बता

0: देता हूँ 10 साल रात दिन काम करेंगे तभी खड़ा होगा। बोले जो भी है कर लो और इसको फाउंडेशन करके फिर बाद में छोड़ के जाओ। तो अब इतने सारे रंगकर्मी भी हैं, राजनेता भी हैं और मित्र भी हैं, ये सारे मेरे नाटक देखने वाले भी थे, तो सभी की ओर से चारों ओर से वो लगा कि आपको करना चाहिए। फिर हमने कहा कि चलो यार इसको 2 साल के बाद प्रोजेक्ट को करते हैं, वह 3 साल के बाद फिल्म को, तो वो स्वीकारना पड़ा। और एक बार वो स्वीकारने के बाद 2003 में मैंने उसको स्वीकारा, 13 कब आया मुझे समझ में नहीं आया।
1: जो दो तीन साल
0: दो

0: साल के बाद फिल्म को, तो वो स्वीकारना पड़ा। और एक बार वो स्वीकारने के बाद 2003 में मैंने उसको स्वीकारा, 13 कब आया मुझे समझ में नहीं आया।
1: जो दो तीन साल सोचा था
0: और रात दिन मैं सुबह 8:15 बजे पहुंचता था
1: जी,
0: रात को 12 बजे घर पहुंचता था।
1: अरे बाप रे।
0: पर चूंकि वो उतनी इन्वॉल्वमेंट से किया, इसलिए एक नेशनल लेवल का 10 साल में एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, और जहां पर लोग पढ़ने के लिए ज्यादा पसंद करते थे बजाय के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाएं। तो जो सारा का सारा फ्लो था वो वहां से मुंबई की तरफ मुड़ गया, क्योंकि अल्टीमेटली मुंबई में जाना है सबको, मतलब ज्यादातर लोगों को, अपवाद तो बहुत है। तो फिर 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी मिल रही है
1: जी जी,
0: तो ये भी जिसको एकेडमिक्स में जाना है उसके लिए ये भी और एक शॉर्टकट हो गया। और वो सारे लोगों को हम बुलाते थे जो बाहर जाके जिनके साथ इनको काम करना है, चाहे वो फिरोज अब्बास खान है, चाहे दिनेश ठाकुर है, चाहे रमेश तलवार है, एम एस सत्यू साहब है, जब्बार पटेल है, डॉक्टर लागू है, नीलू फुले जी हैं, विजया मेहता जी है, जितने भी मराठी हिंदी अंग्रेजी और परेश रावल जी है, नसीरुद्दीन शाह है, मैं ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं हमने जिनको बुलाया नहीं। तो एक तरीके का वो अड्डा बनते बनते वो एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, वो भी एक अपने आप में एक यूनिक, यूनिवर्सिटी के पूरे प्रेशर में सेटअप में वो खड़ा करना भी अपने आप में एक चैलेंज था, बट आई एंजॉयड दैट आल्सो। और एक बहुत अच्छे एक से एक बेहतर प्रोडक्शन भी हो गए, ये मध्यम व्यय तो उसी के लिए किया था
1: जी।
0: फिर ईडीपस किया 2 मंजिला सेट लगा के, मेरे बाद और भी डायरेक्टर्स ने भी काम किया, विजय केंकरे ने किया, चंद्रकांत कुलकर्णी ने आके काम किया, पुरुषोत्तम बेर्डे ने किया, रंजीत कपूर ने आके काम किया, अंकुर जी ने आके काम किया, इतने सारे। और ये पहला विभाग है पूरे देश में यूनिवर्सिटी के मर्यादा में कि पहले साल हमने अपना नेशनल फेस्टिवल शुरू किया।
1: वाह वाह वाह।
0: राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव
1: जी,
0: इसमें ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है कि जिसको हमने इनवाइट नहीं किया, पूरे हर एक, रतन थियाम मणिपुर से 2 बार आ गए, बंसी कौल आ गए, उसके बाद रैना साहब आ गए, उसके बाद रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आ गए, मतलब कोई भी, साउथ का बी जयश्री आ गई, अहमदाबाद से फलाना आ गया, सौम्या जोशी आ गए, इतने सारे पुराने भी डायरेक्टर्स और नए भी डायरेक्टर्स सबको वहां लाया। ऐसे प्रोडक्शन हम चुन चुन के लाते थे कि जो अदरवाइज मुंबई में देखने सुनने को मिलेंगे नहीं, तो वो लंबी लाइन में खड़े होके लोग अंदर जाते थे और वो माहौल भी देखा हमने, और सारा का सारा विद्यार्थी ऑर्गेनाइज करते थे, हम सिर्फ उसके पीछे खड़े रहते थे।
1: वाह वाह।
0: कि अंत में अगले जनरेशन के रिस्पॉन्सिबल लोग बनाने का काम वो यज्ञ जैसा हो रहा था, तो वो भी एक अपने आप में मुझे लगता है कि मिसाल है, जो माहौल दिल्ली में मैं ले गया वो यही बनाया हुआ था
1: जी।
0: क्या करने से बच्चे के जीवन में परिवर्तन होता है, वो सारा का सारा वहां तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें एड ऑन क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कम पड़ा था, क्या ज्यादा था, तो मुझे लगता है कि वो सारा जो एकेडमिक्स है उससे मेरी कहीं दोस्ती नहीं टूटी, जो प्रैक्टिसेस है उसमें मेरी कोई दोस्ती नहीं टूटी, तीसरा है मेरा रिसर्च का स्वभाव अभी तक वैसा ही है, चौथा है दुनिया भर का जो हो रहा है उसका कॉग्निजेंस रखना कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी एक अपने आप में दिलचस्प बातें थी। मुंबई में जो जो भी आता था, जो किसी भी देश से आए, वो एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में आए बिना जा नहीं सकता था
1: जी जी।
0: ऐसा कुछ हमने, चाहे ब्रिटिश काउंसिल हो, चाहे अमेरिकन सेंटर हो, चाहे जर्मन सेंटर हो, रशियन सेंटर हो, छोटे से छोटे देश का कोई भी रंगकर्मी आता था वो मुझे पता चलता था, क्योंकि वो नेटवर्क था, दोस्ती थी इन लोगों से, जो दिल्ली में भी बहुत काम आया मुझे बाद में आगे चल के। तो इसकी वजह से ये भी खड़ा हो गया, और अभी तक मैं जब तक था मुझे लगता है 8 बार राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव हुआ, 8 या 9 बार
1: जी।
0: तो उसमें भी हमारे बच्चों को दुनिया भर का बेहतर नाटक देखने को मिलता था, कोई नॉर्वे से आ रहा है, एक कोई आदिवासी ग्रुप थिएटर लेके उसका परफॉर्मेंस हम वहां करते थे।
1: वाह वाह।
0: मतलब ऐसा नहीं है कोई से भी कोई भी आए और हमको पता चले कि हम उसको हाथ जोड़ के पकड़ के लाते थे, और जितना भी संभव है हमारी अपनी इसमें सुविधा देना उतना करते थे, क्योंकि एक क्लोज थिएटर कुसुमाग्रज जो भाषा सभागृह है वो हमारे हाथ में था, और एक ओपन एयर थिएटर हमने हमारे लिए हमारे इंजीनियर से कंस्ट्रक्ट करवा लिया था, उससे बेहतर थिएटर तो आज इस देश में कहीं नहीं है। ओपन एयर थिएटर में जाइए, माहौल है कि यहाँ बैठे बैठे आप करियों का आस्वाद ले सकते हो।
1: सही है, सही है। तो सिनेमा के जो आपके सपने, आपकी धारा को,
0: तो इसीलिए

0: ये सिनेमा मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि मैं सिनेमा नहीं करूंगा, मुझे लगा था कि यहाँ पर एक स्पेस बननी चाहिए, आपकी जगह बननी चाहिए, और ये मेरा स्वभाव नहीं कि इसको छोड़ के उसको पकड़ो और उसको पकड़ के उसको ताड़ो। मुझे लगा कि ये जहां काम करना है, जहां आनंद आ रहा है, और हर बार आप अपनी डिस्कवरी कुछ कर रहे हो। मतलब अभी तक मैं कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं किया कि मैं अपने आप को रिपीट कर पाऊं, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी कुछ नया नाटक करना चाहिए।
1: जी जी,
0: सिनेमा का भी सपने आते हैं कि भाई मुझे ऐसा सिनेमा करना है कि जैसे पहले नाटक ने देश को हिला दिया, वैसे मैं कम से कम पहले फिल्म में दुनिया को हिला दूं। ऐसा कोई कंटेंट मैं ढूंढ रहा हूं, ऐसा कोई कहने का तरीका ढूंढ रहा हूं, ताकि वो माध्यम में जाने के बाद लोगों को ये ना बुलाए मेरा कुछ देखो।
1: जी जी जी,
0: वो अपने आप इतना बोलना चाहिए कि यार आई शुड गो एंड सी दैट फिल्म।
1: तब तक इस धारा को ऋत्विक आगे बढ़ा रहे हैं।
0: ऋत्विक के 2 या 3 सिनेमा आ गए हैं, और तीसरा ही पिछले हफ्ते में उसके सिनेमा का फिल्म फेस्टिवल में एक स्क्रीनिंग हुआ है।
1: जी जी,
0: उसके पहले उसका ड्राई डे एक सिनेमा रिलीज हो गया है। अभी रिसेंटली एक बहुत इम्पोर्टेंट सिनेमा है जो उतना अंडरलाइन होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया, पर आगे चलकर होगा, सरगम नाम का सिनेमा है और बहुत यूनिक स्टोरी पे बनाया है। और उसका खासियत यह है कि गिरीश कारनाड जी का आखिरी सिनेमा है जिसमें गिरीश कारनाड जी ने स्वतः काम किया है।
1: जी,
0: और वो मराठी सिनेमा है और वो बहुत अच्छा रोल किया है गिरीश कारनाड जी ने, और ऋत्विक और गिरीश कारनाड जी आमने सामने हैं।
1: वाह वाह वाह,
0: ऋत्विक प्रमुख भूमिका में, नायक की भूमिका में है, और वो ऐसा लगता है खलनायक है लेकिन वो है ही नहीं।
1: जी,
0: तो ये सारा जो मुझे लग रहा है कि ये जो धरोहर है या ये जो थ्रेड्स है या जर्नी है वो तो आगे चलती रहेगी। ऋत्विक अपने तरीके से वो थिएटर भी कर रहा है और सिनेमा में भी काम कर रहा है, और भी कुछ वो करना चाह रहा है जो कभी बोलता है कभी नहीं बोलता है।
1: अच्छा क्या बात है,
0: ये तो चलते रहेगा सिलसिला, पर सिनेमा भी करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आई हैव रेजिस्टेंस अबाउट सिनेमा, आई एम वेरी हैप्पी विथ सम एक्सप्रेशंस। सिनेमा में भी लोग बहुत यूनिक काम कर रहे हैं और भारतीय सिनेमा भी कर रहे हैं
1: जी,
0: पर वो मेन स्ट्रीम में नहीं है।
1: जी,
0: मेन स्ट्रीम जो हमारा व्यावसायिक सिनेमा है उसमें बहुत रेयरली आपको लगता है कि यार ये ठीक है।
1: जी,
0: इसलिए मैं सेंसर बोर्ड का बोर्ड मेंबर भी हूँ, तो वो इसीलिए हूँ कि मैं सिनेमा देखते रहता हूँ बीच में,
1: हर तरह की सिनेमा,
0: हर तरह का सिनेमा देखते।
1: जी, वामन केंद्रे जी, आपकी तमाम अगली अभिव्यक्तियों का हमें इंतजार रहेगा, और इस लंबी बातचीत में बहुत आनंद आया। सबसे अच्छी बातचीत वो होती है जिनमें अगली बार की बातचीत की गुंजाइश बनी रहे।
0: जी जी जी,
1: मुझे लगता है इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूनुस जी और विविध भारती का मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इतना सारा गपशप करवाने के लिए।
1: बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू, धन्यवाद।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का 4th और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
3: उजाले उनकी यादों के।

नमस्कार नन्ही श्रोताओं, आज के फुलवारी कार्यक्रम में मैं आपकी रेडियो सखी पायल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, ये कार्यक्रम खास आपके लिए है, जहाँ हम बात करते हैं स्कूल,

घर व जीवन से जुड़ी बातों के बारे में। आज का विषय थोड़ा मजेदार भी है और महत्वपूर्ण भी। जरा सोचिए, एग्जाम का रिजल्ट आया है, किसी के 98% अंक आए हैं और उसी कक्षा में एक अन्य छात्र के 78% अंक आए हैं। 78% पाने वाला बच्चा भी मेहनती है, किताबें पढ़ता है, नई चीजें सीखने में रुचि रखता है। तो सवाल ये है कि क्या 98% मार्क्स लाने वाला छात्र 78% मार्क्स लाने वाले छात्र से ज्यादा बुद्धिमान है? क्या ज्यादा अंक का मतलब ज्यादा ज्ञान है? आइए कार्यक्रम की शुरुआत इसी बात पर चर्चा से करते हैं कि ज्ञान बड़ा है या अंक। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। एक बार स्कूल में दो दोस्त पढ़ते थे, कबीर और आरव। आरव हमेशा कक्षा में प्रथम आता था, उसके बहुत अच्छे नंबर आते थे, वो समय पर पढ़ाई करता और परीक्षाओं में भी शानदार प्रदर्शन करता था। वहीं कबीर के भी ठीक ठाक नंबर आ जाते थे, पर वो सवाल बहुत करता था, आसमान नीला क्यों है, धरती घूमती है तो हमें चक्कर क्यों नहीं आते, पौधे हमें ऑक्सीजन कैसे देते हैं। कभी कभी तो टीचर्स भी उसके सवालों से परेशान हो जाते थे। एक दिन विज्ञान की क्लास में टीचर ने दोनों से एक ही सवाल पूछा कि यदि किसी पौधे को कई दिनों तक पानी ना मिले तो क्या होगा। आरव ने किताब में पढ़ा हुआ उत्तर तुरंत सुना दिया कि पौधा मुरझा जाएगा। फिर टीचर ने पूछा क्यों, तो आरव थोड़ी देर चुप रहा। तब कबीर बोला, क्योंकि पानी पौधे के लिए जरूरी है, पानी न मिलने पर उसकी कोशिकाएं पर्याप्त पानी नहीं रख पाती और वो मुरझाने लगता है, और लंबे समय तक अगर पानी ना मिले तो पौधा मर भी सकता है। शिक्षक मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि आरव ने उत्तर याद किया है लेकिन कबीर ने उत्तर को समझा है। बच्चों, यही अंतर है अंक और ज्ञान में। नंबर बुरे नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण है। नंबर लाने के लिए मेहनत, अनुशासन, नियमित अध्ययन और समय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ज्ञान की अगर बात करें तो ज्ञान का अर्थ केवल किताब में लिखी जानकारी को याद कर लेना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है किसी बात को समझना, उसका अर्थ जानना और जरूरत पड़ने पर सही जगह पर इस्तेमाल कर पाना। बच्चों, आपने कभी पेड़ को ध्यान से देखा है? पेड़ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? पत्तियां, फल, फूल या फिर शाखाएं? सबका अपना अपना महत्व है, पर पेड़ की असली मजबूती उसकी जड़ों से होती है। बच्चों, ज्ञान जड़ों की तरह है और अंक फल की तरह। फल दिखाई देता है इसलिए लोग सबसे पहले उसे देखते हैं, लेकिन आपको ये तो समझ में आता ही होगा कि फल तभी अच्छा होगा जब जड़ें मजबूत होंगी। नंबर अच्छे हो या बहुत अच्छे, वो आपकी पूरी पहचान नहीं बनाते। दुनिया में ऐसे बहुत से महान लोग हुए हैं बच्चों, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिए हैं। उन सब लोगों में एक बात कॉमन है, क्या आप जानते हैं वो क्या बात है? कॉमन बात ये है कि उन्होंने कभी भी सीखने की और कभी भी हार न मानने का जज्बा हमेशा बनाए रखा। बच्चों, नंबर सीढ़ी है, मंजिल नहीं। अच्छे नंबर आगे की पढ़ाई के अवसर दिला सकते हैं। जिस तरह जीवन की पूरी सफलता रिपोर्ट कार्ड पर नहीं लिखी जा सकती, उसी तरह केवल ज्ञान होना भी पर्याप्त नहीं है। ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार होना भी जरूरी है। अगर कोई अच्छे मार्क्स लाए और बड़ों का सम्मान ना करे, झूठ बोले या फिर अपने ज्ञान और नॉलेज का गलत फायदा उठाए, तो क्या वो इंसान सफल है? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि बच्चों, पढ़ाई के लिए नंबर पाने के लिए नहीं बल्कि नया सीखने के लिए, जीवन को समझने के लिए कीजिए, क्योंकि अंकों की सीमा है। जैसे कि 100 में से 100, 500 में से 480 है ना, पर ज्ञान की कोई सीमा नहीं। ज्ञान किताबों तक सीमित नहीं है, वो जीवन के हर अनुभव में छुपा है। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है बल्कि सोचने की क्षमता विकसित करना है। ज्ञान वो अनमोल धन है बच्चों, जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता। तो मेहनत कीजिए, ज्ञान हासिल कीजिए, अच्छे नंबर भी लाइए और जीवन में आगे बढ़ते चलिए। इसी के साथ बच्चों, कार्यक्रम में वक्त

है एक छोटे से विराम का, आपका कराते हैं मनोरंजन, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं पहेली टाइम की आज की पहेली। रंग बिरंगा शरीर है इसका, कुदरत का वरदान मिला, इतनी सुंदरता पाकर भी दो अक्षर का नाम मिला, वन में ये करता शोर, चर्चे इसके चारों ओर, बताओ कौन हूँ मैं? आप दीजिए अपने दिमाग पर जोर, तब तक आइए हम सुनते हैं ये गीत। Mm-hmm.

0: अटक गया
1: क्यों
0: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
2: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
3: दुखी बेदुखी

पहेली का उत्तर है मोर। इसी के साथ समय है बच्चों आज की कहानी का। आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी वानर राज का बदला। एक नगर के राजा चंद्र के पुत्रों को बंदरों से खेलने का बड़ा शौक था। बंदरों के सरदार वानर राज वो भी बहुत चतुर थे। वो सभी बंदरों को नीति शास्त्र पढ़ाया करते थे। सभी बंदर वानर राज की बात माना करते थे और तो और राजपुत्र भी बंदरों के सरदार वानर राज का सम्मान किया करते थे। उसी नगर के राजगृह में छोटे राजपुत्र के वाहन के लिए कई मेड़े भी थे। उनमें से एक मेड़ा बहुत लोभी था। वो जब भी चाहे रसोई में घुसकर सब कुछ खा लेता था। रसोइये उसे लकड़ी से मारकर बाहर निकालते। वानर राज ने जब ये सब देखा तो वो चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि यह कलह किसी दिन सारे बंदर समाज के नाश का कारण बन जाएगा, क्योंकि जिस दिन किसी नौकर ने मेड़े को जलती लकड़ी से मारा, उस दिन अगर ये मेड़ा घुड़साल में घुस गया तो वहां आग लगा देगा और इससे कई घोड़े जल भी सकते हैं। और जलन के घावों को भरने के लिए बंदरों की चर्बी को की मांग पैदा होगी और तब उस दिन हम सब मारे जाएंगे। इतनी दूर की बात सोचने के बाद उन्होंने बंदरों को सलाह दी कि वो अभी से राजगृह का त्याग कर दें। पर उस समय बंदरों ने उनकी एक बात न मानी। राजगृह में उन्हें मीठे मीठे फल मिलते थे। उन्हें छोड़कर वो कहीं नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने वानर राज से कहा, बुढ़ापे के कारण आपकी बुद्धि मंद पड़ गई है। हम राजपुत्रों का प्रेम व्यवहार और वहां के मीठे फल छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। वानर राज ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, ये लोभ तुम्हें महंगा पड़ेगा, और वो वहां से वन की ओर चले गए। उनके जाने के बाद एक दिन वही बात हुई जिससे वानर राज ने बंदरों को चेताया था। लोभी मेड़ा जब रसोई में गया तो नौकर ने जलती लकड़ी उस पर फेंकी। मेड़े के बाल जलने लगे। वो भागते भागते घुड़साल में घुस गया जिससे वहां आग फैल गई और कुछ कोड़े जल गए। वहां भगदड़ मच गई। जब राजा को पता चला तो उन्होंने कुशल पशु चिकित्सकों को बुलाया। आयुर्वेद शास्त्र में देखकर उन्होंने सलाह दी कि जले हुए घोड़ों पर बंदर की चर्बी का मरहम लगाया जाए। बस ये सुनते ही राजा ने सभी बंदरों को मारने का आदेश दे दिया। सारे बंदर मारे गए। तब वानर राज को जब ये सब पता चला तो उन्हें बेहद दुख हुआ और उन्होंने बदला लेने की ठानी। एक दिन वन में उन्हें एक ऐसा तालाब मिला जिसके किनारे मनुष्यों के पदचिन्ह थे। उन पदचिन्हों से मालूम होता था कि इस तालाब में जितने भी मनुष्य गए वो सब मर गए, कोई वापस नहीं आया। वो तुरंत समझ गए कि जरूर यहाँ कोई नरभक्षी मगरमच्छ है। उसका पता लगाने का उन्होंने एक उपाय निकाला। कमल की नाल का एक सिरा तालाब में डालकर वानर राज ने पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद कंठहार धारण किए मगरमच्छ सामने आया। वो बोला, यहाँ पानी पीने वाले आज तक कोई भी इंसान बच नहीं पाया और कोई भी प्राणी बच नहीं पाया, पर कमल की नाल से पानी पीकर तुमने अपनी

0: तेज बुद्धि का परिचय दिया है, मैं प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांग सकते हो। तब वानरराज ने पूछा, मगर राज आपकी भक्षण शक्ति कितनी है? वो बोले, जल में सैकड़ों पशु व मनुष्यों को खा सकता हूं, पर जमीन पर एक गीदड़ भी नहीं। तब वानरराज बोले कि एक राजा मेरा दोषी है, ये कंठहार आप मुझे दे दें तो उनके सारे परिवार को लाकर आपका भोजन बना सकता हूं। मगर राज ने कंठहार दे दिया और वो पहनकर वानरराज महल की ओर चल दिए। राजा उन्हें काफी समय बाद मिलकर प्रसन्न हुए। कंठहार की चकाचौंध से प्रभावित जब राजा ने पूछा तो वानरराज ने उन्हें तालाब के बारे में बताया और कहा कि वो अगर अपने परिवार के साथ वहां जाकर स्नान करें तो उन्हें भी ये कंठहार मिल सकता है। राजा, उनका परिवार व समस्त दरबारी इस बात पर राजी हो गए। तृष्णा सबको अंधा बना देती है, लालच का कोई अंत नहीं होता बच्चों। राजा, परिवार व दरबारियों की तृष्णा उन सबको काल के मुंह तक ले गई। जितने लोग जलाशय में गए सब डूब गए, कोई भी ऊपर नहीं आया। राजा चिंतित होकर वानरराज की ओर देखने लगे। उसी मौके पर वानरराज तुरंत पेड़ की ऊंचाई की शाखा पर चढ़ गए और बोले, जलाशय के राक्षस मगरराज सबको खा चुके हैं। जिस तरह दयाहीन होकर आपने मेरे वंश का नाश किया, उसी तरह मैंने भी आपके कुल का अंत कर दिया। मैंने अपना बदला ले लिया है, अब आप राजमहल जा सकते हैं। आपने हिंसा करने से पहले एक बार नहीं सोचा, तो आपको एहसास दिलाने के लिए मुझे प्रत्युत्तर देना पड़ा। राजा क्रोधित भी था और हताश भी। वो कुछ न कर सका और दुख के सागर में डूबकर अकेले ही राजमहल लौट गया। तो बच्चों, दुष्टता का उत्तर दुष्टता ही व्यवहारिक नीति है। कभी भी किसी को इतना नहीं सताना चाहिए बच्चों कि उसके दिल से दया का भाव खत्म हो जाए। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा विराम।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: रवैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
0: इसी के साथ बच्चों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। बच्चों, जब भी हम अपना पूरा एड्रेस यानी कि पता लिखते हैं तो लास्ट में पिन कोड लिखते हैं। तो क्या आप जानते हैं पिन कोड क्या होता है? अगर नहीं तो आइए पिन कोड के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। बच्चों, पिन कोड वो है जिस पे पूरा पोस्टल सिस्टम निर्भर करता है। आज के समय में हम इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद से पल भर में दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन आज भी तमाम सरकारी काम डाक के जरिए ही किए जाते हैं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है और पूरे देश में लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं। एक वक्त था जब लोग एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे। भारतीय पोस्ट की मदद से ये खत एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे और पोस्ट की मदद से लेटर भेजने के लिए पिन कोड की जरूरत पड़ती थी। आखिर पिन कोड होता क्या है? पिन कोड का फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। भारतीय पोस्ट में पिन कोड की शुरुआत 54 साल पहले 1972 में श्रीराम भीकाजी वेलणकर द्वारा की गई थी। श्रीराम भीकाजी ने पिन कोड सिस्टम बनाने के लिए पूरे देश को 9 जोन्स में बांट दिया। इनमें से एक जोन भारतीय सेना के लिए भी है। इन सभी जोन्स को अलग अलग कोड दिए गए। कोड का पहला नंबर उस

राज्य को दिखाता है जहां खत भेजना है। इसके बाद पिन कोड का दूसरा अंक सब जोन को दर्शाता है, वहीं तीसरा अंक जिले को दर्शाता है। इसके बाद बचे हुए तीन अंक पोस्ट ऑफिस की शाखा को दर्शाते हैं। तो ये मतलब है पिन कोड के 6 अंकों का। आपको ये जानकर हैरानी होगी बच्चों कि साल 1972 से पहले अगर कोई खत भेजा जाता था तो उसे पहले पोस्ट ऑफिस में खोलकर पढ़ा जाता था। इसके बाद उसे अलग अलग खंडों में बांटकर आगे भेजा जाता था। लेकिन ये काम बेहद पेचीदा था। इसके जरिए कई बार गलत पते पर खत पहुंच जाया करते थे। तो इस परेशानी से मुक्त होने के लिए श्रीराम भिकाजी वेलणकर ने पिन कोड का सिस्टम बनाया जो आज भी प्रासंगिक है। इसलिए श्रीराम भिकाजी को पिन सिस्टम का जनक भी माना जाता है। पिन कोड सिस्टम के कई फायदे हैं। सटीक और तेज डिलीवरी में ये मदद करता है। हमारे देश में एक ही नाम के कई गांव व इलाके हैं। पिन कोड की वजह से डाक बिना किसी कंफ्यूजन के सही पते पर पहुंच जाता है। इसके अलावा हमारे देश में कई भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं, तो ऐसे में किसी भी भाषा में पता क्यों ना लिखा हो, वो पिन कोड की वजह से आसानी से डाक को सही पते पर पहुंचा पाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon, Flipkart, Myntra, इन सब को डिलीवरीज पहुंचाने में भी काफ़ी आसानी होती है। बच्चों बैंक अकाउंट खोलने, आधार कार्ड बनवाने और पासपोर्ट के लिए भी सही पिन कोड बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे पते का वेरिफिकेशन आसान हो जाता है। तो बच्चों ये थी पिन कोड की संपूर्ण जानकारी। इसी के साथ बच्चों वक्त है एक बार फिर मनोरंजन का। आइए सुनते हैं ये गीत।

जाते जाते बच्चों आपसे यही कहना चाहूंगी कि ज्ञान अनमोल खजाना है, बांट सका है कौन इसे, न भाई बंधु जमाना है, अनमोल रत्न है हर रत्नों में, पर इसको नहीं छुपाना है। ज्ञान की ज्योति जले घर घर में, ज्योति से ज्योति जलाना है, घर घर महके ज्ञान की खुशबू, ज्ञान का अलख जगाना है। ज्ञान बिना मानव जीवन भी पशु सखाकर मर जाना है, व्यवहार वचन संस्कार भला बच्चों को खूब बताना है। क्या बचपन क्या बुढ़ापन, न इससे हमें घबराना है, लूट सको तो लूट लो इसको, ज्ञान अनमोल खजाना है। इसी के साथ बच्चों इजाजत लेना चाहूंगी आपसे, जल्द ही मिलने के वादे के साथ, नमस्कार।

नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ओम प्रकाश नरुका और आप सुन रहे हैं आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम आकाशवाणी का युववाणी कार्यक्रम। तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। कभी आपने सोचा है कि हम अपनी जिंदगी के कितने फैसले

सिर्फ इसलिए बदल देते हैं क्योंकि सामने वाला कुछ अलग कर रहा होता है। कोई दोस्त नई नौकरी शुरू करता है तो हमें लगता है हम भी यही करना चाहिए। कोई शादी कर लेता है तो हमें लगता है शायद अब हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। कोई अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल जाता है तो हम अपनी जिंदगी को पीछे समझने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, हर इंसान की जिंदगी की कहानी अलग होती है। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। तो दोस्त थे अमन और रोहित, दोनों ने कॉलेज साथ में पूरा किया। कॉलेज के बाद अमन को एक अच्छी नौकरी मिल गई, उसकी सैलरी अच्छी थी और कुछ ही महीनों में उसने नई गाड़ी भी खरीद ली। रोहित अभी भी अपने मन का काम ढूंढ रहा था। जब भी वो अमन को देखता उसे लगता है यार ये पीछे काफी आगे निकल गया और मैं इससे पीछे रह गया। एक दिन रोहित ने परेशान होकर अमन से पूछ ही लिया, यार तुम्हारी जिंदगी तो कितनी अच्छी चल रही है और मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया। अमन मुस्कुराया और बोला, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा देख रहे हो जो बाहर से दिखाई देता है। मेरी परेशानियां, मेरी रातों की चिंता और मेरे डर तुम्हें दिखाई ही नहीं देते। रोहित चुप हो गया। और शायद यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम अक्सर दूसरों की हाइलाइट्स देखते हैं और अपनी पूरी जिंदगी उसकी तुलना से करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की नई गाड़ी दिखती है, किसी की नई नौकरी, किसी की ट्रैवल वाली तस्वीर और हमें लगता है कि सबकी जिंदगी परफेक्ट है, बस मेरी ही जिंदगी खराब है। लेकिन सच में ये है कि हमें किसी की पूरी कहानी पता ही नहीं होती। इसीलिए अगर कोई हमसे आगे निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे हैं। हो सकता है हमारा रास्ता अलग हो सकता है हमारी मंजिल अलग हो, और हो सकता है कि हमारी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा समय लगे। लेकिन इसमें गलत क्या है? हर फूल एक ही मौसम में तो नहीं खिलता, हर पेड़ एक ही रफ्तार से तो बड़ा नहीं होता। तो फिर हम इंसानों से क्यों उम्मीद करते हैं कि सबकी जिंदगी एक ही स्पीड से चले? और फैसले दूसरों की जिंदगी को देखकर तो कभी लेने ही नहीं चाहिए। अगर कोई दोस्त कोई कोर्स कर रहा है तो सिर्फ इसीलिए मत कीजिए कि वो कर रहा है। अगर कोई कुछ खरीद रहा है तो सिर्फ दिखाने के लिए तो बिल्कुल मत खरीदिए। और अगर किसी की जिंदगी हमसे अच्छी दिखाई दे रही है तो खुद को छोटा मत समझिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं फैसला मेरे हिसाब से ले रहा हूँ? क्योंकि जिंदगी में सबसे जरूरी ये नहीं कि हम दूसरों से कितनी जल्दी आगे निकलते हैं, जरूरी तो ये होता है कि हम अपने रास्ते पर सही दिशा में चल भी रहे हैं या नहीं। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब मुझसे आगे निकल गए तो एक बार रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मेरी जिंदगी मेरी है, मेरा समय भी मेरा है और मेरी कहानी भी मैं ही लिखूंगा। दूसरों की जिंदगी से इंस्पिरेशन जरूर लीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले अपनी समझ और अपनी जरूरत के हिसाब से लीजिए। क्योंकि आखिर में जिंदगी कोई रेस तो नहीं है, एक सफर है और हर किसी का सफर अलग होता है। इसी सोच के साथ खुद पर भरोसा रखिए और अपने रास्ते पर चलते रहिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा गीत हो जाए।

गर्मी का मौसम हो और बिजली का बिल देखकर पसीना ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बढ़ती गर्मी और बढ़ते बिजली के बिल के बीच आजकल बहुत से लोग सोलर सिस्टम लगवाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जैसे ही सोलर की बात आती है, एक सवाल हमारे सामने आता है, ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड। अब ये दोनों सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं, लेकिन आज इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये सिस्टम सरकारी बिजली के ग्रिड से जुड़ा होता है। दिन में सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं और उसी से घर के पंखे, लाइट और दूसरे उपकरण चलते हैं। अगर जरूरत से ज्यादा बिजली बन गई तो वो

बिजली ग्रिड में वापस चली जाती है। इसके लिए नेट मीटरिंग की व्यवस्था होती है और अतिरिक्त बिजली का हिसाब आपके बिजली बिल में किया जाता है। इस सिस्टम की एक खास बात होती है, इसमें आमतौर पर बड़ी बैटरी की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसकी शुरुआत लागत ऑफ ग्रिड के सिस्टम के मुताबिक कम रहती है। और अगर आप सरकारी सब्सिडी या फायदा लेना चाहते हैं तो ऑन ग्रिड सिस्टम अपने लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर सिस्टम पर केंद्रीय सब्सिडी मिल सकती है। अब आते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर। इसे आप एक तरह का इंडिपेंडेंट सोलर सिस्टम समझ सकते हैं। इसमें सोलर पैनल से बनी बिजली बैटरी में स्टोर होती है और जरूरत पड़ने पर उसी बैटरी से घर के उपकरण चलाए जा सकते हैं। यानी अगर आपके इलाके की बिजली बार बार जाती है या कई घंटों तक पावर कट रहता है तो ऑफ ग्रिड सिस्टम आपके लिए काफी काम हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क है, बैटरी की वजह से ऑफ ग्रिड सिस्टम की शुरुआत लागत बढ़ सकती है, साथ ही बैटरी के समय के साथ बदलने का खर्च भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और आमतौर पर केंद्र की रूफटॉप सोलर सब्सिडी ऑन ग्रिड रूफटॉप सब सिस्टम के लिए होती है, इसलिए सिर्फ सब्सिडी पाने के लिए ऑफ ग्रिड सिस्टम चुनना सही तरीका बिल्कुल नहीं है। अब सवाल आता है, आपके घर के लिए कौन सा बेहतर है? अगर आपके इलाके में बिजली कटौती बहुत कम होती है और आपका मुख्य उद्देश्य बिजली का बिल कम करना है तो ऑन ग्रिड सिस्टम आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपके यहाँ बिजली बार बार जाती है और आपको पावर बैकअप भी चाहिए तो ऑफ ग्रिड सिस्टम ज्यादा उपयोगी हो सकता है। तो फैसला सिर्फ इस आधार पर मत लीजिए कि कौन सा सिस्टम सस्ता है। अपनी बिजली की खपत, अपने इलाके के पावर कट की स्थिति, बजट और बैकअप की जरूरत, इन सभी चीजों को ध्यान में रखिए। और हाँ, सोलर सिस्टम लगवाने से पहले आपके राज्य की मौजूदा सब्सिडी और नियमों की जानकारी जरूर ले लें, क्योंकि राज्य स्तर पर मिलने वाली सुविधाएं अलग हो सकती हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड, तो बस इतना याद रखिए, कम बिजली कटौती और कम बिजली चाहिए तो ऑन ग्रिड पर विचार कीजिए, ज्यादा पावर कट और बैकअप चाहिए तो ऑन ग्रिड पर विचार कीजिए, क्योंकि सोलर सिस्टम वही अच्छा है जो सिर्फ हमारी छत पर नहीं बल्कि हमारी जरूरत के हिसाब से भी बैठे। इसी के साथ बिजली बचाइए, ऊर्जा बचाइए और प्रकृति के साथ मिलकर चलिए। तो अब एक गाना सुन लिया जाए और फिर चलाएंगे हमारे कार्यक्रम को आगे।

0: तो श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर करते हैं आपसे बातें।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते

0: का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रख कर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं, अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
4: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
4: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
4: और क्या ये फ्लैट रेरा

0: रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: सोचिए, आपके फोन पर एक कॉल आती है और नंबर वही 10 अंकों का है और सामने वाला कहता है, मैं आपकी बिजली कंपनी से बात कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कॉल सच में बिजली कंपनी का है या कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की परेशानियों को कम करने के लिए टेलीकॉम रेगुलरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने एक नई पहल की है, 1601 सीरीज। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अभी तक 1600 सीरीज का इस्तेमाल मुख्य रूप से बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस यानी BFSI सेक्टर और सरकारी संस्थाओं की सर्विसेज और ट्रांजेक्शनल कॉल्स के लिए किया जा रहा था। अब TRAI ने दूसरे जरूरी सेक्टर्स के लिए 1601 सीरीज शुरू करने का फैसला किया है। पहले चरण में इसमें यूटिलिटीज, कोरियर्स और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कंपनियां शामिल होंगी। अब यूटिलिटी का मतलब क्या है? इसमें बिजली वितरण कंपनियां, पानी की सेवाएं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, LPG डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटीज और इसी तरह की दूसरी जरूरी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी। वहीं कुरियर और लॉजिस्टिक में कुरियर कंपनीज, पार्सल डिलीवरी सर्विसेज और फ्राइट तथा लॉजिस्टिक से जुड़ी कंपनियां आएंगी। अब सवाल है, आखिर 1610 की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल आजकल फ्रॉड करने वाले लोग आमतौर पर 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर से कॉल करके खुद को किसी बड़ी कंपनी या कर्मचारी बताते हैं। ऐसे में आम आदमी के लिए ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कॉल असली है या नकली। 1610 सीरीज की खास बात ये होगी कि इसके नंबर एलिजिबल कंपनीज या वेरिफिकेशन के बाद सीधे दिए जाएंगे, यानी हर कोई जाकर 1610 नंबर नहीं ले सकता। टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स पहले ये वेरीफाई करेंगे कि संबंधी कंपनी इस सीरीज के लिए एलिजिबल है या नहीं। इससे लोगों को जेन्युइन सर्विसेज और ट्रांजैक्शन कॉल पहचानने में मदद मिल सकेगी। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, 1601 सीरीज का इस्तेमाल प्रमोशनल यानी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं किया जाएगा। इन नंबरों का उद्देश्य सर्विस और ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन के लिए है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके किसी कुरियर कंपनी से पार्सल भेजा और आपको डिलीवरी से जुड़ी जानकारी के लिए कॉल आती है, या किसी यूटिलिटी सर्विस से जुड़ी जरूरी जानकारी आपको फोन पर दी जा रही है। ऐसी सर्विसेज रिलेटेड कॉल्स के लिए 1601 सीरीज का इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि 1600, 1601 और 140 में फर्क क्या है, तो इसे भी आइए आसान भाषा में समझते हैं। 1600 सीरीज मुख्य रूप से रेगुलेटेड BFSI एंटिटीज और गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज और ट्रांजेक्शनल कॉल्स के लिए है। 1601 सीरीज पहले चरण में यूटिलिटीज तथा कुरियर और लॉजिस्टिक सेक्टर्स के सर्विसेज और ट्रांजेक्शनल कॉल्स के लिए होगी। वहीं 140 सीरीज का इस्तेमाल रजिस्टर्ड एंटिटीज की प्रमोशनल कॉल्स के लिए किया जाता है। TRAI ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को पहले चरण में शामिल एलिजिबल एंटिटीज को 1601 सीरीज पर लाने के लिए 90 दिनों के भीतर माइग्रेशन और ऑनबोर्डिंग पूरा करने को कहा है। तो श्रोताओं, इस पूरे बदलाव को सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है? सबसे बड़ा फायदा पहचान और भरोसा। तो अगली बार फोन की घंटी बजे और सामने कोई सर्विस प्रोवाइड होने का दावा करे, तो सिर्फ उसकी बात पर भरोसा मत कीजिए, नंबर पहचानिए, जानकारी वेरीफाई कीजिए और जरूरत पड़ने पर ऑफिशियल चैनल की पुष्टि कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। इसी संदेश के साथ जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और टेक्नोलॉजी का समझदारी से इस्तेमाल करते रहिए।

तो साथियों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं हमेशा की भांति, और बने रहिए इसी प्रकार हमारे कार्यक्रम में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: वैष्णवी। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों रूपरेखा तैयार जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान किया। गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जाँच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के एक रोड मैप बनाया है। 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है, समय सीमाएं तय की है। 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। 1 इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, 2 प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, 3 डिमांड और हार्म रिडक्शन और 4 क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने बताया कि वर्ष 2014 से 2024 के बीच 1,19,00,000 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए। इनकी कीमत करीब 1,89,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में सत्य निकेतन में बहुमंजिला पीजी आवास की इमारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से 1 दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे,

0: दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलंकर प्रदान करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीता नगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी को बंबई उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने कल उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। वे बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स में फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आपको जानकारी दे दें हमारी आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रम और हमारी कल के सभा के कार्यक्रमों की।

अभी आप हमारे कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.1 MHz पर आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने सुना अपनापन फिल्म का ये गीत, और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: हर बैंक के अलग अलग KYC पेपर्स। काश एक चाबी होती।
3: एक चाबी है CKYC ID।
2: CKYC मतलब
3: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
2: वाह, RBI कहता है
3: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
0: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं, कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी, फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 309 नगर निकायों में चुनाव को लेकर प्रचार कार्य परवान पर। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्थानीय जैव विविधता के दस्तावेजीकरण के लिए स्थानीय स्तर पर योजना बनाने को कहा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कल लोकभवन में राजस्थान उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल को पद की शपथ दिलाएंगे। और राज्य में विभिन्न स्थानों पर मॉनसून की बारिश का दौर आज भी जारी रहा। जयपुर और भरतपुर संभाग में आज कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 309 नगर निकायों में चुनाव को लेकर प्रचार कार्य परवान चढ़ने लगा है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पार्टियां अपने अपने स्टार प्रचारकों के माध्यम से अपने घोषणा पत्र और विकास के दावों के साथ जनता के बीच पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज अजमेर और बीकानेर में रोड शो किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव की रणनीति पर बातचीत भी की। मुख्यमंत्री का आज ही जोधपुर में भी रोड शो का कार्यक्रम है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आम सभा को संबोधित कर वोट डालने की अपील की। उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने फागी में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क किया। इस बीच मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत कई नवाचारों के माध्यम से लोगों को मतदान के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: मतदाताओं में वोट के महत्व और वोटिंग की अलग जगाने के लिए हो रहे प्रयासों के तहत जयपुर में मतदाता जागरूकता साइकिल रैली आयोजित की गई। अमर जवान ज्योति से जल महल तक निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में साइकिल सवार शामिल हुए। स्वीप कार्यक्रम के जिला प्रभारी शुभम भैसारे ने लोगों से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। उधर भरतपुर में श्रम विभाग की ओर से विभिन्न संस्थानों और संगठनों के उद्योगपतियों और श्रमिकों के साथ मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। संयुक्त श्रम आयुक्त हसीना बानो ने बताया कि 9 और 11 सितंबर को होने वाले चुनाव के मद्देनजर अवकाश रहेगा और इस दिन किसी भी कर्मचारी की मजदूरी में कटौती नहीं की जाएगी। वहीं पाली में मतदाता जागरूकता को लेकर पीएम श्री बांगड़ राजकीय विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कई जिलों में मानव श्रृंखला बनाकर और नुक्कड़ नाटकों सहित विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के जरिए मतदान का महत्व बताया जा रहा है। समाचार कक्ष से जितेंद्र प्रधान।
0: केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्थानीय जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण के लिए स्थानीय स्तर पर योजना बनाने की जरूरत बताई है। चंडीगढ़ में राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों की राष्ट्रीय बैठक में उन्होंने कहा कि जन जैव विविधता रजिस्टरों को स्थानीय निकायों के लिए प्रभावी योजना बनाने का माध्यम बनाया जाना चाहिए। इससे स्थानीय जैव विविधता और उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल स्थानीय विकास में किया जा सकेगा। श्री यादव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 और जैव विविधता नियम 2024 के अनुसार अपने नियमों और संस्थागत व्यवस्थाओं को तैयार करने का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में आज पंचकुला में संकट उबरना भारत के गिद्धों के संरक्षण विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। इस

0: कार्यशाला में देश भर से आए पर्यावरणविद, वन्य जीव विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। कार्यशाला में गिद्धों की घटती संख्या पर चिंता व्यक्त करने के साथ ही उनके संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने गिद्धों की महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी भूमिका पर चर्चा करते हुए उन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी बताया। केंद्रीय मंत्री ने गिद्धों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों का निरंतर निर्माण करने और वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण में सहायता के लिए तकनीकी क्षमता के विकास का आह्वान किया। श्री यादव ने गिद्ध संरक्षण के लिए नीति निर्माण में संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। नई दिल्ली में भारत मंडपम में 12 सितंबर से शुरू होने वाले 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों के तहत आज दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रिहर्सल के दौरान शहर के 22 स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन और वाहनों की आवाजाही को रोका गया। डीग में साइबर अपराधों से बचाव को लेकर इस महीने साइबर सुरक्षित राजस्थान जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ठगी, निवेश के नाम पर धोखाधड़ी सहित अन्य साइबर अपराधों से बचाव के लिए जिला स्तर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभियान की निगरानी कर रहे हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके साथ ही साइबर स्वयं सेवकों, एनसीसी और एनएसएस कैंडिडेट्स की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्य बाजारों, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर नुक्कड़ नाटक, पोस्टर और ऑडियो वीडियो संदेश दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस की ओर से साइबर सुरक्षा को लेकर विशेष एडवाइजरी भी जारी की गई है। लोगों को अपने फोन में 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करने के लिए कहा गया है। साथ ही अगर मोबाइल गुम हो जाए तो फाइंड माई डिवाइस से फोन लॉक करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही कोई भी शिकायत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर करने के लिए भी कहा गया है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कल लोकभवन में उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस संबंध में कल नियुक्ति वारंट जारी किए थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति अधिसूचना जारी की। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के 10 वर्ष पूरे होने पर आज जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम चिंतन एक दशक की पहल आयोजित हुआ। उद्घाटन समारोह में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि राज्य के विशेष बाल गृहों की कमियों और सुधार कार्यों के लिए हाईकोर्ट गंभीर है। इसके तहत उच्च न्यायालय ने सभी अधीक्षकों से उनकी बुनियादी जरूरतों के संबंध में शपथ पत्र मांगे हैं। इनके अनुरूप काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे राष्ट्र की अमूल्य पूंजी है। बच्चों को सुरक्षित, सशक्त और सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप का अनुकूल वातावरण देना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि बाल अनुकूल न्याय प्रणाली को और मजबूत करने की जरूरत है। इस अवसर पर बाल संरक्षण पर आधारित पुस्तकों पंख, स्नेहिल, कच्ची धूप और पक्की छांव का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में तकनीकी सत्र हुए जिनमें बाल अधिकार, मिशन वात्सल्य, कानूनी सहायता और गंभीर अपराधों की जांच जैसे विषयों पर मंथन किया गया। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज भी मॉनसून की बारिश का दौर जारी रहा। धौलपुर जिले में सुबह से शुरू हुई बरसात दिनभर रुक रुक कर होती रही। बारा में भी दोपहर बाद तेज बारिश हुई। राजधानी जयपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी के समाचार हैं। भरतपुर में सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। इससे पहले कल दिनभर चले बारिश के दौर से राज्य में विभिन्न स्थानों पर नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया। सवाईमाधोपुर, बारा, बूंदी और कोटा जिलों में कई स्थानों पर नदी पर बनी रपट पानी में डूब गई। धौलपुर जिले में सुबह 8 बजे मापे गए गेज के अनुसार चंबल नदी का जलस्तर 8 मीटर बढ़ गया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार निम्न दबाव के कारण आज जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। वहीं कोटा

0: संभाग में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल से बारिश की गतिविधियों में कमी होने का पूर्वानुमान है।
1: मध्य प्रदेश यूपी के ऊपर बना हुआ विलमा लो प्रेशर एरिया आज कमजोर होकर कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है। इसके असर से आज भी उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि 7 सितंबर से राज्य के अधिकांश भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी और 8 सितंबर से अगले 5-7 दिनों के लिए ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 12-13 सितंबर से पूर्वी राजस्थान में एक और नया बारिश का दौर शुरू होने की प्रबल संभावना है।
0: सवाई माधोपुर के रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र में खतरनाक झरनों और चट्टानी क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वन विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत खंडार और फलौदी रेंज में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। उप वन संरक्षक प्रथम मानस सिंह ने बताया कि लोगों से अपील की गई है कि प्रतिबंधित या संवेदनशील वन क्षेत्रों में प्रवेश न करें और जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ संबंधित अधिनियम और कानूनी प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि आमजन और वन्य जीवों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीते दिनों वन क्षेत्र में बनाए गए फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर विभाग ने ये कार्रवाई की है। पाली में खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में कराटे और मार्शल आर्ट की स्पर्धाएं हो रही हैं। इसमें जिले भर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में फालना, तेसुरी, आकेली गांव और सोजत सहित विभिन्न क्षेत्रों के विद्यालयों से विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 309 नगर निकायों में चुनाव को लेकर प्रचार कार्य परवान पर। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्थानीय जैव विविधता के दस्तावेजीकरण के लिए स्थानीय स्तर पर योजना बनाने को कहा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कल लोकभवन में राजस्थान उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल को पद की शपथ दिलाएंगे। और राज्य में विभिन्न स्थानों पर मॉनसून की बारिश का दौर आज भी जारी रहा। जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख शिव कुमार वशिष्ठ ने तैयार किया है। भरतपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में भरतपुर नगर निगम के 65 वार्डों के लिए मतदान होगा। इसके लिए 401 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। भुसावर नगर पालिका के 25 वार्ड में से 134 और रूपवास के 25 वार्ड में 147 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण में नगरपालिका चुनाव में नदबई के 35 वार्ड से 138 प्रत्याशी, बयाना के 35 वार्ड से 156, वैर के 25 वार्ड से 134 प्रत्याशी और उज्जैन नगरपालिका से 25 वार्ड से 124 प्रत्याशी मुकाबले में हैं। चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में चुनावों में उपयोग आने वाली 442 ईवीएम मशीनों का रेंडमाइजेशन किया गया। चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जिला प्रशासन के साथ स्वयंसेवी संस्थान भी आमजन को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्वीप गतिविधियों के तहत नगर निकाय क्षेत्रों में मतदाता संवाद और दिव्यांग वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा रंगोली, पोस्टर सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। स्वाधीनता दिवस समारोह जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय परिसर में हुआ, जहां जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर कमर चौधरी की अध्यक्षता में पिछले दिनों जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। इसमें उच्च जोखिम वाली

0: गर्भवती महिलाओं की तिमाही में पंजीयन, प्रसव पूर्व जांच, एनीमिया जांच, टीकाकरण और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया सहित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में अधिक प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर एंटी लार्वा गतिविधियां तेज करने और सर्वे तथा मलेरिया स्लाइड संग्रह के साथ जन जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। बीते दिनों 16 देशों के विशेषज्ञ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना की गतिविधियों और पक्षियों के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने केवलादेव उद्यान की जैव विविधता संरक्षण व्यवस्था, प्रबंधन, तकनीकों और चुनौतियों को नजदीक से समझा। करीब 20 प्रतिभागियों के इस दल ने उद्यान का भ्रमण किया। इनमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया सहित कई देशों के विशेषज्ञ शामिल रहे। जिले में बीते 2-3 दिन से हो रही बरसात के बाद सबसे बड़े बांध बंध बारेठा में पिछले दिनों पानी की आवक अधिक हुई। इसे देखकर बांध के गेट खोलकर कुकुंद नदी में पानी की निकासी की जा रही है। साथ ही आसपास के इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हरियाली तीज के अवसर पर जिले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। इसी श्रृंखला में महिला संगठनों की ओर से विभिन्न सामाजिक सरोकारों से जुड़े आयोजन किए गए। महिला मंडल द्वारा लहरिया पहनावा प्रतियोगिता के आयोजन हुए तो वहीं मेहंदी, रंगोली सहित व्यंजन प्रतियोगिताएं भी रखी गई। ईद मिलादुन्नबी का पर्व जिले में अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर में कई स्थानों पर जुलूस निकाला गया। शहर की विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में आकर्षक सजावट की गई। रक्षाबंधन का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का वचन लिया। केंद्रीय सेवर जेल में भी बहनों ने अपने कैदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। विभिन्न चौराहों पर महिला पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों की कलाई पर राखी बांधकर उनसे यातायात नियमों की पालना करने की शपथ ली। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की के उद्घोष के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी कृष्ण मंदिरों और घरों में आकर्षक झांकियां सजाई गईं और कान्हा का श्रृंगार कर मंगल गीत गाए गए। भरतपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेरू पेश है प्रादेशिक समाचार।

पहली आज री खास खास खबरां। प्रदेश रात 309 नगर निकाया माए चुनाव ने लेर प्रचार रो काम जोरा मात है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव स्थानीय जैव विविधता रा दस्तावेजीकरण खातर स्थानीय स्तर मात है योजना बनाबाने कया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े काल लोक भवन में राजस्थान उच्च न्यायालय रा मनोनीत मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल ने पदरी शपथ दिलावेला। और राज्य में कई थोड़ा माथे मानसून री बारिश रो दौर आज भी जारी। जयपुर और भरतपुर संभाग में आज कटे कटे भारी मेह बरस पारा आसार। समाचार आरे सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विगतवार। प्रदेश में 309 शहरा माए होबावाला नगरीय निकाय चुनाव खातर प्रचार रो काम जोर पकड़ रियो है। सगला राजनीतिक दल मतदाताओं ने रिझावा खातर हर भांतरी कोशिश कर रिया है। पार्टियां आपरा आपरा स्टार प्रचारक रे जरिए आपरा घोषणा पत्र और विकास रा दावा रे सागे जनता रे बीच पूग रिया है। इनी कड़ी माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज अजमेर माए रोड शो करिया। इन दौरान वणा मेवाड़ा स्टेट माए कार्यकर्ता सु चुनावी रणनीति माथे भी बातचीत करी। मुख्यमंत्री रो आज ही बीकानेर और जोधपुर माए भी रोड शो रो कार्यक्रम है। बठी ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर माए कांग्रेस प्रत्याशी रा समर्थन माए आम सभा ने संबोधित कर वोट डालबारी अर्ज करी। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा आज फागी माए भाजपा प्रत्याशारा समर्थन माए जनसंपर्क करियो। इन बीच मतदान खातर जागरूकता बढ़ावा रे वास्ते स्वीप गतिविधियां राखी जा रही है। इन रे तहत कई नवाचार रा माध्यम सु लोगां ने मतदान रा महत्व रा बारा माए

0: बतायो जा रियो है। बत्ती जानकारी समाचार कक्ष सु।
1: मतदाताओं में वोट के महत्व और वोटिंग की अलग जगाने के लिए हो रहे प्रयासों के तहत जयपुर में मतदाता जागरूकता साइकिल रैली आयोजित की गई। अमर जवान ज्योति से जल महल तक निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में साइकिल सवार शामिल हुए। स्वीप कार्यक्रम के जिला प्रभारी शुभम भैसारे ने लोगों से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। उधर भरतपुर में श्रम विभाग की ओर से विभिन्न संस्थानों और संगठनों के उद्योगपतियों और श्रमिकों के साथ मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। संयुक्त श्रम आयुक्त हसीना बानो ने बताया कि 9 और 11 सितंबर को होने वाले चुनाव के मद्देनजर अवकाश रहेगा और इस दिन किसी भी कर्मचारी की मजदूरी में कटौती नहीं की जाएगी। वहीं पाली में मतदाता जागरूकता को लेकर पीएम श्री बांगड़ राजकीय विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कई जिलों में मानव श्रृंखला बनाकर और नुक्कड़ नाटकों सहित विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के जरिए मतदान का महत्व बताया जा रहा है। समाचार कक्ष से जितेंद्र प्रधान।
0: पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव स्थानीय जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान रा दस्तावेजीकरण खातर स्थानीय स्तर माथे योजना बनाबा खातर जोर दिया। चंडीगढ़ में राज्य जैव विविधता बोर्ड और केंद्र शासित प्रदेशारी जैव विविधता परिषदारी राष्ट्रीय बैठक में वे कया के जन जैव विविधता रजिस्ट्रा ने स्थानीय निकाया खातर प्रभावी योजना बनाबारो माध्यम बनायो जानो चाहिए। इनसो स्थानीय जैव विविधता और उनसो जुड़िया पारंपरिक ज्ञान रो इस्तेमाल स्थानीय विकास में करियो जा सकेला। श्री यादव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशासु जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 और जैव विविधता नियम 2024 रे मुजब आपरा नियमा और संस्थागत व्यवस्थावा ने तैयार करबारी अरज करी। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस रे मौके आज पंचकुला में संकट उबरना भारत के गिद्धों के संरक्षण विषय माथे एक दिन री राष्ट्रीय कार्यशाला रखी गई। कार्यशाला रो उद्घाटन केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव करिया। इन कार्यशाला में देश भर से आया पर्यावरणविद वन्य जीव विशेषज्ञ और नीति निर्माता भाग लेना। कार्यशाला में गिद्धारी घटती संख्या माथे चिंता जताबारे सागे ही वाने बचाबा खातर चलाया जा रिया अभियान री समीक्षा करी गई। इन मौके राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री श्री यादव गिद्धारी भूमिका माथे चर्चा करता थका वाने प्रकृति रू सफाई कर्मी बताया। केंद्रीय मंत्री गिद्धा खाता सुरक्षित हल्का बनाबा और वन्य जीव प्रजातियां ने बचाबा माए सहायता खातर तकनीकी क्षमता रू विकास करवाने कया। श्री यादव गिद्धा ने बचाबा खातर नीति निर्माण माए सरकार और समाज ने मिलर कार्य करबा रा

0: सहायता खातर तकनीकी क्षमता रो विकास करवाने कया श्री यादव गिद्दा ने बचावा खातर नीति निर्माण में सरकार और समाज ने मिलर कार्य करवा रा प्रयास माथे जोर दीना डीग माए साइबर अपराधां सु बचाव खातर इन महीना साइबर सुरक्षित राजस्थान जन जागरूकता अभियान चलायो जारियो है डिजिटल अरेस्ट ऑनलाइन ठगी निवेश रा नाम माथे धोखाधड़ी समेत साइबर अपराधां सु बचाव खातर जिला स्तर माथे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभियान री निगरानी कर रिया है बत्ती जानकारी भाका खबर नवीस सु
1: विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके साथ ही साइबर स्वयंसेवकों एनसीसी और एनएसएस कैंडिडेट्स की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है मुख्य बाजारों धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर नुक्कड़ नाटक पोस्टर और ऑडियो वीडियो संदेश दिए जा रहे हैं इसके साथ ही पुलिस की ओर से साइबर सुरक्षा को लेकर विशेष एडवाइजरी भी जारी की गई है लोगों को अपने फोन में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करने के लिए कहा गया है साथ ही अगर मोबाइल गुम हो जाए तो फाइंड माई डिवाइस से फोन लॉक करने के लिए कहा गया है इसके साथ ही कोई भी शिकायत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर करने के लिए भी कहा गया है आरजू शर्मा आकाशवाणी समाचार डी
0: नई दिल्ली रा भारत मंडपम माए इनी महीना 12 तारीख सो शुरू होबा वाला दो दिन रा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन री तैयारियां जोरा माते है सम्मेलन री सुरक्षा री तैयारियां रे तहत आज सोमवार दिल्ली पुलिस मोटर काफिलारी रिहर्सल करी और सुरक्षा व्यवस्था मारो जायजो करियो रिहर्सल रे दौरान शहरी 22 तोड़ा माथे ट्रैफिक डायवर्जन और गाड़ियां री आवाजाही माथे रोक लगाई गई ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सुन रिया हो जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल राजस्थान उच्च न्यायालय रा मुख्य न्यायाधीश वेला राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का लोक भवन मायवाने पदरी शपथ दिलावेला बतायो जावे है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन बाबत काल नियुक्ति वारंट जारी करिया हा इन रे पच है केंद्र सरकार इन री नियुक्ति अधिसूचना जारी करी किशोर न्याय अधिनियम 2015 रात 10 बरस पूरा होबा माथे आज जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम चिंतन एक दशक री पहल राख्यो गयो उद्घाटन समारोह में राजस्थान उच्च न्यायालय रा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा कया के राज्य रा विशेष बाल गृह री कमियां और सुधार कामा खातर हाई कोर्ट गंभीर है इनरे तहत उच्च न्यायालय सगड़ा अधीक्षका सु वारी बुनियादी जरूरता बाबत शपथ पत्र मांग्या वारे मुजब काम करियो जावेला वे कया के टाबर राष्ट्रीय अमूल्य पूंजी है टाबरा ने सुरक्षित सशक्त और सामाजिक और सांस्कृतिक रूपों अनुकूल वातावरण देनो सगड़ा रो दायित्व है वे कया के बाल अनुकूल न्याय प्रणाली ने बत्तो मजबूत करबारी जरूरत है इन मौके बाल संरक्षण माथे आधारित किताबा पंख स्नेहिल कच्ची धूप और पक्की छांव रो विमोचन करियो गयो कार्यक्रम में तकनीकी सत्रविया जनमाय बाल अधिकार मिशन वात्सल्य कानूनी सहायता और गंभीर अपराधारी जांच भासरा विषय माथे मंथन करियो गयो प्रदेश में न्यारी न्यारी थोड़ा माते आज भी मानसूनी बारिश रो दौर जारी रियो धौलपुर जिला में सुमारे सुई भी बरसात दिन भर रुक रुक कर जारी री बारा माई भी दोपहर पाछे तेज मेह बरसियो पठीने राजधानी जयपुर माई भी सुमारे सु बादल छाया रिया और कुछ एक थोड़ा माते बूंदाबांदी हो बरा समाचार है इनसु पहली काल दिन भर में बरसवासू राज्य री न्यारी न्यारी थोड़ा माते नदी नाला माए पानी रो स्तर बढ़ गयो सवाई माधोपुर बारा बूंदी कोटा जिला माए कई थोड़ा माथे नदी माथे बनी रपट पानी माए डूब गई धौलपुर जिला में सुमारे 8 बजे मापिया गया गेज रे मुजब चंबल नदी रो पानी 8 मीटर बढ़ गयो मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब इन दबावरी वजह सु आज जयपुर और भरतपुर संभागरा कुछ एक इलाका माए हल्की सो तेज बारिश वह सके है वठीने कोटा संभाग माए में बरस बारा आसार है केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा रे मुजब कालसु बारिश होबा माए कमी आ सके है
2: मध्य प्रदेश यूपी के ऊपर बना हुआ वेलमा लो प्रेशर एरिया आज कमजोर होकर कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है इसके असर से आज भी उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है हालांकि 7 सितंबर से राज्य के अधिकांश भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी और 8 सितंबर से अगले 5-7 दिनों के लिए ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा इसके बाद 12-13 सितंबर से पूर्वी राजस्थान में एक और नया बारिश का दौर शुरू होने की प्रबल

0: बाबा है।
1: सवाई माधोपुरा रणथंबोर बाघ परियोजना हल्का माए खतरनाक झरना और चट्टाने इलाका माए नियमारी अनदेखी करबा वाला रे खिलाफ वन महकमा रिकानियों कार्रवाई करी जा रही है। इनरे तहत खंडार और फलोदी रेंज माए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम रा प्रावधान रे तहत कार्रवाई करी गई। उपवन संरक्षक प्रथम मानस सिंह रे मुजब लोगों अर्ज करी गई है कि प्रतिबंधित या संवेदनशील वन हल्का माए नहीं जावे और महकमारी कानियों जारी निर्देशारो पालन करे। वे कया के आमजन और वन्य जीवारी सुरक्षा महकमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लारला दिना वन हल्का माए बनाया गया फोटो और वीडियो सोशल मीडिया माथे वायरल हो बारे पछे महकमो या कार्रवाई की। गणेश चतुर्थी परब माथे राजधानी जयपुर आ प्रसिद्ध मोती डूंगरी मंदिर माए गणेश जी रा जन्मोत्सव ने लेर जोर शोर तैयारियां करी जा रही है। इनरे तहत कालसू कार्यक्रम शुरू वेला मंदिर प्रन्यास रिकानियो महोत्सव 15 सितंबर ताई करियो जावेला। और अबे आखिर माए खास खबर एकर फेरू। प्रदेश रा 309 नगर निकाया माए चुनाव ने लेर प्रचार रो काम जोरा माथे। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव थानी जैव विविधता रा दस्तावेजीकरण खातर स्थानीय स्तर माथे योजना बनाबा ने कया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े काल लोकभवन माए राजस्थान उच्च न्यायालय रा मनोनीत मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल ने पदरी शपथ दिलावेला। और राज्य में कई थोड़ा माथे मानसून री बारिश रो दौर आज भी जारी। जयपुर और भरतपुर संभाग माए आज कटे कटे भारी मेघ बरस पारा आसार। इंद्र सागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन अठे पूरो वियो। मां को आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम भारती।

ग्राम भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को सुरेंद्र कुमार की राम राम। और देखो किसान बहन भाइयों, आज अपन ग्राम भारती कार्यक्रम में अपन चर्चा करेंगे कि टमाटर की जो उन्नत खेती है वो कैसे किसान बहन भाई कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, टमाटर अपने संपूर्ण भारतवर्ष में एक व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली फसल है। और इसमें क्या है, जब बात करें पोषक तत्वों की, तो टमाटर में भरपूर मात्रा में विटामिन, आयरन, फास्फोरस जो आदि पोषक तत्व होते हैं, इनका स्रोत माना जाता है। और मनुष्य के दैनिक जीवन में भाई टमाटर का उपयोग सब्जी में, सलाद में और अन्य रूप में इसको अपन काम में लेते हैं। तो ये जो टमाटर की फसल है, इससे किसान को अधिक उत्पादन और अधिक आमदनी प्राप्त करने का साधन है। और इसकी खेती अगर किसान सही तरीके से करे तो उसको अच्छा उत्पादन और अच्छी उपज और साथ में अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। तो इसके जो बात होती है कि टमाटर में जलवायु का ध्यान विशेष रूप से अपने को रखना चाहिए। टमाटर के लिए जो जलवायु वो मध्यम ठंडा और उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है और वातावरण उपयुक्त होता है। और टमाटर की फसल पाला नहीं सहन कर सकती। इसकी खेती के लिए तापमान 18 से 27 डिग्री सेल्सियस,

और 21 से और 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर टमाटर में लाल रंग सबसे अधिक मात्रा में विकसित होता है। तो इस तरीके से भाई टमाटर में की फसल लगाएं तो पाले से बचाव के लिए उसमें पूरी अपने को सुविधा होनी चाहिए कि भाई पाला पड़े तो उस समय अपन पाले से इसका बचाव कर सकते हैं। और भूमि इसके लिए टमाटर की खेती के लिए भाई अच्छे जल निकास वाली भूमि और चिकनी बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। और भूमि का जो पीएच मान की अपन बात करते हैं तो पीएच मान 6 से 8 गुण होना चाहिए, पीएच मान 6 से 8 होना चाहिए। और टमाटर की अगेती फसल के लिए हल्की मिट्टी उपयुक्त रहती है। अब इसकी किस्मों की बात करते हैं अपन। पहले इसकी जैसे देसी किस्में और संकर किस्में, दो प्रकार की किस्में आती हैं। जैसे देसी किस्में हैं इनमें आर का है, विशाल है, आर का, वरदान, ये देसी किस्में हैं। और जो संकर किस्में हैं उसमें पूषा रूबी, पूषा रोहिणी, पूषा सदाबहार, हिसार ललित, पूषा शीतल, परकर फ्लेवर, सेवर पूषा हाइब्रिड 2, पूषा गौरव और हिसार लालिमा, पूषा रेड प्लम, ये इसकी संकर किस्में हैं। तो इनमें से जो भी किस्म है उसको अपन चयन करके और टमाटर की खेती कर सकते हैं। इसकी बुआई की बात करते हैं तो इसको वर्ष में 2 बार अपन बुआई कर सकते हैं, एक तो जून जुलाई में और एक नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई करके और अपन इसका उत्पादन ले सकते हैं। बीज दर की मात्रा जो संकर किस्में होती हैं उनके लिए 150 से 200 ग्राम बीज की मात्रा उपयुक्त रहती है। और देसी किस्में होती हैं उनके लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। आज बीज उपचार की भी अपने को सावधानी रखनी चाहिए कि बीज को उपचारित करके और अपने को बोना चाहिए। तो इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी 6 से 8 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करके अपने को बोना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं अपन नर्सरी की और पौधशाला तैयार करने के लिए। अपन 1 हेक्टेयर फसल की बुआई के लिए सामान्य तौर पर अपन 250 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र पर्याप्त रहता है। और नर्सरी के लिए चयन किया गया जो स्थान होता है वो साफ सुथरा होना चाहिए, कीट रोग मुक्त होना चाहिए, भूमि में पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद, नीम की खली डालकर उसको भली भांति जुताई अपने को कर देनी चाहिए। और 10 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाकर बीज नर्सरी में 1 इंच की दूरी पर पंक्तियों में बोकर हल्की अपने को सिंचाई कर देनी चाहिए। तो इस तरीके से अपने इसकी नर्सरी कर सकते हैं। और खेत में पोषण प्रबंधन के लिए यानी खेत में भाई पर्याप्त मात्रा में पोषण प्रबंध होना चाहिए। तो पौधे रोपित करने के 20-25 दिन पहले ही अपने को सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डाल देनी चाहिए और उसके साथ साथ कंपोस्ट 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से और भूमि में मिला दें। इसके अलावा रासायनिक जो खाद है वो भी 120 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से अपने को मिला देनी चाहिए। और इसके बाद में नत्रजन की पूरी मात्रा और फास्फोरस और पोटास नत्रजन की 1/3 मात्रा अपने को देनी चाहिए और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा ही बुआई के समय अपने को दे देनी चाहिए। और भाई इसका बुआई अपने को कर देनी चाहिए जब पौधे अपने 4-5 सप्ताह के हो जाएं, तो उस समय 7 से और 10 सेंटीमीटर के हो जाएं तो 100 ग्राम प्रति लीटर ट्राइकोडर्मा घोल से जड़ों को उपचारित करके और उनको रोपित कर देना चाहिए। और रोपित करते समय अपने को पंक्तियों से पौधे की दूरी 60-60 सेंटीमीटर और जब अपन सर्दकालीन फसल की बुआई करते हैं तो उससे पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर अपने को रखनी चाहिए। और खरपतवार प्रबंधन के लिए अपन को 20-25 दिन के अंतराल पर इसमें निकाई गुड़ाई हाथ से कर देनी चाहिए। और खरपतवार के इसके अतिरिक्त बेशालीन जो नाम की रासायनिक दवा आती है वो 1.5 लीटर प्रति हेक्टर की दर से पौधे रोपित करने से पहले ही अपने को उसको छिड़काव कर देना चाहिए। जल प्रबंधन की बात करते हैं अपन कि सर्द ऋतु में 10-12 दिन में व गर्मी में 4-5 दिन में अंतराल पर अपने को सिंचाई कर देनी चाहिए। जो सहारा देने की बात करते हैं कि इसके पौधे को सहारा देने की आवश्यकता होती है तो इसमें अपन अरहर या ढेंचा का लकड़ियाँ लेके और छोटे छोटे टुकड़ों को भूमि में गाड़कर और पौधे को सहारा दे देते हैं। तुड़ाई की जब अपन बात करते हैं तो जब टमाटर की फसल

0: 75 से 100 दिन की हो जाए उस समय अपने को तुड़ाई कर देनी चाहिए, और सही तरीके से तुड़ाई करके और उसको बाजार में पैकिंग करके विश्वास पात्र की दुकान पे ले जाके और बिक्री करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो किसान बहन भाई टमाटर की खेती करना चाहें तो बताई गई बातों को ध्यान में रखकर टमाटर की खेती करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो ये तो करिए अपने किसान बहन से बातचीत, और आगे किसान बहन भाई को सुनवाते हैं ये संदेश।
1: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
0: हाँ, तो देखो ये तो सुना संदेश, और आप किसान बहन भाई को सुनवाते हैं भेंट वार्ता। आंवले के बगीचे से अधिक आय कैसे प्राप्त करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं अपन ग्राम जाजोरबास तहसील अलवर के प्रगतिशील किसान हरि प्रसाद यादव जी। तो सुनते हैं उनसे बातचीत।
2: किसान भाई राम राम। आज हम गांव जाजोरबास में हैं और हम बात कर रहे हैं हरि प्रकाश यादव जी से। आप प्रगतिशील किसान हैं, उन्नत तकनीक का उपयोग करके आप खेती करते हैं, बागवानी करते हैं। आइएगा किस तरीके से ये अपने खेतों में फसलें उगाते हैं और कृषि से अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं, इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनते हैं। हरि प्रकाश यादव जी राम राम साहब।
3: राम राम जी। राम राम।
2: हरि प्रकाश यादव जी, कितने बीघा जमीन है आपके पास?
3: 20 बीघा जमीन है सर।
2: अच्छा, और इसमें क्या क्या आपने लगा रखा है?
3: इसमें बगीचा लगा रखा है, 3 बीघा तो पुराना बगीचा है जो 17-18 साल हो गए।
2: अच्छा, किस चीज का बगीचा है?
3: उसमें तो मिक्स पेड़ है, आंवला है, आम है, कटहल है, बेल पत्तर है
2: जी।
3: और अभी 5 बीघा जमीन में बगीचा, नया बगीचा लगाया है, 3 साल हो गए, आंवला लगाया है, पेवर चकैया वेराइटी।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या क्या लगा रखा है?
3: और आम लगा रखे
2: जी जी जी,
3: और कटहल है, बेल पत्तर है, और
2: यानी कि कुछ एरिया में आपने मिक्स बगीचा लगाया है।
3: 3 बीघा जमीन में मिक्स बगीचा लगा रखा है, और उसके बाद में अब 5 बीघा में पेवर आंवला लगाया है।
2: अच्छा, कितने साल के आपके पौधे हैं जो आपने लगाया है आंवला, जो नया आपने बगीचा लगाया है?
3: ये 3 साल हो गए।
2: 3 साल हो गया। तो इसके पौधे वगैरह आप कहाँ से लाए थे? प्लांटिंग मटेरियल की अगर आपने व्यवस्था कैसे की थी?
3: ये हॉर्टिकल्चर से लिया, अलवर से।
2: जी जी जी जी। अच्छा, तो लगाते समय किस तरीके से आपने गड्ढे खोदे थे, कैसे इनको लगाया था, और थोड़ा सा आप हमारे किसान भाइयों को बताएं।
3: मैं हॉर्टिकल्चर में गया था तो वहाँ से सलाह लेके आया, उन्होंने बताया कि सब्सिडी से ड्रिप सिस्टम से लगवाया हुआ है, और 6-6 मीटर पे जेसीबी से खड्डा खोदवाया मैंने
2: जी।
3: 2-2 बकेट बाहर डलवा दिए, और फिर उसके बाद में बालू रेत की 2-3 ट्रोलियां मंगवाई, तो एक खड्डे में 2-3 प्राती बालू रेत की और 5 किलो वर्मी कम्पोस्ट खाद, कैचवे का खाद, और ऊपर की मट्टी उसको भर के और वापिस डाल दिया
2: जी।
3: खड्डे को भर दिया, फिर ड्रिप सिस्टम लगवा दिया। ड्रिप सिस्टम लगवाने के बाद में ड्रिप चालू कर दी, और ड्रिप लगाने के बाद में मैं हॉर्टिकल्चर से पेड़ ले आया, पेड़ 2-3 दिन पहले लाके रख दिए थे
2: जी,
3: फिर उसके बाद में हमने इसमें लगा दिए।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पूरे सिस्टम से आपने पौधे लगाए हैं। आपने ये जो 6-6 मीटर का ही फासला क्यों रखा है, कुछ बता सकते हैं आप?
3: 6 मीटर का इसलिए रखा है कि सर मैं पुराना एक्सपीरियंस था, बगीचा पहले लगाया हुआ है 3 बीघा जमीन में
2: जी,
3: तो जितना गैप होता है ना, हवा लगती है और फलत ज्यादा आता है उससे
2: जी।
3: हाँ, इससे उत्पादन बढ़ता है।
2: और उसके अलावा आपको कोई भी कृषि कार्य करने के लिए सुविधा रहती होगी?
3: 3-4 साल तक इसमें खेती कर सकते हैं अपन, इसमें सरसों बो सकते हैं, नीचे की छायादार छाया से नीचे नीचे की फसल कर सकते हैं। चना बोया था पिछली बार मैंने।
2: अच्छा, इसमें आपने चना बोया, और क्या क्या बोया है आपने?
3: चना बोया है, गेहूँ बोया हुआ है, और 1 साल सरसों बोई थी।
2: क्या आपको उद्यान विभाग से इस पे अनुदान मिला है?
3: मिला है सर,
2: आंवले पे। और आपने ड्रिप भी लगाया है,
3: ड्रिप पे
2: तो ड्रिप पे भी अनुदान मिला है?
3: ड्रिप पे छूट मिली है, ड्रिप।
2: अच्छा, ड्रिप लगाने से आपको कितना फायदा नजर आता है? कई किसान खुला पानी लगाते हैं, आपने ड्रिप से बगीचा पनपाया है, तो आपको कितना फायदेमंद लगा है ड्रिप लगवाना?
3: ड्रिप से फायदा ये है, एक तो खरपतवार खेत खराब नहीं होता, ड्रिप लगाई तो ड्रिप से अच्छा सिंचाई हो जाती है, पेड़ ज्यादा विकसित होता है। अब पेड़ 3 साल के हो गए और 15 फीट हाइट से कोई भी पेड़ कम नहीं है।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है, कितनी अच्छी ग्रोथ आपकी हम पेड़ों की देख रहे हैं।
3: ड्रिप सिस्टम से ग्रोथ अच्छी होती है, उत्पादन ज्यादा आता है, पानी की जब जरूरत हो जब ही लगा सकते हैं इसमें
2: जी, जी
3: और
2: जी,
3: खुला पानी देंगे तो घास ज्यादा होगी और खेत खराब हो जाएगा।
2: अच्छा, आप

0: पौधा आपका एक साल का हुआ, दो साल का हुआ और अब आप तीन साल का पौधा है आपका, तो क्या इनमें कुछ थामलो वगैरह में खाद वगैरह भी आप चलवाते हैं या देते हैं?
1: गुड़ाई करिए और वर्मी कंपोस्ट 5 किलो पिछले साल से डाला था।
0: जी जी जी जी। अब हम देख रहे हैं आपके आंवले के इस बगीचे में फलत भी चालू हो गया है, तो आपने इसी साल से फलत आपका आया है या पिछले साल भी कुछ आया था, या इसको कैसे आप खुद ही बेचेंगे या ठेके पे भी आप दे करके इसकी तुड़वाई करवाएंगे? किस तरीके से इस बगीचे के उत्पाद को आप मार्केट में बेचेंगे?
1: मार्केट में बेचने का ऐसा है कि सर, जैसे पुराना बगीचा लगा हुआ है तो ठेकेदारों से 10-15 से जानकारी है, आते रहते हैं, फलत देखते रहते हैं और ठेके पे ले लेते हैं। 2,61,000 में आपकी बार मैंने दिया हुआ है 3 बीघा बगीचा, और नया बगीचा लगाया है तो इसमें पिछले साल किसी पेड़ में 1 किलो किसी में 2 किलो इस तरह से आया था, तो वो हमने तोड़ा नहीं, हटा दिया, उसको बेचा भी नहीं
0: जी।
1: और अब की बार आप देख रहे हो कि हर पेड़ में 15 से 20 किलो 25 किलो आंवला लगा है।
0: अच्छी फ्रूटिंग लगातार
1: देख गए उनका, जैसे बातचीत हो रही है तो यही ठेके पे भी दे देंगे।
0: जी जी जी जी। अच्छा, आपने कहा था कि आप वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट की व्यवस्था आप कहाँ से करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं।
1: सर, वर्मी कंपोस्ट मैंने खुद अपनी यूनिट लगा रखी है पुराने बगीचे में। मेरे पास गिर नस्ल की गाय है 10-15
0: जी,
1: गुजरात से लेके आया था
0: जी।
1: उनका मैं घी बेचता हूँ, दूध नहीं बेचता, और उनके गोबर से कैचवे ला रखे हैं, खुद वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट तैयार करता हूँ।
0: अरे, तो बहुत अच्छी बात है कि आप जैविक खेती में जो वर्मी कंपोस्ट काम आता है उसको प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आप जैविक जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं गिर गाय का, इसको बेचते भी हैं? अपने खुद की खेती में ही आपके काम आ जाता है सारा?
1: बेचता भी हूँ, मेरी दुकान है तो दुकान पे मैं, जो लोग लेना चाहें वो वर्मी कंपोस्ट वहाँ से ले जाते हैं।
0: किस चीज का आपने दुकान कर रखी है?
1: खाद बीज की दुकान है।
0: यानी कि किसान के साथ साथ आपने कृषि आदान विक्रय करने की भी दुकान भी कर रखी है, पर बगीचा भी लगाते हैं और अपनी दुकान से आप वर्मी कंपोस्ट भी बेच रहे हैं?
1: बेच रहे हैं।
0: तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने वर्मी कंपोस्ट यूनिट अपने पैसे से लगाई या इस पे भी आपने कृषि विभाग से, उद्यान विभाग से अनुदान लिया था?
1: अपने पैसे से लगाई है, एग्रीकल्चर वाले आते रहते हैं, उनसे सलाह ले लेके मैंने ये ड्रिप सिस्टम लगाया, बगीचा लगाया 15 साल पहले
0: जी,
1: तो उनसे सलाह लेके सारी चीज लगाई हुई है। सोलर मैंने लगाया हुआ है सब्सिडी से।
0: जी जी जी।
1: अपने विभाग से सब्सिडी मिली है 85%
0: जी,
1: तो सोलर लगाया हुआ है, सिंगल फेज की मोटर है, उसी से अपने बगीचे को सींचते हैं।
0: बहुत बढ़िया कि आपने बगीचा लगा रखा है, सौर ऊर्जा आपने लगा रखी है और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा रखी है और आपने कृषि से जुड़ा हुआ व्यवसाय भी आप कर रहे हैं। आपको ये जो कृषि के आदान विक्रय करने का कैसे मन में भाव आया, कैसे आपने लाइसेंस प्राप्त किया और किस तरीके से आप किसानों का भला कर रहे हैं एक दुकान के माध्यम से?
1: सर, ये काफी टाइम पहले की बात है, 33 साल हो गया दुकान करते हुए। मैंने चिकानी दुकान कर रखी है, चिकानी में जिस टाइम दुकान करी उस टाइम कोई स्टैंड पे दुकान नहीं थी, आज 200 दुकानें।
0: तो और आप किसानों का कितना ध्यान रखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो कितना, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं?
1: किसानों का फुल ध्यान रखते हैं, सही रेट में देता हूँ और बढ़िया चीज देता हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कई बार बगीचे में कोई रोग लग जाता है, कीट लग जाता है, तो उसकी सलाह आप कहाँ से लेते हैं, तो क्या आपको तजुर्बा है या किसी से राय लेकर के आप इसमें कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन करते हैं बगीचे में?
1: सर, जो आंवला मैंने लगाया हुआ है ये बिगर दवाई के ऑर्गेनिक करता हूँ, इसमें किसी तरह की कोई दवाई नहीं डालता और अभी तक तो कोई ऐसी कोई खास बीमारी भी नहीं लगी है इसके अंदर।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कैसे खेती करें, कैसे बागवानी करें, कैसे उद्यानिकी के कार्य करें कि उनके भी अच्छी आमदनी हो?
1: सर, ये बगीचा लगाएं, इसमें पानी की भी बचत बहुत होती है, कम से कम पानी जरूरत है बगीचे में
0: तो,
1: और कम से कम खर्चा आता है इसके अंदर, और आंवला लगाने के बाद तो कोई खर्चा आता ही नहीं है, आमद ही आमद है।
0: कोई पक्षियों का नुकसान वगैरह?
1: पक्षियों का 1% नुकसान नहीं है, और कोई ले जाता है 1-2 किलो ले जाएगा, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता इससे।
0: तो आपका कहना है कि किसान भाइयों को उद्यानिकी पे आना चाहिए, बागवानी पे आना चाहिए और इस पे भी काफी अच्छी आमदनी है। तो आकाशवाणी से बात करने के लिए हरिप्रकाश जी, बहुत बहुत आभार आपका। राम राम।
1: राम राम जी। राम राम।
2: हाँ, तो देखो, ये तो सुनी हरिप्रसाद जी से बहुत अच्छी जानकारी, और भाई किसान बहन भाई जानकारी को ध्यान में रख के और भाई उद्यान बगीचे लगाने की योजना बनाएंगे और आगे किसान बहन भाई को सुनवाएंगे लोकगीत, पर पहले सुनते हैं ये संदेश।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: हाँ तो देखो, ये तो सुना आपने भाई, लोकगीत बहुत अच्छा लगा। और अब बात करते हैं अपन टमाटर के जो प्रमुख कीट हैं उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। पहले बात करते हैं टमाटर के कीट। टमाटर का कीट है फल छेदक कीट। ये बहुत ही अधिक मात्रा में टमाटर के फलों को नुकसान पहुंचाता है। इसमें क्या होता है कि ये फल छेदक कीट टमाटर में छेद करके और अंदर की तरफ चला जाता है और टमाटर को सड़न पैदा कर देता है और ख़राब कर देता है। तो इसके बचाव के लिए अपन को क्या करना चाहिए कि जो रोग से प्रभावित जो कीट हैं उनको इकट्ठा करके और उनको मिट्टी में दबा देना चाहिए या उनको दूर फेंक देना चाहिए। और इसमें जो फल छेदक कीट है उसके बचाव के लिए अपन को NPV 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। और साथ ही 20 ग्राम गुड़ प्रति लीटर पानी के हिसाब से 10-15 दिन के अंतराल पर पुनः छिड़काव करना चाहिए। प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करना चाहिए। फल छेदक कीट का प्रकोप कम करने के लिए पौधे रोपण से 20 से 25 दिन के बाद

250 ग्राम प्रति हेक्टेयर दर से नीम की खली का अपने को छिड़काव कर देना चाहिए। तो इस तरीके से अपन फल छेदक कीट का प्रकोप है उससे बच सकते हैं। इसके बाद में सफ़ेद मक्खी, फुदका, हरा तेला और मोला, ये कीट भी इसमें लगते हैं। इनके नियंत्रण के लिए अपने को 10 से 12 पीली स्टिक प्रति हेक्टेयर के दर से लगा देने चाहिए और पौधे से 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई पर अपने को इनको स्थापित करना चाहिए और कार्बोफ्यूरान 3G 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में डाल देना चाहिए। इसके बाद में डाइमेथोड जो 30 cc नाम की दवा आती है वो 1 मिलीलीटर और मेलाथियन 50 cc 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर देना चाहिए। और इमेडा क्लोरोपिड 17.5 SL आती है, 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के और अपने को छिड़काव करना चाहिए। इस तरीके से टमाटर में लाल मकड़ी भी एक कीट लगता है, उसका प्रकोप भी, उसका नियंत्रण भी अपन डाई को फोल नाम की या कैल्थेन 18.5 EC नाम की दवा आती है उसको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से पत्ती के ऊपरी व निचली सतह पर इसका छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरीके से अपन भाई टमाटर में लाल मकड़ी है उसका नियंत्रण कर सकते हैं और ये सभी जो कीट लगते हैं इनका नियंत्रण समय रहते अपने को करना चाहिए, जिससे क्या है कि अपन अपनी टमाटर की फसल को बचा सके। तो ये तो करी किसान बहन भाई से बातचीत और अब किसान बहन भाई को दे देते हैं मौसम की जानकारी। अपने अलवर ज़िले में मौसम का जो तापक्रम है अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा और अब अपनी चौपाल का समय होता है समाप्त। ले किसान बहन भाई से क्या जय जवान जय किसान।

मिस्टर इंडिया फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की युगल आवाजों में ये दो गाना अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था परिवार। श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाज़ों में आप सुन रहे थे लम्हे फिल्म का ये गीत, और इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत था। अगला लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई। मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। बाकी के लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत

0: सजेशन हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

और श्रोताओं, इस राजस्थानी लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.1 MHz पर थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में होंगे, उसके पश्चात अंग्रेजी में। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव

0: बारे में जुटी है।
1: दो टीम में करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने, फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं, घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है, उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं, घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
2: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन, और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
2: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग डिनिस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने

0: नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
1: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no

0: वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल के ब्योहारी से गिरफ्तार किया है। शेरू पारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर हैं और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
4: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष

0: सतर्कता बरती जा रही है। चीन के शेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष ये उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Multi-story building collapses in Satyaniketan area of Delhi. 3 persons dead and 11 evacuated. Several feared trapped as rescue operation continues. Home Minister Amit Shah announces a 3-year roadmap for drug-free India by 2029, outlines 4-pillar strategy to dismantle narcotics networks. Vice President C.P. Radhakrishnan urges youth to shun substance abuse, lead healthy and disciplined lives, calls for constructive use of social media. Science and Technology Minister Jitendra Singh calls for expanding India's growing startup ecosystem beyond metropolitan centres, stresses stronger science, startups and industry linkages. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches maiden title at China Masters in Shenzhen. And now the news in detail. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. Talking to media after the visit, Ms. Gupta said, relief and rescue operations are continuing on a war footing. Ms. Gupta said, those found responsible for the incident will not be spared.
2: Whether it is the building owner or any official found responsible, guilty will not be spared. It was an old building and was undergoing construction and renovation, and excavation in the basement reportedly caused a pillar to shift, leading to the collapse. The building was being used as a paying guest accommodation with children inside. All agencies are working round the clock with saving lives a top priority. The rescue operation will continue with full resources and all officials are present at the site.
1: Later, the Chief Minister visited All India Institute of Medical Sciences AIIMS Trauma Center to meet the individuals undergoing treatment at the hospital. She instructed the team of doctors to ensure every necessary medical assistance. Ms. Gupta said the Delhi government is also in contact with the families of victims. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. Mr. Sandhu directed all concerned agencies to work in complete coordination to ensure swift rescue efforts. Talking to Media Inspector General of the National Disaster Response Force, N.S. Bundela said that 2 NDRF teams comprising 70 personnel are currently working on the site.
3: Two NDRF teams comprising around 70 personnel.

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कुमार सानू और अलका याग्निक को सुनिए। फिल्म का नाम है हम सब चोर हैं। गीत है नवाब आरजू का, संगीत बप्पी लहरी का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, पर या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

6 सितंबर 1949 को मुंबई में जन्मे राकेश रोशन, संगीतकार रोशन लाल नागरथ के पुत्र और संगीतकार राजेश रोशन के भाई हैं और ऋतिक रोशन के पिता हैं। और अब तो राकेश रोशन का नाम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े निर्माता निर्देशकों में शुमार होता है। लेकिन पिता संगीतकार रोशन के अचानक देहांत के बाद राकेश रोशन के लिए अपने करियर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ऐसे में उनकी मदद के लिए आगे आए निर्माता निर्देशक मोहन कुमार। इन्होंने कई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को राकेश रोशन का नाम सजेस्ट किया एक्टिंग के लिए और आखिर 1970 में फिल्म घर घर की कहानी से राकेश रोशन की एक्टिंग की कहानी शुरू हुई।

0: गाना।
1: ये गाना जो अभी आपने सुना अभिनेता जलाल आगा पर फिल्माया गया था। इस फिल्म घर घर की कहानी में राकेश रोशन सपोर्टिंग रोल में थे। बतौर अभिनेता उन्होंने अधिकतर सपोर्टिंग रोल्स ही किए। सोलो हीरो के रूप में उनकी कम ही फिल्में आईं, लेकिन जो भी आईं वो भी यादगार रहीं और उनका संगीत तो सुपर डुपर हिट रहा।

0: ही फिल्मों में हालांकि मुख्य भूमिकाओं में देवता में संजीव कुमार थे और जख्मी में सुनील दत्त, लेकिन राकेश रोशन ने अपनी उपस्थिति बहुत ही पुरजोर तरीके से जाहिर की। उसके बाद फिल्म खट्टा मीठा में विंध्या गोस्वामी के साथ इनका ये गीत आज भी लोगों का दिल जीत लेता है।
1: ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ।

ऐसी ही और भी फिल्में हैं। इनमें एक फिल्म याद आती है, फिल्म खूबसूरत। हालांकि फिल्म में टाइटल रोल रेखा का था, लेकिन राकेश रोशन और रेखा की जोड़ी ने बहुत ही कमाल अभिनय किया।

ऐसी ही और भी फिल्में हैं जिनमें राकेश रोशन अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे, लेकिन इससे राकेश रोशन खुश नहीं थे। इसीलिए 1980 में राकेश रोशन ने स्थापित की अपनी फिल्म निर्माण संस्था फिल्म क्राफ्ट और फिल्म बनाई आपके दीवाने। तेरा

ये फिल्म कामचोर सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म को राकेश रोशन ने प्रोड्यूस किया था और यहीं से शुरू हुआ राकेश रोशन की फिल्मों में क शब्द का कमाल। यहां से आगे राकेश रोशन ने जो भी फिल्में बनाई उनका शुरू

अति अक्षर कर रहा और अब तो राकेश रोशन एक ब्रांड बन गए। राकेश रोशन ने 1987 में निर्देशन की कमान भी संभाल ली। फिल्म थी खुदगर्ज।

खुदगर्ज की सफलता के बाद राकेश रोशन सफलता की गारंटी माने जाने लगे। खून भरी मांग 1988 में रेखा के साथ, फिर किशन कन्हैया 90 में, किंग अंकल, करण अर्जुन, कोयला और इसके बाद कुछ वर्षों तक बतौर अभिनेता कुछ फिल्मों में कभी कभार नजर आए, लेकिन सन 2000 में बिग बैंग के साथ आए अपने बेटे को लेकर ऋतिक रोशन के साथ कहा, कहो ना प्यार है।

इस फिल्म कहो ना प्यार है की सफलता को तो सभी जानते हैं और ये भी जानते होंगे कि बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस फिल्म का नाम है क्योंकि इसे सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले। इसके बाद राकेश रोशन ने जितनी भी फिल्में बनाई सभी ने सफलता का एक नया मकाम हासिल किया। यहाँ ये भी बता दें आपको कि खूबसूरत फिल्म में रेखा के साथ अभिनय करने वाले राकेश रोशन ने अपनी दोस्ती को निभाया और रेखा को कोई मिल गया और क्रिश जैसी फिल्मों में बहुत ही दमदार भूमिका दी। तो अब वो फिल्में जिन्होंने सफलता का इतिहास रचा, कोई मिल गया।

0: संगीतकार राकेश रोशन पर केंद्रित इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

छाया गीत में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसे फिल्मी गाने जिनके दो संस्करण हैं और सुनने के कौतूहल आश्चर्य और आनंद के लिए हमने इन दोनों संस्करणों को किसी अप्रत्याशित मोड़ पर जोड़ दिया है। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आंखों की कोरों से बरसता है दुख, छा जाते हैं उदासी के बादल और घनघोर घटाएं भिगो देती हैं सब कुछ। कभी कभी आसमान की मुंडेर से बजता है उदासी का वायलिन।

क्या किसी स्केल से नापा जा सकता है प्यार? कैसे कहें कि सही सही बयां हो जाए प्यार? अल्फाज नाप में जैसे कुछ कम पड़ जाते हैं, कई बार अल्फाज की बजाय खामोशी से काम लेना मुनासिब होता है।

जैसे आसमान पर चमके थोड़ी देर सूरज और फिर गुम हो जाए बादलों की ऊट में, जैसे पत्ते पर ठहरे पानी की बूंद और हवा का झोंका आकर उसे ढुलका दे, जैसे होंठों पर तैरे एक सूक्ष्म मुस्कान और फिर छा जाए गहरी उदासी, इतनी थोड़ी सी खुशी, इतना थोड़ा सा साथ।

की छाया गीत में थे ऐसे गाने जिनके दो संस्करण हैं और सुनने के आश्चर्य, कौतूहल और आनंद के लिए हमने किसी अप्रत्याशित मोड़ पर इन दोनों संस्करणों को आपस में जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें।

0: महबूबा, आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन। फिल्म शर्मीली, नीरज सचिन देव बर्मन।
1: हमें तुमसे प्यार कितना
2: ये हाल नहीं।
0: फिल्म कुदरत, मजरूह सुल्तानपुरी, राहुल देव बर्मन। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
2: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती।